100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज दिन मंगलवार है। शक संवत 1948 वैशाख मास की 22वीं तिथि तदनुसार आज 12 मई 2026 है। इस समय सुबह के 5:56 होने वाले हैं। अब हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

0: पुष्प सा सुगंधित मन, ओस की बूंदों का आचमन, प्रातः काल की सुमधुर बेला,
1: वक्र तुंड महाकाय, सूर्य कोटि सम प्रभ,
0: सृष्टिकर्ता की आराधना, भक्ति संगीत की साधना,
2: जर्रे जर्रे में उसी का नूर है, झांक खुद में वो न तुझसे दूर है,
0: पुष्पांजलि।

सुप्रभात। मन में सकारात्मक ऊर्जा और आचरण में भक्ति भाव के साथ आइए अपने आज के दिन की मंगलमयी शुरुआत करते हैं। ईश्वर वंदना से परिपूर्ण कार्यक्रम पुष्पांजलि का आरंभ हो चुका है और अपने इस मंगलमयी दिन की शुरुआत करते हैं विघ्नहर्ता श्री गणपति की वंदना के साथ।

कितनी ही परिस्थितियां कठिन क्यों ना हो जाएं, बस धैर्य धारण रखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि विपदाएं भी तो हमारे जीवन चक्र का एक हिस्सा हैं।

भगवान गणेश जहां हमें बुद्धि, विवेक, सरलता और सौम्यता का आशीर्वाद देते हैं, तो वहीं भोले भंडारी यानी भगवान शिव की आराधना भी हमें जीवन में तप, त्याग, संतोष और संयम की सीख देती है। नीलकंठ हमें सिखाते हैं कि जीवन में

ईश्वर आपका हमेशा जन्म जन्म का ही साथ देते हैं, हर जन्म हर पल आपके साथ रहते हैं। हम ही हैं जो ईश्वर को कभी ना कभी भूल जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या जीवन में सब कुछ बड़ा ठीक चल रहा होता है ना, तो हम कहीं ना कहीं उस ईश्वर को याद करना या उसे धन्यवाद देना भूल ही जाते हैं। वैसे ईश्वर भक्ति के बहुत सारे स्वरूप होते हैं, और जब जीवन में भक्ति का अलग अलग स्वरूप की बात आती है तो उनमें से एक स्वरूप दान का भी होता है, सेवा का भी होता है। पर दान की जब बात आती है तो दान केवल धन का नहीं होता। किसी की ज़रूरत पर अगर आपका साथ, आपका समय, आपकी हिम्मत आप उसे देते हैं तो वो भी बहुत बड़ा दान होता है, और वो भी ईश्वर भक्ति के समान ही होता है। आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो वो भी भक्ति है, और किसी के दर्द जब आप अपना समझ के बांट लेते हैं तो वो भी सच्ची ईश्वर भक्ति है। और जैसा कि मारुति नंदन ने हमें सिखाया है कि सेवा अगर आप लगातार सच्चे भाव से करते हैं तो ईश्वर तक पहुंच आपकी बड़ी ही सरल हो जाती है।

मन की चंचलता में संसार है और मन की स्थिरता में परमात्मा। परमात्मा की आराधना, भक्ति संगीत की साधना, कार्यक्रम पुष्पांजलि।

जिस दिन जीवन में ये समझ में आ जाता है कि जो हो रहा है वो इस ईश्वर की वजह से हो रहा है, चाहे हम सफल हो रहे हैं, चाहे हम कितनी ही कामयाबी क्यों ना पा रहे हो, हमारे पास आज जो कुछ भी है, स्थिति परिस्थिति जैसी भी है, वो उस ईश्वर की कृपा से है। तो यकीन मानिए, ये सच जब आप अपना लेते हैं अपने जीवन में तो हर भ्रम दूर हो जाता है और जीवन से अहंकार दूर हो जाता है। क्योंकि जब हम भगवान को अपना साथी मान लेते हैं तो हमारे मन में अहंकार स्वतः ही दूर हो जाता है। क्योंकि देखिए, जहां अहंकार रहता है वहां हरि नहीं रहते, और जहां हरि रहते हैं वहां अहंकार नहीं होता। जहां मैं है वहां हरि नहीं, और जहां हरि है वहां मैं नहीं।

नैया तेरे राम हवाले, लहर लहर हरी आंच संभाले। भक्ति में शक कभी भी लेश मात्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका ईश्वर पग पग पर आपके साथ है और आपको देख रहा है। जब ये विश्वास होता है ना, तो जीवन की हर परिस्थिति को सुलझाने का, उससे निकलने का मार्ग आपको खुद ही मिल जाता है। तो बस निश्चिंत हो, पूरी ईमानदारी से अपने कर्म मार्ग पर चलते रहिए और ईश्वर को याद रखिए, और यकीन मानिए कि वो ईश्वर आपके हर दिन को और आपको संभाल लेगा।

मन की चंचलता में संसार है और मन की स्थिरता में परमात्मा। परमात्मा की आराधना, भक्ति संगीत की साधना, कार्यक्रम पुष्पांजलि।

हम सभी अपने अंतर विरोध होते हैं। हमारे अंदर अच्छाइयाँ होती हैं और बुराइयाँ भी, यानी अच्छी बातें भी हैं और खामियाँ भी, और यही हमारी कमजोरियाँ और शक्तियाँ होती हैं। ईश्वर से जुड़ाव हमें सतमार्ग को अपनी कमजोरियों पर विजय पाने की हिम्मत देता है, तो वहीं अपनी शक्तियों को प्रबल बनाने की भी ताकत देता है। तो ईश्वर भक्ति का स्वरूप कोई भी क्यों ना हो, बस ईश्वर भक्ति सच्ची होनी चाहिए। आपका कर्म ईमानदार रखिए और आचरण शुद्ध रखिए और राह में आगे बढ़ते रहिए। उम्मीद करते हैं कि वीणा वादिनी माँ सरस्वती आपको इतनी सद्बुद्धि दे कि आप हमें सतमार्ग पर चलें और आपका दिन मंगलमय हो। इसी कामना के साथ आज पुष्पांजलि की इस आखिरी सरस्वती वंदना के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं।

नमस्कार, सुबह के 7 बज रहे हैं। आप सुनिए मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल नई दिल्ली में आयोजित CII वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बना हुआ है, नीति निर्माण में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति ने आज प्रदेश में निवेश के नए द्वार खोले हैं। आज उत्तर प्रदेश ने देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत सोमनाथ संकल्प महोत्सव में शामिल हुए। श्री काशी विश्वनाथ धाम में आयोजित इस कार्यक्रम में सोमनाथ मंदिर गुजरात में हो रहे मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशेष महापूजा का सजीव प्रसारण भी देखा गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि

प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हम सभी एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना साकार होते देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान सोमनाथ महादेव मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर समेत अनेक पवित्र तीर्थ स्थल अपने वैभव के साथ विकास की नई यात्रा तय कर रहे हैं। बीते 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश जनपदों में मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक अगले एक सप्ताह के दौरान अधिकतम तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। IPL क्रिकेट में कल रात दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। कप्तान अक्षर पटेल ने 56 और डेविड मिलर ने 51 रन की पारी खेली। माधव तिवारी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन सुबह 9 बजे अखबारों की सुर्खियों के साथ प्रसारित किया जाएगा।

0: सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
1: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई। जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदाबहार गीत
0: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

जी कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई मोहब्बत की हल्की सी धूप और पुराने गानों की मीठी सी खुशबू लेकर ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ सदाबहार नगमों की और प्यार भरी एनर्जी के साथ निधि रेडियो के तरफ आ चुकी है प्रोग्राम लेकर सदाबहार गीत, जहां एक से बढ़कर एक सदाबहार नगमे आपके रेडियो सेट पर आने वाले हैं और यकीन मानिए ये आपकी सुबह को और भी खूबसूरत बना देंगे। क्योंकि भाई ये वो तराने होते हैं जो जब भी सुने जाएं मन बड़ा खुश हो जाता है। मौसम बाहर बहुत खूबसूरत है, सुबह बहुत ही सुंदर है। अब इसके लिए बाहर निकलना पड़ेगा आपको, थोड़ा आलस त्यागना पड़ेगा और इस खूबसूरत मौसम को इंजॉय करने के लिए अपने गार्डन तक या बाहर पार्क तक जाना ही पड़ेगा। पर आप कहीं भी जाइए, कुछ भी करिए, जो भी तैयारी आप कर रहे हैं वो करते रहिए, बस ये जो रेडियो है उसका वॉल्यूम थोड़ा सा हाई रखिएगा, क्योंकि ये जो गाने हैं ना ये बिल्कुल मिस नहीं कर सकते आप।

बताइए जरा, शोभे को इतनी खूबसूरत तरीके से कोई भी डिफाइन कर सकता है जितनी खूबसूरत तरीके से आशा भोसले और किशोर दा ने इस गाने में गाया है। वैसे गानों से मोहब्बत की जब बात की जाए तो ये हमेशा ही बेहद खास होती है, क्योंकि ये हमारे इमोशंस यानी एहसासों को जिंदा रखती है। और सदाबहार गानों की जब बात आती है तो हर अफसाना हर तराना मन को बस भा जाता है, क्योंकि ये वो गाने हैं जिसमें खुशी है, सुकून है, ठहराव है। तो चलिए सुकून के इसी कारवा को आगे बढ़ाती है और एक खूबसूरत सा और ब्यूटीफुल सा ट्रैक आपकी रेडियो पर पहुंचाते हैं।

जी हाँ, मुलाकातें हमेशा ही खास होनी चाहिए, वो चाहे पहली मुलाकात हो, अगली मुलाकात हो या उससे अगली मुलाकात हो। और जब गानों से मुलाकात की बात हो तो हमेशा ही स्पेशल हो जाती है, सदाबहार गानों से जब मुलाकात की बात हो तो वो और यादगार बन जाती है। वैसे गानों से जब मुलाकात की बात होती है तो कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जो बस मन को छू जाते हैं, अपने से हो जाते हैं, जैसे हमारी मन की कहानी को ही वो बयां कर रहे हों, है ना। और मन की बात जब आती है ना तो इसकी दौड़ कहाँ कोई रोक पाता है। कुछ ऐसा ही गाना है हमारा अगला, ये वाला जो आपकी रेडियो सेट पर आने वाला है, मुकेश की आवाज में फिल्म रजनीकंदा का ये सुपरहिट सदाबहार गायकी।

इसीलिए कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं बहुत सोच समझ के कहिए. एक्चुअली में आप जो कह रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, वो हमेशा आपके साथ रहता है. और ये वो गाने हैं जिनकी लाइफ फिलॉसफी बिल्कुल सिंपल सी है और हमारी और आपकी लाइफ से कितनी मिलती जुलती है. हमारी लाइफ कभी बहुत सारी खुशियों से भरी होती है और तो कभी सवेरा भी बड़ा शाम सा नजर आता है, इतना ज़्यादा उदास नजर आता है. इसीलिए ये गाने हमारे जीवन से बिल्कुल सटीक बैठ जाते हैं, रिलेट कर जाते हैं. और जब प्यार और मोहब्बत की बात आए तो आर डी बर्मन और लता मंगेशकर की याद ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है.

कभी कभी एक गाना और किसी का नाम आपका पूरा दिन खूबसूरत बना देता है ना। अब वो नाम किसका है ये आप तय कर लीजिए। गाने देखिए हम लगातार बजा रहे हैं जिससे आपको वो नाम वो शख्सियत ज़रूर याद आएगी। हमारे लिए हमारा वो नाम हमारा चैनल यानी FM रेनबो है। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे साथी जो अभी अभी एंटर हुए ना उनके लिए भी है। वो साथी कौन है ज़रूर बताएंगे, उनकी आवाज़ भी आपको सुनाएंगे। वो बहुत ज़्यादा मशगूल हैं इस वक्त अखबार पढ़ने में जी। वैसे दिन की शुरुआत की जब की बात की जाए और उसका साथ जिसके लिए जिसकी नज़र आपके लिए बेहद ख़ास है उसका साथ अगर मिल जाए तो क्या बात है, मुबारका जी मुबारका। और अगर उसका साथ आपके साथ इस वक्त नहीं है, आपके आसपास वो नहीं है, तो उम्मीद करते हैं कि पूरे दिन में उसका साथ आपको ज़रूर मिले। और पूरे दिन में ना सही तो जल्दी उसका साथ आपको ज़रूर मिले। इसी उम्मीद के साथ अगला ट्रैक आपके रेडियो सेट पर।

जी प्यार और गानों में एक चीज बहुत कॉमन है, आपको पता है वो क्या चीज है? प्यार, मोहब्बत और पुराने गानों में जो कॉमन चीज होती है, वो आई एम श्योर आप भी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, वो है कि ये जितना ज्यादा पुराना होता है ना, उतना ही ज्यादा हमें इससे प्यार, इससे मोहब्बत और इससे गहराई और ज्यादा हो जाती है। देखिए, आपकी मोहब्बत के बारे में तो आप भली भांति जानते होंगे, लेकिन गानों के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जितने भी ट्रैक है जो आज हम और आप सुन रहे हैं, आई एम श्योर ये जब आप सुन रहे होंगे तो इनके साथ साथ आप गुनगुना भी रहे होंगे, और वो तमाम चेहरे, वो तमाम

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: किसी भी चीज को कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कमाल की बात है ना। जैसे कि जब हमें प्यार होता है ना, तो हमारा मन बस उस साथ के साथ उसके आसपास ही रहना चाहता है, या उस साथ को अपने आसपास ही रखना चाहता है। जैसे कि बावरा सा हो जाता है, बिल्कुल उस हवा की तरह जो अपने रुख को शायद कभी तय ही नहीं कर पाती, कभी इधर डोलती कभी उधर डोलती और लगातार आगे बढ़ती रहती है। पता नहीं किसकी खोज में, किस मीत को ढूंढ रही होती है।

जितनी एनर्जी के साथ हमने इस प्रोग्राम को यानी सदाबहार गीत को शुरू किया था, उतनी ही एनर्जी के साथ हम खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि 7:55 हो चुका है प्रोग्राम सदाबहार गीत का। ये आखिरी ट्रैक आपके रेडियो सेट पे आ रहा है और जो लड़का हमारे साथ आने वाला है गुड मॉर्निंग लखनऊ में, वो जरूर आपको पता चलेगा। लेकिन अभी ये ट्रैक, उसके बाद दिल्ली से समाचार और निधि मिलेगी एक नए साथी के साथ गुड मॉर्निंग लखनऊ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व सरमा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा।

0: जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले।
1: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97,00,000 मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा के साथ आज 4 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन 4 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नेओक शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों की एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
5: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
4: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे।

0: दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
1: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
2: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
3: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिनम ऑफ केयर पर।
0: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट, निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमेरिका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
4: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य देश पर 2,800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जाँच के लिए 3 सदस्यों की जाँच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
5: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक

0: भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवलसन परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, PM नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने ये भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: गुड मॉर्निंग डैडी।
2: वेरी गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग टीचर।
3: गुड मॉर्निंग बेटा।
4: गुड मॉर्निंग बॉस।
5: गुड मॉर्निंग मम्मा।
6: गुड मॉर्निंग।
7: गुड मॉर्निंग।
8: गुड मॉर्निंग।
9: गुड मॉर्निंग।
10: गुड मॉर्निंग।
0: करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, बर्थडेज, ट्रैफिक, वेदर, म्यूजिक और एंटरटेनमेंट, सब कुछ मिलेगा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग लखनऊ में हर सुबह 8:15 से ओनली ऑन रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
11: बजकर 16 मिनट और दो दोस्त आपके साथ है। मेरा नाम शिवम है। जी हाँ, और मेरे साथ है निधि जी।
12: जी, ये वही लड़का है जिसकी इतनी देर से हम बातें कर रहे थे और जो थोड़ी जैसे ही आया वैसे ही अखबार को पढ़ने में लगा हुआ था। क्या इतनी खबरें पढ़ रहे थे आप?
11: इसलिए पढ़ रहा था कि भाई साहब आज है मंगलवार और मंगलवार लखनऊ वालों के लिए होता है स्पेशल इस टाइम में जो होने वाला है, सबको पता है।
12: जी, बड़े मंगलवार का आज दूसरा मंगलवार है और बड़ा खास है। और शिवम, जब से आए तब से बहुत सारी बातें हमें बाहर की बता रहे, कहां कहां भंडारे की तैयारी हो रही है।
11: हाँ, और क्या क्या बट रहा है वो आप सबको भी बताएंगे। ढेर सारी बातें करनी है, ढेर सारे गाने सुनाने हैं। और आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सुनते रहना है 100

0: और 7 FM रेनबो
1: धड़कन लखनऊ की, जहाँ प्रोग्राम शुरू हो चुका है। गुड मॉर्निंग लखनऊ, और बहुत सारी बातें जरूर हम आपसे करेंगे। मुद्दे की बात आज बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है।
0: बिल्कुल, तो सुनिएगा जरूर और अपने भेजिएगा विचार। तो पहला गाना हो जाए।
1: बिल्कुल हो जाए,
0: तो रंग दिया जाए सबको आज।
1: हाँ, भक्ति में तो हमने सुबह से आपको रंगा है, उसके बाद रोमांटिक सॉन्ग्स में भी रंगा है, अब शिवम के रंग में रंगने वाले हैं सब लोग, क्योंकि ये गाना उनकी पसंद का है, आपको भी पसंद आएगा।

0: दिन की सकारात्मक शुरुआत विद आज का मॉर्निंग मंत्रा।
1: जी हाँ, ये वो थॉट जो आपके साथ पूरे दिन रहने वाला है, तो वो आज का सुविचार यानी मॉर्निंग मंत्रा क्या रहने वाला है। सिंपल सीधा सा मॉर्निंग मंत्रा कि हर दिन भाई आपको परफेक्ट होना जरूरी नहीं होता, लेकिन हर दिन ईमानदार होना बेहद जरूरी होता है।
2: बिल्कुल, ईमानदार अपने काम के प्रति और अपने कोशिशों के प्रति होना बहुत ही जरूरी है।
1: जी, लाइफ में ऑनेस्टी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप अपने रिश्तों में ऑनेस्ट हैं, अपने काम में ऑनेस्ट हैं, अपनी कोशिशों में ऑनेस्ट हैं, तो आप हमेशा सक्सेस हो सकते हैं। आज शायद आपको सामने फेलियर नजर आ रहा हो, आप जो कोशिश कर रहे हो वो सफल भी नजर नहीं आ रही हो, लेकिन यकीन मानिए जब आप लगातार ये कोशिशें करते रहते हैं, ऑनेस्ट होकर करते रहते हैं, तो वो जरूर सफल होती है
2: और वो परफेक्ट होने का रास्ता जरूर दिखलाती है।
1: जी हाँ, तो ये है आज का छोटा सा मॉर्निंग मंत्रा। गुड मॉर्निंग लखनऊ पर
2: शिवम और निधि है
1: आपके साथ। गुड मॉर्निंग
2: लखनऊ।

0: मुद्दा आज का। आठ बजकर 27 मिनट हो गए हैं और जैसा कि ये जो खिली खिली धूप है निधि, अभी मैं जब स्टूडियो आ रहा था तो बिल्कुल एकदम खिली खिली वाली धूप ली थी, एकदम बढ़िया मीठी मीठी वाली धूप। आपको नहीं लगता कि मतलब ये जो टाइमिंग वाला है कि मतलब गर्मियों में की जो दोपहर है और जो सुबह है वो अपनी जगह से खिसक के थोड़ा सा आगे चली आती है, तो कभी कभी ऐसा नहीं होता कि मतलब सुबह सुबह उठो तो ऐसा लगता है कि भाई साहब ये अचानक से दोपहर कहाँ हो गई।
1: जी ऐसा लगता है सुबह हुई नहीं, डायरेक्ट दोपहर ही हो गई, इतनी ज्यादा गर्मी है।
0: हाँ तो वो सुबह वाली जो होती है ना वो सुबह थोड़ा और पहले हो जाती है, दोपहर थोड़ा सा और पहले आ जाती है,
1: सारा टाइम आगे बढ़ता चला जा रहा है। और ये बात शिवम ने सही कही, जब मैं नॉर्मली पहले आती थी ना तो मैं अक्सर आपसे भी कहती थी, ऑन एयर भी ये कहती थी कि मैं तो भाई तारों की छांव में हूं, लेकिन आज जब मैं आई हूं ना तो लिटरली सूरज निकल आए थे, चमचमाते हुए सूरज निकल आए थे
0: और फुल ब्राइटनेस के साथ। मतलब उन्हें कोई बताया कि भाई साहब ऑटो मोड थोड़ा सा रखिए कि मतलब जरूरी हो जाए कि मतलब हम लोग भी भगवान के ही बनाए हुए हैं, थोड़ा सा तरस खा लीजिए इस गर्मी में।
1: जी हाँ तरस खाने वाले, लेकिन हाँ अगर इतना ज्यादा तरस खाने लगेंगे तो फिर समर नहीं लगेगा ना।
0: हाँ लेकिन ये भी है, तो भाई साहब जब तबीयत खराब हो जाती है तो होता है ना कि भाई कोई सेवा करने वाली हो, कोई समझाए या कोई ऐसा हो जो आपका ख्याल रखे, नर्स मतलब जो होते हैं ना कि नर्स कोई हो जो आपको घर में थोड़ा सा हेल्प करे। तो वैसे लगता नहीं है कि मतलब आज कुछ स्पेशल डे है इसी तरीके का कुछ?
1: जी शिवम बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, आज है विश्व नर्स दिवस यानी नर्सिंग डे, आज के दिन मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत की बात की जाए तो पहली बार 1953 में इसकी शुरुआत हुई थी।
0: अच्छा
1: जी, और आपको पता है आज के दिन को यानी नर्सिंग ये जो प्रोफेशन है जो सबसे ज्यादा सम्माननीय प्रोफेशन कहलाया जाता है वो मनाया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के सम्मान में। वही फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिन्हें लेडी विद द लैम्प कहा जाता है और जिन्हें पहली नर्स माना जाता है। और शिवम ऐसा कहा भी जाता है कि उनकी वजह से ही नर्सिंग को नर्सेस को ये सम्मान दिया जाता है। और ये प्रोफेशन भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये निस्वार्थ सेवा जो नर्सेस करती हैं पेशेंट की वो शायद ही उतनी शिद्दत से कोई और कर सके।
0: बिल्कुल सही कहा। और आपको बता दें कि जब पेशेवर चिकित्सक दूसरे रोगियों को देखने में व्यस्त होते हैं तब रोगियों को 24 घंटे देखभाल वही लोग करते हैं। और आपको ये भी बताते चले कि नर्सिंग रोगियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए उनकी बीमारियों को नियंत्रित करने मित्रवत, सहायक और स्नेहशील होने की उम्मीद की जाती है। और आज हम मना रहे हैं क्या?
1: अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। तो नर्सिंग का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अच्छा वैसे ये जो यूनिफॉर्म में नर्सेज हैं वो तो डेफिनेटली हमारी मेडिकल फ्रटर्निटी की बैकबोन कहलाई जा सकती है, लेकिन हमारे घर में भी ऐसी कोई ना कोई ज़रूर होता है जो हमेशा हमारी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। हम ज़रा सा बीमार हो वो तुरंत हमारे ख्याल रखने के लिए तैयार हो जाते हैं।
0: बिल्कुल, प्रॉपर डाइट चार्ट के साथ पूरी सारी जानकारी जो आपके लिए वो सूटेबल होती है वो सारी चीज़ें आपके लिए की जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि आज का मुद्दा हम आपको यही बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा मुद्दा जो नर्सेस से जुड़ा हो या ऐसी कोई एक्सपीरियंस जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं कि हॉस्पिटल में गए और बहुत अच्छी देखभाल हुई या कोई ऐसी नर्स जिसने आपकी बहुत ही सेवा की या आपके किसी फैमिली मेंबर की बहुत ही हेल्प की, तो वो चीजें आपको याद है, कोई ऐसा कुछ याद है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं fmakashwadilakhnow@gmail.com पर।
1: जी आज का यही मुद्दा है कि आपकी लाइफ में नर्स से जुड़ा हुआ, नर्सिंग से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा वाक्या रहा हो जो आज तक आपके जहन में रहा हो और जो जिसने आपको उस नर्स को कहने पर मजबूर कर दिया हो, थैंक यू सो मच। ऐसे बहुत सारे वाक्या होते हैं क्योंकि हम जब हॉस्पिटल में होते हैं ना तो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, भाई डॉक्टर आता है रूटीन चेकअप करता है और फिर वो चला जाता है, लेकिन जितनी देर हम उस हॉस्पिटल में या हमारे अपने उस हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं ये वो ब्रिगेड होती है जो हमेशा हमारी स्ट्रेंथ बनकर, मेंटल स्ट्रेंथ बनकर साथ रहती है।
0: बिल्कुल, और अगर आपके घर में भी कुछ ऐसा कोई सदस्य हो जो इस तरीके की सोच या भावना रखता है जो हेल्पिंग नेचर का हो तो उनके बारे में भी जिक्र जरूर करिएगा। इंतजार करेंगे आपके ईमेल का।
1: जी हाँ, fmakashwadilakhnow@gmail.com पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। अगला ट्रैक आपके रेडियो सेट पर।

0: जी मलंग मलंग करते हुए ये निकल गए और हम और शिवम वापस आ गए गुड मॉर्निंग लखनऊ पर। और शिवम बड़े मुद्दे की बात कर रहे हैं क्योंकि आज हम बड़े मंगल की बात कर रहे हैं।
1: जी हाँ, और बड़ा वो मंगल जिसका लोग साल भर बड़ी बेचैनी और बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं। वो मतलब क्या ही बताएं कि मतलब जब आप उस रास्ते से निकल रहे होते तो अभी वो जो होता है ना कि मेज वेज लग रही होती है, कुर्सियां लग रही होती हैं, उधर एक तरफ सब्जियां कट रही होती हैं, तो वो होता है ना कि भाई साहब कितनी देर में मतलब
0: शिवम की आंखों में भंडारे की जो चमक है, आई विश कि हम रेडियो पे आपको दिखा सकते हैं।
1: बिल्कुल वो लोग

0: लोग तो फील कर रहे होंगे कि ऐसे ही कुछ चमक उनके पास भी है भाई, वो भी तो मतलब बिल्कुल बेकरार होंगे। और रही बात आज जो ट्रैफिक की कंडीशन है और जो माहौल है उसके बारे में भी बात करने लगे हाथ।
1: जी हाँ, जब बात बड़े मंगल की होती है तो बिल्कुल श्रद्धा की बात है, और श्रद्धा की बात के साथ साथ सेवा का भी ये पर्व होता है। लेकिन भाई, जब आप श्रद्धा और सेवा कर रहे होते हैं तो आप और ज्यादा पब्लिक को शायद परेशान कर रहे होते हैं जाने अनजाने में, कैसे?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। कहने का मतलब ये है कि जगह अगर आप जहाँ भंडारे लगे हुए हैं या कहीं मंदिर है, आमतौर पर बहुत वहाँ रश हो जाता है, तो हमें करना क्या है कि हमें ऐसी परिस्थिति में भी ट्रैफिक रूल फॉलो करने हैं। और जो एक होती है ना कि एक अपने अंदर जो एक हम विकसित करते हैं समझ, वो भी जरूर लेके जाए। दर्शन करते हैं हम कहीं, कभी कभी ऐसा होता है जल्दी जल्दी में हम अपनी गाड़ी या चीज़ों को हम सड़क पर ही भूल जाते हैं, या उसकी वजह से और लोगों को परेशानी होने लगती है, या अगर कहीं भंडारा लगा हुआ है वहाँ खाने पीने की कोई चीज़ें मिल रही हैं तो पत्तल दोने जो चीज़ें होती हैं वो हम कूड़ेदान में न डाल के पूरे सड़क पर बिखेर देते हैं। मतलब भंडारा लगा हुआ है यहाँ और 2 किलोमीटर दूर तक पत्तल बिखरी पड़ी हुई।
1: जी, पत्तल देख के आपको समझ में आ जाएगा कि आगे किस चौराहे पे क्या चीज़ बट रही है। और इसके साथ साथ ये जो चीज़ें ये तो होती होती हैं, साथ ही साथ एक नुकसान और बहुत ज्यादा देखा जाता है, वो होता है खाने का, यानी अन्न का नुकसान। भाई उतना ही लीजिए जितना आप खा सकते हैं। आप लालच में कई बार ऐसा कई लोग करते हैं कि लालच में वो ले लेते हैं, कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और फिर या क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है तो बट ऑब्वियस ही बात है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो खराब हो जाएगा और फिर आप उसे फेंकते हैं। तो डस्टबिन में जाने से बेहतर है कि वो किसी के पेट में जाए।
0: बिल्कुल सही कहा। और नैतिक जिम्मेदारी बिल्कुल ना भूलिए, आप भी एक इंसान है और आपके शहर के जो लोग हैं वो भी आपके ही हैं। तो कोशिश ये करिए कि आपकी वजह से या किसी की वजह से शहर के लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि अगर आप किसी वजह से फंसते हैं तो कहीं ना कहीं वो लोगों की ही प्रॉब्लम होती है, लोगों की वजह से ही दिक्कत होती है। तो अगर सारी चीज़ें अपने समय पे हो, सही से हो, तो सहूलियत में मिलेगी और आप फिर हंसते मुस्कुराते गर्मा गर्म पूड़ी अगर 2 कम भी मिलेगी तो कोई बात नहीं, चल
1: जी हाँ 2 कम खाएंगे। लेकिन ये एक बार और एक बात और है, ये जो भंडारे का भोग होता है ना, इसका स्वाद भी बिल्कुल अलग होता है।
0: बिल्कुल, चाहे आप घर में कितना भी बढ़िया देसी घी में भाई साहब क्यों नहीं रोटी बना ले, पूड़ी बना ले, लेकिन वो वाली जो फीलिंग है भाई साहब 2 एक्स्ट्रा पूड़ी घर ले जाना है।
1: बिल्कुल, ये तो होता ही होता है, ये स्वाद बिल्कुल अलग होता है। लेकिन हाँ, स्वाद के साथ साथ सेहत का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी होता है, इसलिए बस उतना ही लीजिए जितना आपको भूख है।
0: बिल्कुल,
1: कलेक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, साथ सफाई
0: तो
1: का भी।
0: ऐसी ही कुछ खट्टी मीठी बातों के साथ बने रहिए हमारे साथ शिवम और
1: निधि के साथ। गुड मॉर्निंग लखनऊ पर, गुड मॉर्निंग।

0: हैं और क्योंकि हम बड़े मंगल की बात कर रहे हैं लगातार और भंडारों की बात कर रहे हैं, आयोजनों की बात कर रहे हैं, तो आज शहर में, हमारे शहर लखनऊ में क्या कुछ खास आयोजन होने वाला है, इसके बारे में जानकारी हमसे साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रधान पुरोहित श्री श्याम पाठक जी, जो कि अमीनाबाद हनुमान मंदिर के प्रधान पुरोहित हैं। तो आइए जानते हैं क्या कुछ खास आज होने वाला है।
1: हेलो हेलो सर, नमस्ते।
2: जय बाबा की।
1: हमें बताएं कि आज क्या क्या आयोजन होने वाले हैं और क्या टाइमिंग है।
2: सवेरे 5 बजे मंदिर जब खुला है
1: जी,
2: तो मंगला आरती हो करके, और अभी जो है श्रृंगार आरती हो चुकी है
1: जी,
2: 12 बजे भोग आरती होगी, भंडारे का आयोजन और सुंदरकांड का पाठ
1: जी,
2: जो 5 तक की चलेगा
0: जी। पुरोहित जी, अगर
2: 12:30 बजे आरती होती है।
0: पुरोहित जी, अगर बड़े मंगल की विशेषता की बात करें तो बड़ा मंगल क्यों विशेष है?
1: जी।
0: पुरोहित जी, अगर बड़े मंगल की बात करें तो बड़ा मंगल क्यों विशेष माना जाता है?
1: हेलो
2: हेलो
1: पुरोहित जी, एक सवाल ये हम पूछ रहे थे कि बड़ा मंगल का जो विशेषता है उसके बारे में हमें थोड़ा सा बता दें।
2: लखनऊ में
1: जी,
2: हेलो
1: जी, आवाज आ रही है, आप बोलिए। जी,
2: उन्हें किसी फकीर ने बताया फैजाबाद में
1: जी,
2: कि जहाँ पे हाथी बैठ जाएगा वहाँ पे खुदवाना तुम्हारा काज प्रसिद्ध होगा
1: जी।
2: तो वो जब हाथी से चले फैजाबाद हो के अलीगंज पहुंचे हैं, चौकी का एरिया था
1: जी,
2: बाकी कहीं कुछ था नहीं, और मुस्लिम लोग राजा थे, तो हाथी जो है अलीगंज जो पुराना मंदिर है 4 सितारा जिसको बना हुआ है
1: जी जी,
2: हाँ वहां पे बैठ गया। वहां जब नवाब ने खुलवाया तो वहां पर मूर्ति वही स्वयं निकली।
1: अच्छा जी,
2: तो मंगल के दिन उनके पुत्र रत्नकार जन्म हुआ। तो मंगल के दिन उन्होंने प्याऊ और भंडारा वो लगवाया।
1: क्या बात है,
2: है ना
1: जी।
2: तो देश में ही पहले मंगल को हुआ
1: जी,
2: उन्होंने प्याऊ और भंडारा लगवाया तब से, और सरकारी छुट्टी होती थी भाई, सब नवाबों का राज था।
1: हाँ, हाँ।
2: तब की छुट्टी आज तक की चल रही है
1: जी, मतलब प्रथा बहुत पुरानी है जी।
2: हाँ बहुत पुरानी, और उसके बाद जो है ये मंदिर बना शहर का
1: जी,
2: तब वो ही मंदिर थे, एक अलीगंज एक अमीनाबाद
1: जी,
2: ये 1881 ये भी स्वयंभू है, उसका मुख्य है भगवान जी, बहुत कल्याणकारी है
1: जी।
2: तो नीम करोरी बाबा वहाँ आते थे, क्या नाम है, नीचे जो संकट मोचन जी का मंदिर है वो उनके किनारे
1: जी,
2: वही बैठते थे, या तो यहाँ पे कुएं पे आके बैठते
1: जी। कहने का मतलब ये है कि मतलब ये प्रथा बहुत पुरानी है और इसकी प्राचीन कथाएं जो है बहुत ही पुरानी है।
2: ये का मेला खाली लखनऊ में ही ये नवाबों द्वारा लगवाया गया
1: जी,
2: और चालू हुआ और आज ये पूरे विश्व में फैला हुआ।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बहुत बहुत शुक्रिया पुरोहित जी, आप प्रधान पुरोहित हैं श्री श्याम पाठक जी अमीनाबाद हनुमान मंदिर से हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत बहुत शुक्रिया।
2: जगह हर जगह सबका कल्याण हनुमंत लाल करें, पूरे विश्व का कल्याण करें
1: जी।
2: हनुमान जी महाराज की
1: जय।
0: तो देखिए यही खासियत होती है, और बैकग्राउंड में जो

0: घंटे की आवाज आ रही थी ना, वो हमें स्टूडियो में भी बिल्कुल भक्तिमय माहौल बना दिया है ना।
1: बिल्कुल सही कहा। और ये जो बातें होती हैं कि जैसे इन्होंने बताया कि आने वाले समय में जो चलता रहेगा भंडारा और किस तरीके से, किस इसकी पौराणिक कथाएं क्या थी और किस प्रयोजन से ये भंडारा और प्याऊ का ये हुआ, तो वो ऐसा लगता है ना कि हम सिर्फ एक खाने के पर्पज पे नहीं, एक भंडारे के नहीं, एक उसकी जो कथा है, जो उसकी एक एक कहानी होती है, वो भी आज हमने उसको समझा।
0: और कहीं ना कहीं आज के दिन को, ये बड़े मंगल को भी अगर सेवा से जोड़ा जाए तो गलत नहीं होगा। छबील लगाना लोगों की सेवा करने के बराबर होता है और सेवा से जुड़ा हुआ ही है हमारा आज का दिन भी, क्योंकि आज हम अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मना रहे हैं और इसी से जुड़ा हुआ है हमारा आज का मुद्दा। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस जो कभी किसी नर्स के साथ जुड़ा हुआ हो, किसी हॉस्पिटल का, या कोई वाक्य ऐसा रहा हो, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और हमारे जीवन में, मेडिकल लाइन में नर्सेस की क्या कुछ इंपॉर्टेंस है, वो भी आप अपने ओपिनियंस हमसे शेयर कर सकते हैं fmakashwani@gmail.com पर। अब अगला ट्रैक
1: सुनिए और एंजॉय करिए, और हाँ, ईमेल जल्दी जल्दी लिख के भेजिए क्योंकि पढ़ना भी तो है।
0: हाँ, और फिर आप शिकायत करेंगे हमारा नाम शामिल नहीं किया।
1: बिल्कुल सही कहा।

0: जी, सारे जग में घूमते हुए हमारे पास बहुत सारी मेल आ गई और शिवम लगातार स्क्रीन पर टकटकी लगाए मेल्स पढ़ रहे हैं।
1: बिल्कुल, वो टकटकी लगाए इसलिए क्योंकि जो टिमटिमा रहे थे मेल, तो उनको पढ़ना हो जाता है जरूरी। तो पहला मेल है नीरज कुमार जी की आईडी से और ये है रिंकी पिंकी, जगदीशपुर शिवगढ़ दीवानों का शहर जिला रायबरेली।
0: ओके
1: भाई साहब, ये रायबरेली दीवानों का शहर है, लखनऊ किस चीज का शहर है?
0: लखनऊ नवाबों का शहर है,
1: नवाबों का शहर है, जी हाँ,
0: नवाबियत का शहर है, सेवा का शहर है।
1: तो लिख रहे हैं कि गुड मॉर्निंग सुप्रभात, हम लोग एकदम बढ़िया है, कार्यक्रम से जुड़ गए हैं।

0: जी, सारे जग में घूमते हुए हमारे पास बहुत सारी मेल आ गई है और शिवम लगातार स्क्रीन पर टकटकी लगाए मेल्स पढ़ रहे हैं।
1: बिल्कुल, वो टकटकी लगाए इसलिए क्योंकि जो टिमटिमा रहे थे मेल तो उनको पढ़ना हो जाता है जरूरी। तो पहला मेल है नीरज कुमार जी की आईडी से और ये है रिंकी पिंकी, जगदीशपुर शिवगढ़ दीवानों का शहर जिला रायबरेली।
0: ओके
1: भाई साहब, ये रायबरेली दीवानों का शहर है, लखनऊ किस चीज का शहर है?
0: लखनऊ नवाबों का शहर है।
1: नवाबों का शहर है जी,
0: नवाबियत का शहर है, सेवा का शहर है।
1: तो लिख रहे हैं कि गुड मॉर्निंग सुप्रभात, हम लोग एकदम बढ़िया है, कार्यक्रम से जुड़ गए हैं साथ निभाने के लिए और आज इनकी दीदी और जीजू की शादी की सालगिरह है और इनके लिए कह रही है कि हमें मुबारकबाद दीजिएगा। तो बहुत बहुत मुबारकबाद और मेल जरूर शामिल करिएगा, हालांकि ये मुद्दे से लिखा कुछ भी नहीं लिख के भेजी है, उम्मीद करेंगे कि लिख के जरूर भेजें।
0: लेकिन ये बड़ा मुद्दा लिख के भेजिए कि 8 साल पूरे हो गए हैं, 8 साल आपस में कट गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अगला से जो मेल है मेरे पास मोनू सेठ जी का है। शिवम भैया जी, निधि जी, नमस्ते, जय महाकाल, कैसन है? हम एकदम बढ़िया हैं और शिवम जी भी एकदम मस्त है, हमारे बगल में ही बैठे हुए हैं तो बिल्कुल मस्त है।
1: बिल्कुल,
0: और आपने हमेशा की तरह संस्कृत में हमें कुछ पंक्तियां लिखी हैं जिसका अर्थ है, जिस प्रकार अच्छे खेत में बीज बोने पर फसल अच्छी होती है, उसी प्रकार योग्य व्यक्ति सुपात्र को दिया गया दान भी कभी नष्ट नहीं होता। क्या बात है, अगर मुद्दे से लिखी हुई बात अगर हमसे शेयर करते तो हमें भी अच्छा लगता।
1: बिल्कुल सही कहा। आगे सुमित छत्री जी हैं, ये लिखते हैं, शिवम भैया और निधि बहन को सुप्रभात, एफएम रेनबो के सभी श्रोताओं को सुप्रभात, शिवम भैया पार्वती पते हर हर महादेव महादेव, और इन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर किया है और हम उम्मीद करेंगे कि आप मुद्दे से भी जुड़ा चीज हम तक जरूर पहुंचाएं लिख के अपने अनुभव।
0: अगला मेल हमारे पास जावेद अख्तर जी, लखनऊ शहर को पूरी आन बान और शान के साथ गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू, हम दोनों को भी विश करने के लिए बहुत शुक्रिया।
1: बहुत शुक्रिया।
0: और अच्छा, इन्होंने अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया, अपने छोटे भाई को हॉस्पिटल में किसी कारणवश इन्हें एडमिट कराना पड़ा था और वो दिन इन्हें आज भी याद है कि नर्स ने इनके भाई का किस तरह ख्याल रखा था और इन्हें एहसास ही नहीं हो रहा था कि ये हॉस्पिटल में है। रेशमी नगर मुबारकपुर आजमगढ़ से आपने हमें मेल किया जी, ऐसा ही अपनापन का वो जो एहसास होता है वो हमें नर्सेस से मिलता है।
1: जी हाँ, और अगला मेल जो मैं पढ़ रहा हूँ वो है संतोष जी का। ये गुड मॉर्निंग लिखे हैं, गुरुग्राम हरियाणा से सुन रहे हैं और इन्होंने भी मुद्दे से जुड़ा कुछ नहीं लिख के भेजा है और ये अपनी वाइफ पूजा भारद्वाज के साथ ये कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं।
0: बस कभी कभी ऐसा ही होता है, लोग सेवा करते रहते हैं लेकिन उनके जेस्चर्स को देखिए कितनी आसानी से हम लोग इग्नोर कर देते हैं। जीवन में हमारे नर्सेस का बहुत बड़ा योगदान है, उनकी सेवा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अगर मेडिकल फ्रटर्निटी की बैकबोन कहा जाए नर्सेस को तो वो गलत नहीं होगा। डॉक्टर जितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं हमारे जीवन में, हमारा ख्याल रखने के लिए मेडिकल लाइन में नर्सेस। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आपके साथ रहा हो वो हमसे शेयर कर सकते हैं एफएम आकाशवाणी लखनऊ पर। और पहला हाफ
1: खत्म होने को है,
0: अगला ट्रैक आपके रेडियो सेट पर आ रहा है, क्या खबर थी जाना, तुमसे प्यार हो जाएगा, हमें आपसे बहुत सारा प्यार है इसीलिए हम अगले घंटे में भी आपसे यही मुलाकात करेंगे।
1: बिल्कुल, तब तक आप बने रहिए यहीं पे, मिलते हैं एक बेहतरीन गाने और न्यूज ब्रेक के बाद।

नमस्कार, सुबह के 9 बज रहे हैं। अब सुनिए अखबारों की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक बार फिर से देशवासियों से तेल बचाने, सोने की खरीद टालने और विदेश यात्रा कम करने की अपील किए जाने की खबर को हिंदुस्तान और नवभारत टाइम्स ने अपनी हेडलाइन बनाया है। इस खबर में अखबारों ने लिखा है कि सोमवार शाम वडोदरा में पश्चिम एशिया संकट का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि जहां तक संभव हो सके वहां घर से काम करें, साथ ही सार्वजनिक परिवहन और ई वाहनों का अधिक इस्तेमाल करने को कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जैसे देश ने मिलकर कोरोना संकट का सामना किया था, वैसे ही मौजूदा संकट से भी बाहर निकल जाएंगे। उन्होंने भरोसा दिया कि देश में पेट्रोल, डीजल व एलपीजी की कोई कमी नहीं है। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ का हत्या के मामले में पुलिस की एसटीएफ द्वारा रविवार रात यूपी और बिहार से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किए जाने की खबर को अमर उजाला और दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अखबारों ने लिखा है कि कोलकाता पुलिस ने यूपी के बलिया के आनंद नगर निवासी राज सिंह को अयोध्या से और बिहार के बक्सर से उसके 2 साथियों मयंक राज मिश्रा और विक्की मौर्या को गिरफ्तार किया है। बंगाल पुलिस ने तीनों आरोपितों को कल उत्तर 24 परगना जिले के 12-7 कोर्ट में पेश किया। 24 घंटे में 3 हत्याएं करने वाला सीरियल किलर को सोमवार देर रात मुठभेड़ में ढेर किए जाने की खबर भी आज अखबारों की सुर्खियों में है। हिंदुस्तान और दैनिक जागरण ने लिखा कि चंदौली जिले में 24 घंटे के भीतर 2 रेल यात्रियों और अस्पताल में भर्ती महिला की गोली मारकर हत्या करने वाला आरोपी गुरप्रीत सिंह कल देर रात पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा अदालतों में लंबित मुकदमों के बोझ के लिए सरकार और पुलिस के ढुलमुल कार्यशैली की जिम्मेदारी ठहराए जाने की खबर को भी आज अमर उजाला ने अपनी पहली खबर बनाया है। अखबार ने लिखा है कि कोर्ट ने कहा, अदालतों पर लगा तारीख पर तारीख दाग तब तक नहीं हटेगा जब तक सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार नहीं होगा। अमेरिका द्वारा ईरान के शांति प्रस्ताव को ठुकराए जाने की खबर को अमृत विचार और हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने पर स्थान दिया है। अखबारों ने लिखा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ जारी युद्ध को समाप्त करने की संबंधी उसके प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान का प्रस्ताव बिल्कुल

पसंद नहीं आया, यह पूरी तरह अस्वीकार्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा देश में पेट्रोल, डीजल व एलपीजी की पर्याप्त भंडार होने और लोगों से न घबराने की अपील किए जाने की खबर को अमर उजाला ने प्रमुखता दी है। अखबार ने लिखा है, पश्चिम एशिया संकट पर अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की अनौपचारिक बैठक के बाद कल रक्षा मंत्री ने कहा, देश में जरूरी चीजों की पर्याप्त आपूर्ति है, किसी भी अवरोध का रोकने के लिए सरकार को ठोस कदम उठा रही है। इसके साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कल वाराणसी में सोमनाथ संकल्प महोत्सव में शामिल होने, दिल्ली में आयोजित भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक बिजनेस समिट में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शामिल होने, एनटीए द्वारा नीट यूजी की परीक्षा में धांधली के आरोपों को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिए जाने और बंगाल की सीमा पर बीएसएफ द्वारा बाड़ लगाए जाने की खबर भी आज अखबारों के पहले पन्ने पर प्रकाशित हुई है। इसी के साथ अखबारों की सुर्खियां समाप्त होती हैं। अगला बुलेटिन सुबह 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NACC द्वारा जनहित में जारी।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: जी हाँ, गुड मॉर्निंग, लखनऊ का सेकेंड हाफ शुरू हो चुका है,
6: मतलब कि 9:05 हो गया है। गुड मॉर्निंग लखनऊ में भाई, वही बिल्कुल वही पुराना शिवम और निधि है साथ में, और हम बातें कर रहे हैं चटपटी खट्टी मीठी, बिल्कुल सारे स्वादों का, बातों का आनंद हम लोगों से, मतलब
5: आज आप यकीन मानिए, आज जितनी बार आप शिवम को सुनेंगे आपको स्वाद, खाना, पकवान, भंडारा, इनकी बातें जरूर, इनका जिक्र जरूर सुनाई देगा।
6: बिल्कुल, बार बार के लेके आए हम तो, लिख लिख के ले आए।
5: और शिवम जब आते हैं ना तो नाश्ता और चाय भी बिल्कुल पैक करके लेके आते हैं, और आते ही आते देखिए उन्होंने मुझे गर्मा गर्म चाय भी पिलाई थी, तो ऐसा जब आपको सुबह सुबह सरप्राइज मिल जाता है तो बड़ा अच्छा आपकी सुबह बन जाती है।
6: बिल्कुल, और जब किसी ने मुझे सुबह सुबह मंगलवार के दिन पूजा करके प्रसाद खिलाया हो तो बाकी बनता है ना कि चाय भी ऑफर जरूर की जाए।
5: जी हाँ, बस ऐसा ही चलती है जिंदगी, यानी थोड़ा सा आप किसी के लिए कुछ खास कर दीजिए, थोड़ा कोई और आपके लिए खास कर दे, वो दिन भी बेहतर हो जाता है और लाइफ भी खूबसूरत हो जाती है। हम और शिवम ने एक दूसरे की मॉर्निंग को बना दिया, उम्मीद करते हैं आपकी मॉर्निंग भी खूबसूरत हुई होगी, और अगर नहीं हुई है तो आप कोशिश करिएगा कि आप किसी के लिए आज के दिन को बेहतर बना सकें।
6: बिल्कुल, और इस गाने के साथ तो बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि जागे जागे जब अरमान रहेंगे तो आप भी बिल्कुल जागे जागे से रहेंगे।
5: मॉर्निंग हो चुकी है बहुत देर पहले, सूरज बिल्कुल टिमटिमाता हुआ नहीं, चमकता हुआ बाहर आ चुका है।
6: मैं भी ये कहने वाला था।
5: तो बिल्कुल जाग जाइए, और टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लेके निकलेगा क्योंकि आज ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा आपको मिलेगा।
6: बिल्कुल,

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

0: जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: इतिहास के पन्नों में आज का दिन।
4: 7 दिन तो शुरुआत हो चुकी है, लेकिन हमारी हिस्ट्री हमेशा कुछ ना कुछ खास याद दिलाती है, जो ये बताती है कि आज का दिन क्यों इम्पोर्टेंट है। आज के दिन की बात की जाए तो 1459 में, यानी 1459 में, आज ही के दिन जिसे हम ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं, जोधपुर शहर की स्थापना हुई थी। और ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। राम जोधा ने इसकी स्थापना की थी।
5: क्या बात है। अच्छा, आपको आइसक्रीम कैसी लगती है?
4: बहुत टेस्टी।
5: अच्छी लगती है ना? बहुत टेस्टी लगती है ना। देखने में, मतलब आपको लगा कि, मतलब जब एड आता है तो लगता है ना कि भाई साहब क्यों आइसक्रीम की एड बनाई है। तो आज ही के दिन 1977 में आइसक्रीम का पहला विज्ञापन जारी हुआ था
4: जी। और ये जो कहते हैं ना, आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम, ये सारी जो बातें हैं, जो आदतें हैं, जो स्लोगन है, हमें आज देख के ही सीखे हैं। 1941 की अगर बात की जाए तो Z3 यानी दुनिया का पहला कार्यशील प्रोग्राम और पूरी तरह से स्वचालित डिजिटल कंप्यूटर आज ही के दिन दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया गया था।
5: क्या बात है। और ये भी बताते चले कि विजय लक्ष्मी पंडित को संयुक्त राज्य अमेरिका USA में भारत का राजदूत आज ही के दिन 1949 में नियुक्त किया गया था।
4: वो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राजदूत बनी थी। और पहला नाम हमेशा ही खास हो जाता है, क्योंकि भाई पहला मुकाम पाना अपने आप में खास बात होती है।
5: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि आज ही के दिन क्रांतिकारी राज बिहारी बोस ने भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बने थे।
4: तो ऐसी बहुत सारी चीज हैं जो आज के दिन को खास बना देती हैं। बात की जाए आज के दिन की, तो और भी कुछ खास है क्या?
5: जी हाँ, आज ही के दिन हम आपको बता दें कि आज ही के दिन शिवाजी औरंगजेब से मिलने आग्रा पहुंचे थे 1666 में।
4: और 1459 12 मई को ही, आज ही के दिन, जैसे हमने बताया कि जोधपुर की स्थापना हुई थी। तो ये वो सारी चीजें हैं जो इतिहास में घटित हुई थी और आज के दिन दोबारा रिमाइंड कराई जाती हैं। फिलहाल गुड मॉर्निंग लखनऊ चल रहा है और आज के दिन निधि और शिवम आपके साथ हैं इस प्रोग्राम में, जो लगातार आपसे बातें कर रहे हैं। वैसे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज बहुत सारे डाइवर्जेंस भी होंगे, तो उन डाइवर्जेंस को आप तक पहुंचाने की, ट्रैफिक अपडेट देने की। लेकिन फिलहाल अगला ट्रैक आपके रेडियो सेट पर स्ट्रेट। ये गाना इसलिए ताकि आप लापता ना हो ट्रैफिक में खोकर,
5: पते में रहें आप।
4: जी हाँ, गुड मॉर्निंग लखनऊ पर अगली ट्रैफिक अपडेट हम आपके साथ जोड़ेंगे जरूर जल्द ही।

0: जी बिल्कुल लापता ना रहिएगा, और इसीलिए आपको हम अभी से बता दे रहे हैं कि कई इलाकों में आज बिजली ना बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है, यानी आती जाती रहेगी। और वो इलाके कौन से होने वाले हैं? शहर के कई इलाकों में मंगलवार को बिजली गुल रहने वाली है। गोमती नगर के मंत्री आवास उपकेंद्र के यार्ड में केबल जोड़ने का काम किया जाएगा और सुबह 7 बजे से 9 बजे तक आपूर्ति बंद हो सकती है, उससे ज़्यादा भी 1-1.5 घंटा आप आगे पीछे मान सकते हैं। इससे विकल्प खंड 3, विद्युत नियामक आयोग, विक्रांत खंड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वास्तु खंड, पंचशील, पारिजात हाईनेक्ट, विक्रांत खंड 1 और 2, यहाँ पर जो है ना वो बिजली जा सकती है। और उसके साथ ही साथ अबेरनपुर उपकेंद्र के टेलीफोन एक्सचेंज के आसपास भी सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिजली जा सकती है।
1: जी हाँ, तो अगर आपको कुछ ज़रूरी काम हो तो ज़रूर अपना जो इम्पोर्टेंट काम है वो ज़रूर कर लीजिएगा, पानी वानी भर लीजिएगा, फ़ोन और जितने भी सुविधाएं बिजली से हैं वो सब चीज़ें कर लीजिएगा। 9:21 हो गया और अब बारी है आपको बता दें कि शहर में क्या क्या हो रहा है इसके बारे में। मत्स्य आनुवांशिक संस्थान की ओर से जैव विविधता प्रबंधन पर संगोष्ठी होने वाली है तेलीबाग संस्थान परिसर में सुबह 9:30 बजे, आप वहाँ जा सकते हैं। 9:21 हो रहा है तो अगर आप जा रही होगा, अगर आप जाएंगे तो ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करते हुए जाइएगा।
0: आज बार बार हम लोग ट्रैफिक नियम का याद दिला रहे हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि आज थोड़ी बहुत रश होने वाली है, थोड़ी बहुत नहीं थोड़ा ज्यादा ही होगा, तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप घर से निकलिएगा तो खाने पीने का सामान और अपना सब चीजें लेके तो निकलिएगा। एक जो स्पेशल चीज है वो बोलते हैं सबर, उसको जरूर लेके जाइएगा,
0: पेशेंस साथ में रख के ले चलिएगा, क्योंकि आपके हॉर्न बजाने से ट्रैफिक क्लियर नहीं होता।
1: बिल्कुल। और बीरबल साहनी पूरा विज्ञान संस्थान की ओर से पूरा विज्ञान एवं एआई पर मंथन संस्थान के परिसर में सुबह 10 बजे होना है।
0: इसके अलावा जन संस्कृति मंच की ओर से शब्द स्तंभ है कि विमोचन और विमर्श निराला सभागार में होगा शाम को 3:30 बजे।
1: जी हाँ, और अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर प्रतियोगिता यूपी बैडमिंटन अकादमी और यूपी टेबल टेनिस कॉम्प्लेक्स में 10 बजे से होने को है।
0: तो ये वो सारी शहर की हलचल हैं जो आज शहर में होने वाली है, अगर आप इनका हिस्सा बनना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और डिजिटल क्लासेस की बात भी लगातार जारी है।
1: जी हाँ, डिजिटल के बारे में बता दें कि खान एकेडमी से गणित और विज्ञान की कराएंगे अभ्यास, जो कि कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को मिलेगी डिजिटल सुविधाएं। तो ये बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी विद्यालयों को साप्ताहिक समय सारणी और गणित व विज्ञान की 2 क्लास ICT लैब में निर्धारित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो ये जो बच्चे हैं

0: वो आप डिजिटली जो है वो पढ़ सकेंगे।
1: इसके अलावा लेखपाल की जो परीक्षा होने वाली है 21 मई को, उसके लिए बिल्कुल आप अपने एडमिट कार्ड और भर्ती परीक्षा केंद्र आपका कौन सा पड़ा है वो जारी होने वाला है, तो वो चेक कर सकते हैं यहाँ की वेबसाइट से। और एग्जाम जो है वो 21 मई को 10 बजे सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक 44 जिलों में होगा।
0: जी हाँ, तो आप इस पे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका शहर कौन सा है, कहाँ पेपर देने जाना है, और फुल तैयारी रखिए।
1: हाँ, और अभी हम और शिवम यही बात कर रहे थे कि देखिए प्रशासन की तरफ से आपके पास मेल आया है या नहीं आया है कि आपका एडमिट कार्ड जारी हो गया है, ये शायद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका एग्ज़ाम है, तो आप चेक करते रहें टाइम टू टाइम उस वेबसाइट को कि आपका एडमिट कार्ड आया है या नहीं। ये एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट की जिम्मेदारी होती है।
0: बिल्कुल सही कहा, और ज़रूरी ये भी हो जाता है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाएँ, कहीं और या कहीं अन्य वेबसाइट पर क्लिक करके ना देखें, हो सकता है भ्रम हो की स्थिति हो, लेकिन जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है उस पे सारी चीजें क्लियर होती हैं और ऑथेंटिक भी होती हैं।
1: जी 9:23 हो चुका है, प्रोग्राम चला गुड मॉर्निंग लखनऊ, और फिलहाल अगला ट्रैक आतिफ असलम की आवाज में आपके रेडियो सेट पर।

0: आप ये मत सोचिएगा कि आपको किस वक्त निकलना है, मौसम का क्या हाल रहेगा, हम आपको जल्दी से बता देते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहने वाला है।
1: जी हाँ, उसके लिए हमारे साथ है वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी मौसम अपडेट के साथ। हेलो सर, नमस्ते। हेलो,
2: गुड मॉर्निंग।
1: वेरी गुड मॉर्निंग सर, बताइए सर मौसम कैसा रहने वाला है।
2: देखिए मौसम की बात करें तो ऐसे दिन में अच्छी धूप खिली रहेगी, शाम को रात को मौसम एक तरीके से थोड़ा गर्मी का असर रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा कोई एक्सट्रीम टाइप का नहीं रहेगा। अभी भी तापमान अपने सामान से 3 से 4 डिग्री निगेटिव चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो मई में गर्मी पड़ती थी उस हिसाब से कमी है। तो कुल मिला के कहे तो थोड़ा दोपहर में गर्मी का एहसास होगा, लेकिन एक तरीके से थोड़ा सा बहुत ज्यादा कोई ऐसा एक्सट्रीम टाइप का नहीं होगा। और बाकी आने वाले दिनों में अगले 3-4 दिन थोड़ा हल्का हल्का तापमान में बढ़ोतरी होगा, तो जैसा कि वो अपने जो नॉर्मल है
1: जी,
2: वो अगले 3-4 दिन में धीरे धीरे 1-8 डिग्री ऐसे ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते नॉर्मल की तरफ जाएगा, तो लेकिन अभी तक कोई ऐसा कोई अलर्ट टाइप का सिचुएशन नहीं।
1: अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको हमसे जुड़ने के लिए और मौसम की अपडेट देने के लिए, और हम फिर आपसे कल जुड़ेंगे।
2: ओके, धन्यवाद
1: धन्यवाद सर। कहने का मतलब ये है निधि,
0: हाँ,
1: कि अभी जो प्रचंड गर्मी का जो बिल्कुल एकदम अभी वाला वो एक दहशत फैली हुई थी,
0: हाँ,
1: कि भाई साहब मतलब एकदम छाता लेके जाएंगे तो छतरी जल जाएगी वो वाला।
0: तो अभी अच्छा, आजकल मौसम बड़ा कंफ्यूज कर भी रहा है, कभी इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है कि आप परेशान हो जाते हो, और कभी एकदम से आंधी तूफान हो जाता है कि आप उससे भी ज्यादा परेशान हो जाते हो।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन आज जैसा कि दानिश जी ने कहा कि आज मौसम बहुत ज्यादा गर्म नहीं रहने वाला है, तो आप बिल्कुल पूरे दिन मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं और जा भी जा सकते हैं, लेकिन बस जैसा बार बार कह रहे हैं कि थोड़ा

0: टाइम लेके चलेगा क्योंकि बाहर ट्रैफिक आपको मिलेगा, सब्र साथ में रखेगा और कोशिश करेगा कि हॉर्न बजा बजा के आप दूसरों को परेशान ना करें। सर दर्द आपका भी होगा, दूसरे का भी होगा।
1: बिल्कुल, बहुत से लोगों को हमने देखा है कि मतलब वो बिना वजह भी हॉर्न बजाते रहते हैं। तो भाई साहब, वो ड्रम और गिटार नहीं है, आप घर पे आप उसका इस्तेमाल करिए, है ना। तो हॉर्न के साथ म्यूजिक की वो तान ना छेड़िए घर पे आके,
0: हॉर्न बिल्कुल ना बजाइए। हम लेकिन बजाएंगे क्या अगला ट्रैक जो आपके रेडियो सेट पे आने वाला है, बेहद खूबसूरत सा।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NACC द्वारा जनहित में जारी।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: 9:33 प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ, और बहुत सारी बातें हम रोड सेफ्टी के बारे में लगातार कर रहे हैं। उसके लिए वजह एक और इम्पोर्टेंट है।
6: क्या है?
5: क्योंकि हम सभी, वैसे तो UN में बेसिकली आज के ये जो रोड सेफ्टी वीक है वो मनाया जा रहा है, भारत में अलग मनाया जाता है, लेकिन कहीं भी ये रोड सेफ्टी वीक मनाया जाए, ये हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है।
6: जी हाँ, वर्ष 2026 में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह यानी कि UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक 8 से 14 मई 2026 के बीच मनाया जा रहा है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक प्रोग्राम है।
5: और जहां भारत की बात की जाए तो भारत में सड़क सुरक्षा सप्ताह जो 11 से 17 जनवरी के बीच मनाया जाता है, लेकिन जैसा कि अभी कुछ देर पहले हमने कहा कि सुरक्षा के आपसे जुड़ा हुआ है, तो कभी भी मनाया जाए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे इम्पोर्टेंट होती है हेल्थ हम सभी की, तो प्लांट्स की भी इम्पोर्टेंट होती है। वो पेड़ पौधे जो हमें स्वस्थ रखते हैं, उन्हें स्वस्थ रखना भी बेहद जरूरी होता है। इसीलिए
6: अक्सर निधि हम ये भूल जाते हैं कि सारी चीजें सबके हेल्थ तो होते हैं कि भाई हम पानी पीते रहे, खीरा ककड़ी खाते रहे, छाँव में चले, पौधों को अक्सर हम लगा के भूल जाते हैं। नहीं
5: जी हाँ, जो उन्हें भूल जाते हैं फिर हम कहते हैं कितनी गर्मी है यार, कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, कितनी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है।
6: बिल्कुल, और इस समय तो ये भी इतनी गर्मी है फिलहाल, मतलब अभी इधर बीच नहीं है गर्मी, वरना जो पिछले साल गर्मी थी और जो इस साल गर्मी पड़ने वाली है, तो जो लोग कहते हैं ना कि ये आउटडोर प्लांट है, आउटडोर प्लांट धूप में रख के मतलब उसे आप रख सकते हैं, लेकिन इतनी गर्मी कि आउटडोर प्लांट भी जल गए थे।
5: जी हाँ, इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ चुका है, इतना ज्यादा एनवायरमेंट चेंज होता चला जा रहा है। अब हम इतनी सारी बातें प्लांट हेल्थ की इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आज के दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ मनाया जाता है, यानी वो पेड़ पौधे जो आपने कभी लगाए थे सिर्फ सेल्फी खींचकर छोड़ देने के लिए नहीं है, उनका ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है अगर आप ये तापमान गिराना चाहते हैं, पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना चाहते हैं।
6: बिल्कुल, तो पौधों को हेल्थ के लिए, पौधों की स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए, कीटों व बीमारियों से बचाने के लिए, फसलों को बचाना है, जैव विविधता को बढ़ावा देना है। वैश्विक स्तर पर लगभग 40% फसलों का नुकसान होता है जो कीड़ों और बीमारियों के कारण होता है, जिसे कम करना इस दिवस का प्रमुख लक्ष्य है।
5: तो बहुत सारी बातें हम आज के दिन से कर रहे हैं। लगातार हमारे पास बहुत सारे मेल भी आ चुके हैं, तो क्या किया जाए, पढ़ा जाए मेल?
6: बिल्कुल, पढ़ लेते हैं मेल।
5: तो जल्दी से बताते हैं किस किस ने। पहला मेल आ चुका है वारिस अली जी का। इतना आसान नहीं है जिंदगी में हर किरदार निभाना, इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। बहुत खूब, आज का मुद्दा। आज से 3 साल पहले मैं बहुत बीमार पड़ गया था, मैं ऑन बेड था, ऐसे में मेरे भाई शकील ने मेरी बहुत खिदमत की थी। इस वक्त भी मैं बीमार हूँ, वो मेरी बहुत सेवा करते हैं, मैं FM के माध्यम से उन्हें थैंक्स बोलता हूँ और सभी को मेरे जैसा भाई मिले। वारिस अली जी, आपने आशबाग लखनऊ से हमें मेल किया, थैंक यू सो मच कि आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया। और ये वो नर्स है, देखिए, जो बिना यूनिफॉर्म के हमारी सेवा करते हैं, और इसी का जिक्र भी हमने कुछ देर पहले किया था कि हर नर्स शायद यूनिफॉर्म में नहीं होती, हमारे आसपास भी ऐसे कई सारे लोग मौजूद होते हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे होते हैं हमारी।
6: बिल्कुल सही कहा वारिस अली जी, इतना प्यारा सा मैसेज और अपने अनुभव साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबू अंसारी ने लिखा है, शिवम सर और निधि मैम, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, गाने बिल्कुल जबरदस्त, और ये अहमदपुर बाजार बाराबंकी से ईमेल कर रहे हैं, हालांकि मुद्दे से इन्होंने कुछ लिख के नहीं भेजा है।
5: गुलाबचा सिद्दीकी जी, आपका भी मेल मिल गया, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सारी तारीफ की और उसके साथ साथ आपने हमें बहुत सारे आम बना के भी भेजे हुए हैं। आई विश ये आम स्क्रीन से बाहर निकल के हम तक

0: पाते ना।
1: बिल्कुल सही कहा। वकील अहमद ने लिखा है, गुड मॉर्निंग आप दोनों को, इनकी इन्होंने लिखा है कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है, और हसीब डॉक्टर मेहावजगंज में थे तो सभी नर्स बहुत अच्छी थी, समय पर दवाई इंजेक्शन और अच्छे से मतलब सबका ख्याल रखती थी, और वो आज उन सभी को शुभकामनाएं देना चाहते हैं और बड़े मंगल की भी शुभकामनाएं इन्होंने हम तक पहुंचाई है।
0: तालिब अंसारी जी, थैंक यू सो मच। राजा कटरा बाराबंकी से आपने हमें मेल किया है और गुड मॉर्निंग टू यू टू। अच्छा, एक चीज़ और है, जब कोई प्यार से आपको, जब आप बहुत बीमार होते हैं, बहुत हताश होते हैं बीमारी की वजह से, आप मेंटली भी बहुत, ना फिजिकली नहीं, मेंटली भी आप बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं, उस टाइम पर जब आपको कोई प्यार से बोलता है नहीं ठीक हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा, तो आपको बहुत राहत मिलती है ना शिवा।
1: बिल्कुल, ये मुझे लगता है कि वो होता ना कि एक तिनका सहारा, तो आप उम्मीदों की लौ जो बिल्कुल एकदम जल पड़ती है कि हाँ भाई सब चलो कुछ तो अच्छा है। और सही बात है, पॉजिटिव रहना भी चाहिए चाहे किसी भी कंडीशन में हो। आपको लिखा गया है कि पुष्पांजलि और सदाबहार गीत आज का बहुत पसंद आया है, सदाबहार गीत में खूबसूरत गीतों को प्ले करके आज का दिन स्ट्रेस फ्री कर दिया है मुझे। तीसरी मंजिल के गीत इन्हें बहुत पसंद आए हैं, और ये उस ईमेल का थोड़ा सा हिस्सा रह गया है जो वारिस अली खान जी ने लिखा था।
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारी कोशिश आज की देखिए बिल्कुल सफल हो गई है कि आपको गाने पसंद आए। नीलू यादव जी, राधे राधे, आपको भी हमेशा की तरह बंगला बाजार से अपनी दोनों बेटियों के साथ हमारे प्रोग्राम सुन रही हैं, आपको भी गुड मॉर्निंग। हमें और शिवम को आपने गुड मॉर्निंग भेजा है, और नर्स जब समझाती हैं उसमें भी तुम्हारी भलाई होती है, नर्स जब तुम्हें डांटती हैं उसमें भी तुम्हारी भलाई होती है, नर्स जब हौसला बढ़ाती हैं उसमें भी तुम्हारी भलाई होती है, बिना भेदभाव के ख्याल रखती हैं, दिन रात तुम्हारे साथ जगती हैं, मरीज के लिए नर्स एक माँ की तरह ख्याल रखती हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत खूबसूरत मेल और बहुत खूबसूरत लाइनें, एकदम सटीक।

0: आई लग गई यार, घुटना गया लगता है।
1: भाई अब मैच का क्या होगा?
0: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
2: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं।
3: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
2: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
3: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-444-444।
4: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
5: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
6: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
7: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
8: बस खुशबू नहीं, स्वाद भी है, शुद्धता का एहसास भी है।
9: MK बंधानी हींग, हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.

0: गए आप?
1: जी आ गया.
0: चंद दिन मुबारक हो आपको.
1: ओह हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच.
0: बस इतनी खुशी होती है जब कोई हमें हमारे स्पेशल दिन पर विश कर देता है. तो आप सभी को जिनका आज है हैप्पी वाला बर्थडे, उनको आपके जन्म दिवस की ढेरों शुभकामनाएं.
2: बिल्कुल एकदम भर भर के जन्मदिन की मुबारकबाद. और निधि ये वाला है ना कि मतलब जब आप बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते तो गुब्बारे वुब्बारे भाई साहब बिल्कुल एकदम चमकीले चटक पीले सब चीजें लगा कर रखे जाते. एक समय पहले जब क्या होता था ना, गुब्बारे सिर्फ एक साइज के आते थे, एक कलर छोटे छोटे आते थे. अभी क्या है भाई साहब, उसमें भी कलर आ गए, मतलब गोल्डन कलर, पर्पल कलर, व्हाइट कलर. तो ऐसा होता है ना कि भाई साहब गुब्बारे अच्छे लग रहे हैं लेकिन उसमें भी लोग फोड़े जाते हैं. तो वो गुब्बारा जिसमें ढेर सारी चॉकलेट्स भरी रहती हैं,
0: सेंटर वाला,
2: हाँ वो मेन रहता है बच्चों का कि ये कब फूटे और टॉफी जो है बिखरी बिखरी मिले
0: और कब लूट हो उस टॉफी की जो उस गुब्बारे के अंदर भरी होती है. यही एक्साइटमेंट होती है और यही खासियत होती है. और ये जो खुशियां है ना वो कहीं गुम सी होती चली जा रही है. तो अगर आज आपको ये मौका मिले कि आपके आसपास आपके जानने में किसी का बर्थडे, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट जरूर ट्राई करेगा. यकीन मानिए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर आएगी.
2: बिल्कुल. और अगर आपकी एनिवर्सरी है तो उसकी भी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको.
0: और फिलहाल आप अपना स्पेशल दिन किसके साथ मनाते हैं? आज ही के दिन भारत के एकदम डैशिंग मॉडल रचिता कुमार का भी आज बर्थडे है. इसके अलावा
2: 1945 में KG बालकृष्णन जो एक भारतीय वकील थे उनका भी आज

0: जन्मदिन है।
1: अंजलि गुप्ता जो कि एक फ्लाइंग ऑफिसर हैं भारत की, उनका भी आज ही के दिन हैप्पी बर्थडे डे होता है। 1970 में उनका जन्म हुआ था।
0: 1987 में अमृता प्रकाश जो एक भारतीय अभिनेत्री हैं, उनका भी जन्मदिन होता है।
1: तो देखिए दिग्गज पर्सनालिटीज का आज होता है हैप्पी वाला बर्थडे, तो आप भी बड़ा नाम करें, रोशन करें और अपनी फैमिली को खूब सारा प्राउड फील कराएं, ऐसी उम्मीद करते हैं।
0: बिल्कुल, और अब रफ्ता रफ्ता जो है प्रोग्राम अपने अंतिम समय पर, लेकिन हम जाने से पहले आपको ट्रैफिक अपडेट देने की जरूर कोशिश करेंगे।

0: जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको ट्रैफिक अपडेट भी देने वाले हैं, तो हमारे साथ ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर विकास जी जुड़ चुके हैं और बताने वाले हैं शहर में आज ट्रैफिक का हाल क्या रहेगा। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के प्रोग्राम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम। गुड मॉर्निंग लखनऊ, सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैम, आज लखनऊ शहर में वर्तमान में यातायात सामान्य गति से गतिमान है, कहीं भी अतिरिक्त यातायात दबाव नहीं है। पीक आवर्स का समय चल रहा है, ऐसे में थोड़ा सा ट्रैफिक लोड हमारा जो मुख्य प्रेशर पॉइंट होता है, जो लखनऊ के जो प्रमुख मार्ग है उसमें से लखनऊ अयोध्या मार्ग पर हमारा चिंगहट से कमता की तरफ थोड़ा सा प्रेशर रहता है, और रायबरेली मार्ग पर तेलीबाग से उतरखिया की तरफ। तो ये जो प्रमुख स्थान है, यहाँ पर यातायात पुलिस और नागरिक पुलिस मौजूद रहकर सिविल लगातार हम सुगम यातायात संचालन करा रहे हैं। आज जो की बड़ा मंगल है और बड़ा मंगल के दिन लखनऊ शहर में 5 ऐसे प्रमुख मंदिर हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं का आवागमन होता है मैम। तो इस दौरान जैसे कि हमारा हनुमान सेतु है, तो हनुमान सेतु पर हम IT चौराहा से लेकर के हनुमान सेतु चौराहा तक जो कमर्शियल वाहन है इनको प्रतिबंधित किया गया, तथा छोटे व्हीकल जो है वो भी थोड़ा सा इनको हम प्रतिबंधित करते हैं जब यहाँ पर ज्यादा आवागमन रहता है श्रद्धालुओं का, उस दौरान होता है। और यहाँ पर हमने जो पार्किंग व्यवस्था कर रखी है मैम, वो हमारा लखनऊ विश्वविद्यालय कालविन तालुकेदार का जो है पार्किंग स्थल, साथ ही जो हमारा झूलेलाल मैदान है वहाँ पर हमने पार्किंग व्यवस्था की है, और यहाँ पर जो हनुमान सेतु के पीछे पार्किंग ग्राउंड है, वो बड़ा पार्किंग ग्राउंड है, वहाँ पर भी हमने पार्किंग व्यवस्था कर रखी है। वैसे ही हनुमंत धाम में भी श्रद्धालुओं का अधिक आवागमन होता है, इस दौरान जो पार्किंग व्यवस्था है हमारा वो हमारा लक्ष्मण मेला मैदान पार्किंग व्यवस्था रहती है, वहाँ पर आप अपने वाहनों को वहाँ पर पार करके तब फिर दर्शन पूजन के लिए जा सकते हैं। आज के दिन मैम जो प्रमुख मंदिर अगर अलीगंज की बात करें तो पुराना हनुमान जी का मंदिर तथा पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर अलीगंज में, यहाँ पर श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है, और हजरतगंज में दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है। तो ऐसे में यदि अति

0: हिचक ना हो, तो इन मार्गों पर यदि आप सफर करना चाह रहे हैं तो यहाँ अवॉइड करें, वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। और यदि आप दर्शन पूजन के लिए जा रहे हैं तो कृपया अपने वाहनों को पार्किंग स्थल पे ही पार्क करें ताकि किसी को असुविधा का सामना न करना पड़े। जगह जगह आज भंडारे लगे रहेंगे, तो भंडारे के दौरान हमारा आयोजकों से ये अनुरोध है, कृपया आप रोड साइड को थोड़ा सा छोड़ करके भंडारे का आयोजन कराए तथा साथ ही ट्रैफिक वॉलंटियर के रूप में ट्रैफिक मार्शल अपने नियुक्त करें ताकि जो है लोगों को आवागमन में असुविधा का सामना न करना पड़े। कहीं यदि ट्रैफिक में आपको बाधा उत्पन्न होती है, कहीं हेल्प की जरूरत है, तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 94 44 51 55 पर आप संपर्क कर हमसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
1: बहुत शुक्रिया विकास जी, आपने इतनी आसान से और सारे डाइवर्जन्स हम तक बता दिए हैं, साथ ही साथ हेल्पलाइन नंबर भी शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपके माध्यम से। यही अनुरोध है कि यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें और इंडिया के साथ सुनते रहें 100.7 एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की।
2: क्या
1: धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर विकास जी, जो लगातार आपको डेली ट्रैफिक

0: विकास जी, आपने इतनी आसान से और सारे डाइवर्जन्स हम तक बता दिए हैं, साथ ही साथ हेल्पलाइन नंबर भी शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपके माध्यम से यही अनुरोध है कि यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें और इंडिया के साथ बनते रहे। 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: क्या
0: धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर विकास जी, जो लगातार आपको डेली ट्रैफिक अपडेट देते रहते हैं। फिलहाल 9:54 हो चुका है।
2: जी हाँ, और जल्दी से आपके लिखे ईमेल हम पढ़ दे। तो पवन पाल ने लिखा है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ रेडियो लिसनर, आई एम पवन पाल फ्रॉम बाजार शुक्ल अमेठी यूपी 36 से। मुद्दे से जुड़ा इन्होंने कुछ भी नहीं लिख के भेजा है।
0: आर्यन वर्मा जी, आपने बहुत सारी मेल लिखी और सॉन्ग रिक्वेस्ट कर दिया, लेकिन आपने मुद्दे से जुड़ा कुछ भी नहीं कहा। वहीं एमके राज मुनेश कुमार राज जी, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की सभी नर्सों को हार्दिक शुभकामनाएं। शिवम सर और निधि सर को मुनेश कुमार राज की तरफ से सुप्रभात। अपना दर्द भूल कर दूसरे के दर्द में सहायक, भूख प्यास छोड़कर सेवा पर रहते हैं तत्पर। जी हाँ, ये नर्स जितने भी नर्स फटर्निटी से जुड़े लोग हैं, नर्सिंग फटर्निटी से जुड़े, उनके लिए ये लाइंस थी।
2: क्या बात है। घनश्याम जी ने लिखा है, अपनी एक छोटी सी स्टोरी उन्होंने शेयर की है। इनका एड्रेस है नारायण नगर ए फैजाबाद रोड लखनऊ। ये एक बार बहुत बीमार पड़ गए थे, तो 15 दिनों तक ये सरकारी अस्पताल में थे। तो वहां जब ये एडमिट हुए तो माधुरी नाम की एक नर्स थी जिन्होंने इनकी बहुत सेवा की। तो वो आज इनको थैंक यू बोलना चाहते हैं कि उनके लिए मैं ये मैसेज कर रहा हूँ, उनको बहुत बहुत शुक्रिया जहाँ कहीं भी हूँ।
0: तो अब इसी के साथ साथ हम भी थैंक यू सो मच कहना चाहेंगे। आपकी वजह से ही हम लोग इतने अच्छे से हॉस्पिटल में रह पाते हैं। वो जो वक्त हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, उसे आसानी से और आराम से तसल्ली के साथ निकाल पाते हैं, पूरी हिम्मत के साथ निकाल पाते हैं। तो थैंक यू सो मच हमेशा हमारी सेवा करने के लिए और इस ड्यूटी पर पूरी ईमानदारी के साथ तत्पर रहने के लिए।
2: बिल्कुल। और अब 9:55 हो गया है। निधि जी, आप कुछ कहना चाहेंगी?
0: जी देखिए शिवम, कितने ज्यादा एक्साइटेड है मुझे यहाँ से टाटा बाय बाय करने के लिए, लेकिन इनको ये नहीं पता मैं यहाँ से निकलकर जिसकी बातें सुबह से कर रहे हैं वो करने वाली हूँ, भंडारा खाने वाली हूँ।
2: जी हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है। हाँ, जाइएगा तो मुझे बताते हो जाएगा कहाँ पे कैसे कैसे, कौन सा रास्ता है, कहाँ कम भीड़ और कहाँ पे अच्छी अच्छी चीजें मिल रही है।
0: एक्साइटमेंट, हाँ, क्रिएटिव स्किल्स तो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। आइसक्रीम, छोला भटूरा, पूड़ी, राजमा चावल, मतलब क्या क्या भंडारे में मिल सकता है। तो मैं अभी चली भंडारा एंजॉय करूंगी डेफिनेटली, लेकिन हाँ, जिस तरह मैं पूरी सेफ्टी के साथ नियम के साथ जाऊंगी उसी तरह आपसे भी उम्मीद करूंगी कि आप भी जब रोड पे होंगे तो रोड के नियम का पालन जरूर करेंगे।
2: तो फिर गाना सुनते हैं।
0: हाँ।
2: और आप जाइएगा तो बताइएगा जरूर, मैं ताकि दोस्तों को बता सकूं।
0: बिल्कुल बताऊंगी, बिल्कुल। तो फिलहाल आखिरी ट्रैक आपके रेडियो सेट पे गुड मॉर्निंग लखनऊ का आज बस यहीं तक।
2: जी हाँ।

नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। आप सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 20 मई तक यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 5 देश की यात्रा पर रहेंगे। पहले चरण में वह शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स जाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 19 मई को इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। वे इटली के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दोहरीघाट औड़िहार यात्री पैसेंजर ट्रेन को रवाना किया। इससे मऊ और गाजीपुर जिले के यात्रियों को किफायती और सुरक्षित रेल सेवा उपलब्ध होगी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस रेल सेवा का विस्तार जल्द ही वाराणसी तक किया जाएगा। रेल मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कई प्रमुख रेल अवसंरचना परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि एक प्रमुख 4 लेन का गलियारा गंगा के दक्षिण में प्रयागराज, कानपुर, आगरा, दिल्ली मार्ग के साथ विकसित किया जा गया है। उन्होंने कहा कि 4 लेन के रेलवे कॉरिडोर को विकास गंगा के उत्तर में किया जा रहा है। यह गलियारा गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, सीतापुर, गोंडा और गोरखपुर होते हुए दिल्ली से जुड़ेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 157 अमृत भारत स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। रेल मंत्री ने बताया कि लगभग 58 नई रेल सेवाओं की शुरुआत कोविड के बाद उत्तर प्रदेश में हुई है। असम में आज हेमंत बिस्व शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसी के साथ ही श्री शर्मा लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। चंदौली में 24 घंटे के भीतर 2 अलग-अलग ट्रेनों में 2 व्यक्ति और अस्पताल में भर्ती 1 महिला सहित 3 की हत्या करने वाला साइको किलर बीती रात पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। सीन क्रिएशन के दौरान वह एक पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागा और पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस की जवाबी फायरिंग में वह ढेर हो गया। पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने बताया कि पूछताछ में साइको किलर ने अपने को पूर्व सैनिक होने और अमृतसर पंजाब का निवासी होने की बात बताई थी। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले कल रात धर्मशाला में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन सुबह 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान, चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
3: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
4: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
6: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
5: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
7: तो 10:05 हो गया है और जिसका था इंतजार, यानी कि जिस प्रोग्राम का आप कर रहे हैं इंतजार, उसको लेकर मैं आ गया हूं। मेरा नाम है शिवम और ये प्रोग्राम कौन सा है? जी हाँ, ये प्रोग्राम है सुपर हिट सॉन्ग, जिसमें बजेंगे धमाकेदार सॉन्ग और एकदम फुल एनर्जी से भरे हुए। तो पहला गाना, उसके बाद दूसरा गाना, उसके बाद तीसरा गाना, बहुत सारे गाने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो आपको करना है सिर्फ इतना, वॉल्यूम थोड़ा सा आप कर लीजिए, क्योंकि अब हम मचाने वाले हैं बिल्कुल धमाका।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: वाह, कितनी लाजवाब डिशेस बनाती हो, इतनी रेसिपीज कहाँ से लाती हो?
1: शत्रुपा से। अरे बहू, मेरा जोड़ों का दर्द तो बिल्कुल चला गया, कहाँ से लाई है नुस्खा?
2: शत्रुपा से माँ जी।
3: वाह, तेरा घर तो एकदम पिक्चर परफेक्ट है, कहाँ से लाती हो इतने नए नए आइडियाज?
2: शत्रुपा से।
4: घर, बच्चे, शॉपिंग, किचन, गार्डन, वार्डरोब, कैसे मैनेज कर लेती हो इतना सब?
2: शत्रुपा से।
5: हमारी होम मेकर्स की कंप्लीट मैगजीन शत्रुपा, मंडे टू थर्सडे दोपहर 12 बजे, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।

नमस्कार, सुबह के 11 बज रहे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। कल शाम गुजरात के बड़ोदरा में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने और घर से काम करने, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस समय लोगों को एकजुट होने और देश के संसाधनों पर बोझ कम करने का दायित्व निभाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की बचत के लिए सार्वजनिक परिवहन, इलेक्ट्रिक बसें और कार पूलिंग अपनाने को कहा है। उन्होंने स्थिति सामान्य होने तक सोना न खरीदने की अपील भी दोहराई है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। इसके क्रियान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी के 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। राजस्व परिषद के अधीन लेखपाल रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 21 मई को राज्य के 44 जिलों में मुख्य परीक्षा आयोजित कर रहा है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक की तरफ से कल जारी सूचना के अनुसार परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को आवंटित जिले की अग्रिम सूचना आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। बिजनौर में जनगणना के प्रथम चरण के तहत संचालित स्वगणना अभियान ने जोर पकड़ लिया है। इसी क्रम में सोमवार को जिला न्यायालय परिसर में जिला जज समेत तमाम न्यायिक अधिकारियों ने अपने स्वगणना की प्रक्रिया पूरी की। दूसरी ओर विकास भवन में आयोजित एक समीक्षा बैठक में सीडीओ रणविजय सिंह ने अभियान की प्रगति का जायजा लिया है। एडीएम प्रशासन मान्या सिंह ने बताया कि जिले में अब तक 6,754 व्यक्ति पोर्टल पर अपना डाटा अपलोड कर चुके हैं। अयोध्या में 2 दिवसीय श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे समिति के अध्यक्ष नीपेंद्र मिश्र ने बताया कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर स्थित हनुमान जी की गैलरी के सभी कार्य 30 मई तक पूरे कर लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में स्थित अत्याधुनिक संरक्षण प्रयोगशाला में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के 2 विशेषज्ञ अगले 3 वर्षों तक स्थानीय कर्मचारियों के संरक्षण तकनीकी का प्रशिक्षण देंगे। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान यहाँ हर

0: गाना, एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें। चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब यारी।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
3: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।

जी हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। 11:05 हो रहा है और अब बारी है उस प्रोग्राम के जिसमें आप लगाते हैं हमें कॉल और करते हैं ईमेल, जहां ढेर सारी बातें ढेर सारे विचार साझा करते हैं हमसे। और अगर आप नए नए श्रोता हैं तो आप फोन नंबर नोट कर लीजिए। जी हाँ, हमारे लखनऊ का कोड जो है 0522 है और फोन नंबर है 2238852। दूसरा फोन नंबर भी नोट कर लीजिए, 2238852 ये पहला है, और 2982377 इस पे भी आप फोन कर सकते हैं। और अगर ये दोनों ना लगे, बिजी हो, तो आप ईमेल करिए fmakashwadilakhnau@gmail.com पर। ये पहला गाना तो सुनिए, उसके बाद लौट के आते हैं कॉलर के साथ।

0: और यह हमारे प्रोग्राम का नाम है संदेश आपके गीत हमारे, जिसमें आप हमें देते हैं संदेश और हम आपको देते हैं ढेर सारे म्यूजिक का गुलदस्ता। तो आइए आज की पहली कॉलर कौन है उनसे भी जुड़ जाते हैं। हेलो, और वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप, क्या नाम है आपके?
1: बहुत अच्छे हैं, सीतापुर पचैनापुर मस्जिद के पास से शमा परवीन अंसारी बात कर रहे हैं। सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम, मेरा प्यार भरा नमस्कार, और सभी सुनने वालों को बड़े मंगल की हार्दिक शुभकामनाएं सर, आपको भी।
0: ओहो, आपको भी बहुत बहुत मंगल कामना और बड़े मंगल की बहुत सारी शुभकामनाएं। जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको तो हम सुबह से शुभकामनाएं दे रहे हैं।

0: और ये भी बता रहे हैं भाई साहब यहाँ पूड़ी बट रही, यहाँ हलवा बट रहा है, यहाँ आइसक्रीम बट रही है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, जगह जगह पे भंडारा चल रहा है।
0: तो बताइए जल्दी से कि आज अपने माध्यम से कौन सा संदेश हमारे श्रोताओं को दे रही हैं?
1: आज संदेश हम ये देना चाहते हैं कि जगह जगह पे भंडारा चल रहा है और हेलो।
0: हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी।
1: हेलो
0: हेलो जी, बोलिए, आवाज आपकी आ रही है।
1: अब आ रही है आपकी आवाज सर, नहीं आ रही थी।
0: कि
1: जगह जगह पे भंडारा चल रहा है, उतना ही लें जितना खा सके, खराब ना करें, और बच्चों और बच्चों का बुजुर्गों का ख्याल रखें, धक्का मुक्की ना दें, सबको मिलेगा। ये बजरंग बली का भंडारा है
0: जी।
1: ऐसा नहीं कोई रह नहीं जाएगा, सबको मिलेगा
0: जी। ये तो बात बिल्कुल सही है
1: जी।
0: और कुछ कहना चाहेंगी?
1: और भाई बहन के नाम लेना चाहेंगे?
0: जल्दी से ले लीजिए।
1: साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, रिंकी पिंकी, गुलाब साप्पी, वकील अहमद भाई, मोहम्मद आसिफ भाई, बाबू अंसारी भाई, मोहम्मद फैज भाई और जावेद अख्तर भाई, आप सभी को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम, प्यार भरा गुड मॉर्निंग।
0: चलिए बहुत बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें फोन किया और अपने संदेश हमारे श्रोताओं तक आपने पहुंचाया। तो दोस्तों आप भी हमें फोन कर सकते हैं, आपको एक जो नंबर है वो हम फिर से दोबारा दे दें कि 0522 2238 852, और दूसरा फोन नंबर है 2982 377 पे आप फोन कर सकते हैं और अपने संदेश श्रोताओं तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल ये गाना सुनाना आपको जरूरी है, मौसम ने बदला है अपना मिजाज। जरा फिल्म का नाम बताइए तो, कौन सी फिल्म का है ये?

दोस्तों 11:14 हो गया है और अब जानते हैं हमारे साथ कौन है लाइन पे जुड़ा हुआ। हेलो हेलो। तो भाई टेक्निकल इशू की वजह से फोन इनका कट गया है, लेकिन हम इंतजार नहीं करेंगे किसी और को, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पे बना हुआ।

0: हेलो।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग सर
0: वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका?
1: जी, गुलाब्सा सिद्दीकी
0: गुलाब्सा जी, कैसी हैं आप और कहाँ से बात कर रही हैं, बता दीजिए।
1: जी। हम संडीला से बोले, लेकिन सर ऑन ईयर आवाज धीमी आ रही है। हम
0: ओके, आप थोड़ा सा तेज बोलिए, हमारे यहाँ तो बिल्कुल फुल
1: तो
0: है।
1: तेज ही बोल रहे हैं सर।
0: और थोड़ा चिल्ला के बोलिए।
1: जी सर,
0: अच्छा ये बताइए, आज संदेश क्या देना चाहेंगे हमारे सुनने
1: संदेश
0: वालों को?
1: सबसे पहले बड़े मंगल की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा संदेश इसी पे है सर, जो लोग भंडारा कराते हैं प्लीज वो धर्म देख कर ना बांटे।
0: बिल्कुल सही।
1: जी सर, पार्सल हमने देखा था, कुछ लोग बिस्किट बांट रहे थे, तो हम लोग खड़े थे, तो बच्चे साथ में होते हैं तो बच्चे नहीं मानते।
0: बिल्कुल।
1: बच्चे कहने लगे अम्मी हम भी लेंगे जाके, तो बच्चे चले गए। लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि हम लोगों को देख कर नकाम में ना, तो पहचान गए वो मुसलमान है। तो एक बच्चे को दे दिया, कहने लगे यहाँ से जाइए, आपके लिए नहीं है। तो
0: नहीं तो ये बात
1: ऐसा
0: बिल्कुल
1: नहीं,
0: सही आप कह रही हैं कि अगर ऐसा कुछ भी हो, देखिए बड़ा मंगल जो होता है वो सभी धर्मों के लिए होता
1: सबके
0: है,
1: लिए
0: सेवा
1: होता
0: भाव के
1: है।
0: लिए होता है। बिल्कुल सही।
1: जी जी सर,
0: तो
1: तो जो लोग
0: जी
1: ऐसा करते हैं वो लोग प्लीज ऐसा ना करें। भंडारे का
0: बिल्कुल
1: मतलब सीखिए पहले, भंडारे में खिलाना ही नहीं काम है।
0: बिल्कुल सही कहा, लेकिन इस बात का भी बिल्कुल सभी लोग ध्यान रखें कि बड़ा मंगल सभी के लिए होता है, तो प्लीज ऐसा कोई भी भेदभाव ना करें। ये भाईचारे का त्योहार है।
1: जी
0: और
1: सर,
0: जी
1: नाम लेना चाहेंगे कुछ? जी,
0: बिल्कुल ले लीजिए।
1: समा परवीन है, साहिबा अंसारी है, सादिया अंसारी है, निशा अंसारी है, महक अंसारी है, अमंता गौतम है संडीला से, और जितने लोग सुन रहे हैं सबको शुभकामनाएं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए और इतना प्यारा संदेश हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए।
1: जी सर, सर हमें बहुत खराब लगा था उस टाइम।
0: नहीं ये वाकई है भी, अगर ऐसा कुछ भी होगा तो वाकई में ये, अगर जो लोग भी सुन रहे होंगे इस बात पे जरूर सुधार करेंगे। और आपका संदेश बहुत ही काबिले तारीफ है कि आपने ये बातें और भी श्रोताओं तक पहुंचाई हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका फोन करने के लिए हमें। 11:17 हो गए दोस्तों, आप भी जल्दी जल्दी फोन घुमाइए और अपने संदेश दूसरों तक भी पहुंचाइए।

0: भाई साहब दिल दीवाना आपका खोए चाहे ना खोए, लेकिन हमारे द्वारा बजाए हुए गाने अगर दिल के आर पार ना हुए तो फिर बात ही क्या है। मतलब ऐसे ऐसे गाने बिल्कुल एकदम निकाल के लेके आए हैं आज, एकदम के मजा ही आ जाए। और वैसे ही हमारे लिसनर है, वैसे ही हमारे संदेश देने वाले हैं, बड़े प्यारे प्यारे संदेश। तो आइए सुनते हैं कौन है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका?
1: लखीमपुर
0: जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या करती हैं आप ये बताइए?
1: ऐसे तो लेस बना रहे थे, आपका प्रोग्राम सुन रहे थे, फोन ट्राई कर रहे थे।
0: अच्छा, क्या बना रही थी?

0: ये क्या होता है?
1: जी ये जो कपड़े में लगाई जाती है, जो लाचे में लगाई जाती है लेस।
0: ओह, वो जो किनारे किनारे लगाए जाते हैं
1: जी,
0: डिजाइनिंग वाली। अरे वाह, बड़ी अच्छी बात है। मतलब आर्टिस्ट हैं, अभी कलाकार हैं।
1: और हमने सोचा कि फोन लगा के देखें लगेगा या नहीं लगेगा।
0: लेकिन अच्छा है, अच्छा है, बड़ा अच्छा है। तो अब हमें ये बताइए कि कलाकारी तो बड़ी अच्छी, मतलब आपने बात बताई, आज क्या कहना चाहेंगी हमारे सुनने वालों को, क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: पहले तो आपसे कहना चाहता कि आप जो बजा रहे हैं गाने, आपके गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं और आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लग रहा है।
0: ओ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
1: सुबह से सुन रहे हैं।
0: बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। तो बताइए क्या कहेंगी आज?
1: संदेश हम ये देना चाहते हैं, जैसे कि आप गर्मी पड़ रही है, लस्सी पिए, छाछ वगैरह पिए और नारियल का पानी पिए। इसके से नारियल का पानी पीते हैं कुछ लोग, उसके बाद उसको रोड के ऊपर डाल देते हैं, बीचों बीच रोड पर डाल देते हैं, या लस्सी वगैरह पीते हैं तो उसे भी रोड पर डाल देते हैं, तो इससे एक्सीडेंट होने का भी खतरा रहता है। और सर दूसरा संदेश हमारा ये है कि चाइनीज मंझे का प्रयोग ना करें
0: जी,
1: इससे गर्दन भी कटने का डर रहता है। और गमछे का प्रयोग करें साथ में सर,
0: बिल्कुल
1: भी लगाएं सर।
0: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और मुझे लग रहा है कि आज के समय में सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अगर आप एक नागरिक हैं तो ये चाइनीज मांझा तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, इससे जीव जंतु इंसान सबको ही खतरा है इसे, है ना?
1: अपने भाई बहनों का नाम भी लेना चाहते हैं।
0: बिल्कुल ले लीजिए।
1: मोहम्मद आसिफ अंसारी भाई हैं, फैज अंसारी भाई हैं, वकील अहमद मंसूरी भाई हैं, बाबू अंसारी भाई हैं, जावेद अख्तर भाई हैं, तालिब अंसारी भाई हैं, गुलशन सिद्दीकी अप्पी हैं, समा परवीन अंसारी अप्पी हैं, निशा अंसारी हैं, साजिया अंसारी हैं, रिंकी पिंकी हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इन सब की तरफ से।
1: और हमारे घर में सब लोग आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं सुबह से।
0: अरे बहुत शुक्रिया बोलेगा,
1: अपना काम करें और रेडियो से बज रहा है।
0: तो आपके सारे घर वालों को लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही धन्यवाद, बड़ा वाला धन्यवाद, और खूब ढेर सारी चॉकलेट
1: जी सर।
0: बहुत शुक्रिया।

0: जी हाँ, 11:31 हो गया है और हमारे कॉलर भी हमसे जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं उनका नाम और क्या है पहचान। हेलो
1: हेलो
0: हेलो हेलो हेलो। तो देखिए, फिर से किसी टेक्निकल इश्यूज के कारण इनका फोन कटा है। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो। जी मेरी आवाज आ रही है?
1: हेलो
0: हेलो।
1: हाँ हेलो।
0: हाँ, नाम बताइए अपना।
1: मेरा नाम पीयूष है, मैं सीधा से बोल रहा हूँ।
0: पीयूष जी, कैसे हैं आप और क्या करते हैं ये बताइए पहले।
1: मैं ठीक हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ।
0: ओके, तो आज क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को?
1: मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, लोग कार से चले, बाइक से चले, रोड पर नहीं थूकें और 3 से 4 लीटर पानी पिएं।
0: जी बिल्कुल। तो ये आप काम करते हैं, आप पानी पीते हैं टाइम टू टाइम?
1: हाँ।
0: और घर वालों को, मम्मी पापा को, घर वालों को?
1: हाँ, पापा भी पीते हैं 3 से 4 लीटर दिन भर।
0: बिल्कुल। और हाइड्रेटेड रहिए, है ना, पानी पीते रहिए और धूप से बच के रहिए। बहुत अच्छी बात है, आपका संदेश हमारे लोगों तक पहुंचा और उन सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें ऐसे ही फोन करते रहिए, ईमेल भी कर सकते हैं, fmakashwadi@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। और अब बारी है ईमेल पढ़ने की। एमके राज, पिंकू सोनी, टाइगर खान, तालिब अंसारी, रोशनी रावत, जावेद अख्तर साहब, मनोज बंसल, पिंकू सोनी और विकास वकील अहमद, बिट्टू भाटिया जी ने सबने हमें ईमेल किया है, लेकिन इनका ईमेल पढ़ेंगे। एक बेहतरीन सा गाना सुन लिया जाए उसके बाद।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हिंग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हिंग।
3: और 11:40 हो गया है और इसी के साथ हमारे साथ बात करने के लिए भी लोग जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं उनका नाम। हेलो
4: हेलो
3: हेलो जी नमस्कार, क्या नाम है आपका?
4: जी नमस्ते सर, मेरा नाम है मोहम्मद फैज। सर आप कैसे
3: हूँ? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं?
4: जी सर मैं बढ़िया हूँ, मैं बोल रहा हूँ रामपुर कटरा
3: जी
4: बारामती से।
3: रामपुर कटरा?
4: हाँ जी जी।
3: अच्छा क्या करते हैं आप मोहम्मद फैज जी?
4: जी सर मेरी सब्जी और फल की दुकान है, उसी बैठे आपका प्रोग्राम रेगुलर सुना करते हैं।
3: अरे वाह वेरी गुड वेरी गुड, तो मतलब आप जो है प्रचार करते हैं हमारे चैनल का, है ना?
4: जी बिल्कुल, जो सब्जी लेने आता तो वो सुनता तो कहता है क्या चैनल है, कितना अच्छी जगह आ रहे
3: हैं। वाह क्या बात है, तो ये तो बड़ा अच्छा सा प्यारा सा संदेश हो गया। अब दूसरा संदेश बताइए।
4: जी सर मेरा आज का संदेश रहेगा सर
3: जी,
4: जैसे आज तक जैसे सर गर्मी बहुत पड़ रही है, मतलब मौसम साफ हो गया ना तो धूप ज्यादा हो रही है, जैसे पहले मतलब पानी आंधी भी क्या थी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मौसम बहुत साफ हो गया है तो तगड़ी निकल रही है, तो जैसे छोटे बच्चे को जैसे घर के बाहर निकालते हैं तो घर के बाहर बच्चों को न जाने दे ताकि गाड़ी वगैरह निकलती रहती है, तो इससे दुर्घटना का शिकार भी हो सकते हैं। और जैसे बड़े लोगों का मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मतलब जो बड़े लोग जैसे काम हो तभी निकले या तो ना निकले सर, घर ही मेरे ज्यादा ठीक रहेगा सर।
3: बिल्कुल सही, लेकिन छोटे बच्चे हैं तो वो कंट्रोल होते नहीं है, उनको तो सब बस घर के बाहर ही अच्छा लगता है ना, उनका ख्याल ज्यादा जरूरी है।
4: जी हम भी छोटे थे तो हम भी बहुत रात के हर से बाहर निकलते थे, हमें अम्मी पापा बकते थे कि भैया बाहर मत जाया करो।
3: ये बात तो बिल्कुल सही है।
4: अब हम समझदार हो गए, लेकिन हम थोड़ा मतलब दूसरों को समझाते भी हैं कि हम अपने मोहल्ले में सबको समझाते हैं भैया कि छोटे बच्चे जितनी जिद करें लेकिन ज्यादा मतलब ना जाने दे बाहर।
3: बिल्कुल सही कहा। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मोहम्मद फैज बात करके।
4: हेलो सर
3: जी,
4: एक मेरा दोस्त है, कहा तो नाम ले जाकर इजाजत हो उसको।
3: जी बिल्कुल इजाजत है
4: जी, बाबू अंसारी भाई है बस।
3: बाबू अंसारी जी और आपके जितने भी दोस्त हैं और सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

0: ग्यारह बजकर 47 मिनट हो गए हैं और हमारे साथ कौन जुड़ा हुआ है? हेलो
1: नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
0: वेरी गुड मॉर्निंग। ये कौन है खिलखिलाती हुई?
1: जी सर, एफएम रेनबो पे हर वक्त धड़कने वाली आपकी जानी पहचानी श्रोता पिंकी रिंकी बात कर रही हूँ, दीवानों के शहर जिला रायबरेली।
0: तो इसका मतलब ये बताइए कि आप अगर 24 घंटे धड़कती रहती हैं तो हम क्या फड़कते रहते हैं?
1: तो
0: मतलब धड़कन तो हम ही लोग हैं ना,
1: बातें
0: रहते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। तो ये बताइए कि आज बड़े मंगल के दिन क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
1: सबसे पहले तो सर, हम आपके कार्यक्रम के माध्यम से अपनी दीदी और जीजी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं, क्योंकि आज हमारी दी और जीजी की मैरिज एनिवर्सरी है और 8 साल पूरे हो गए हैं, तो इसके बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। और मैसेज ये देना चाहते हैं कि जो लोग किसी के सोशल मीडिया पे जाके गलत कमेंट करते हैं वो ऐसा कृपया ना करें।
0: बिल्कुल सही कहा। तो ये जो लोग
1: देखा भी और हमारे साथ हुआ भी, कुछ श्रोता है ना जो कहीं से मतलब किसी का नंबर पा जाते हैं तो कॉल करके परेशान भी करते हैं, तो ऐसा भी ना करें।
0: बिल्कुल सही कहा। तो जितने भी लोग इस बात को सुन रहे हैं, इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें कि अगर
1: हम अपने दोस्तों का नाम लेना चाहते हैं।
0: बिल्कुल ले लीजिए
1: जी। मेरी सबसे अच्छी और सबसे प्यारी दोस्त है पूनम दीदी कानपुर से, साहिबा अंसारी और समा परवीन और साजिया अंसारी और बबलू।
0: चलिए, बहुत शुक्रिया इन सब की तरफ से, और आपका भी बहुत

शुक्रिया, आपने इतना अच्छा संदेश दिया, लोगों तक पहुंचाया। नमस्ते। और आप यूं ही हमें फोन करते रहिए, जुड़े रहिए एफएम रेनबो से, 100.7 एफएम रेनबो, जिस पे प्रोग्राम चल रहा है संदेश आपके, गीत हमारे। मेरा नाम शिवम है और अब 11:49 हो गया है और ये गाना आप तक पहुंचने के लिए बिल्कुल बेकरार।

0: जी हाँ दोस्तों, 11:54 हो गया है और महेंद्र दीपेन जी का मेल आया है, मोनू भैया का मेल आया है, नीरज कुमार, रवि कुमार, राहुल, शीलू मौर्या, अजय कुमार, टाइगर खान और दीप माला द्विवेदी, एम के राज, पिंकू सोनी, टाइगर खान, तालिब, रोशनी रावत, जावेद अख्तर साहब, इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारा ईमेल आया, बहुत सारे संदेश भी आए और अब हमारे साथ कौन जुड़ा है लाइन पे ये भी जान लेते हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी, नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: क्या नाम है आपका?
1: डीपी सिंह जौली बोल रहा हूँ।
0: डीपी सिंह जौली जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में और कहाँ से बात कर रहे हैं ये बताइए।
1: ओम नगर आलमबाग से जी।
0: अच्छा जी, ओम नगर आलमबाग से आप बात कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आज हमारे सुनने वालों को?
1: मेरा संदेश ये है
0: जी
1: कि जो बातें हम दूसरों को समझाते हैं अगर वही बातें हमारी जिंदगी में ना दिखें तो शब्द सिर्फ आवाज बनकर रह जाते हैं। असल ज्ञान वही है जो व्यवहार में उतर जाए, क्योंकि ज्ञान

0: बेहतरीन है।
1: शुक्रिया शुक्रिया
0: जी। क्या करते हैं वैसे जॉली जी आप?
1: मैं कंपनी में टीवी इंजीनियर था बरसों
0: जी,
1: तो अब तो थोड़ा सा अकेला हूँ अपने बच्चे के साथ में, तो रिटायर की जिंदगी है समझिए। वैसे काम करता रहता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम जो है।
0: बढ़िया है, अभी भी आप अपने प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, अभी भी आप
1: अपना योगदान देते हैं। टेबल पे बैठा यही टीवी सीवी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम बना रहा था।
0: क्या बात है, तो चलिए ये बड़ी अच्छी बात है कि आप अभी भी जुड़े हुए हैं और इतनी अच्छी बातें आपने लोगों तक पहुंचाई। तो सबके
1: व्यस्त रहना जो है वो थोड़ा सा एक टॉनिक का काम करता है साहब।
0: ये तो बात बिल्कुल सही कहा आपने, तो जरूरी हो जाता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जॉली जी, आप ऐसे हमें फोन करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ईमेल करने के लिए और फोन करने के लिए।
1: शुक्रिया
0: दोस्तों। अभी अब इस प्रोग्राम यानी कि संदेश आपके गीत हमारे से मुझे दीजिए अनुमति, मिलेंगे फिर किसी और दिन किसी और प्रोग्राम में, लेकिन आप शत्रुपा जरूर सुनिएगा। जरीना जी बेहतरीन प्रोग्राम लेके आ गई हैं। 11:56 मिनट, टाटा एंड बाय बाय।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। हमीरपुर महोबा तिंदवारी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी सांसद अजेंद्र सिंह राजपूत द्वारा प्रधानमंत्री पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर में विरोध प्रदर्शन किया और पुतले फूंके। भाजपा मीडिया प्रभारी सत्येंद्र प्रताप सिंह की शिकायत पर सपा सांसद व उनके समर्थकों के खिलाफ महोबा शहर कोतवाली में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष में यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। यह दिन रोगियों की देखभाल, सामुदायिक स्वास्थ्य और आर्थिक विकास में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान को दर्शाता है। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नर्सों को देश के स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ और आशा का स्तंभ बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि नर्सों की निस्वार्थ सेवा और अटूट समर्पण ही स्वस्थ भारत की सच्ची नींव है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र को उन पर गर्व है। प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कल अलीगंज स्थित राजकीय शीतगृह परिसर उद्यान का निरीक्षण किया। राज्य मंत्री ने पार्क में आमजन की सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने पार्क की साफ सफाई, हरियाली, प्रकाश व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने बुजुर्गों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रैक के किनारे किनारे आरामदायक बेंच लगाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पार्क को सुबह 4 बजे से 9 बजे तक और शाम को 5 बजे से रात 9 बजे तक खोला जाए। शामली जिले के जिलाधिकारी आलोक यादव ने सड़क दुर्घटनाएं रोकने के कड़े निर्देश दिए हैं। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में उन्होंने NHAI को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर सुधार करने और क्षतिग्रस्त मार्गों को ठीक करने को कहा है। बैठक में नो हेलमेट नो फ्यूल नियम का कड़ाई से पालन कराने और व्यस्त चौराहों पर ट्रैफिक लाइट लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यमुना नदी के पुल पर जाल लगाने के कार्य में तेजी लाने पर जोर दिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक पीयूष कांत राय ने आज पुलिस लाइन चित्रकूट में साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिसकर्मियों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ, सतर्क और अनुशासित बनाए रखने के उद्देश्य से विभिन्न व्यायाम कराए गए तथा परेड की दौड़ भी आयोजित की गई। उन्होंने परेड में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों को अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: जज्बात वही मगर एहसास है नया।
3: पहचान वही मगर

0: अंदाज है नया,
1: धड़कता है जो हर दिल में,
2: सुबह 6 से रात 12 बजे तक
3: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो,
0: धड़कन लखनऊ की।
4: भाई आपके अपने फेवरेट चैनल यानी धड़कन लखनऊ की पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जरीना जुड़ चुकी है आप सभी के साथ आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम यानी शत्रुपा लेकर के। भाई 12:06 का वक्त हो चला है और लखनऊ की पूरी फिजाओं में एक खूबसूरत सा बिल्कुल माहौल बन चुका है क्योंकि आज है बड़ा मंगल। एक ऐसा प्यारा सा दिन, एक ऐसा प्यारा सा मतलब महीना जो मुझे लगता है पूरे साल हर किसी के इंतजार में होता है। तो आप सभी को आज के दिन की बड़े मंगल की ढेर सारी शुभकामनाएं और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। जब हम बात करते हैं ट्यूसडे की, आज है मंगल, बड़ा मंगल तो है ही है, लेकिन जब हम प्रोग्राम शत्रुपा की बात करते हैं तो ट्यूसडे को हम कुछ खास आपके लिए लेकर आते हैं। जो बात होती है आपके स्टाइल की, आपके लिबास की, आपके कॉन्फिडेंस की और ऐसी ही कुछ बातों के साथ मैं बिल्कुल तैयार हूँ अगले एक घंटे आप सभी को एंटरटेन करने के लिए। तो बस गाने के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। प्यारा सा गाना आप सभी के रेडियो सेट पर फ्रॉम द फिल्म बार बार देखो, आवाज किसकी है, जैस्लीन रॉयल की। एंजॉय करिए इस गाने को और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चले।

भाई आप कहीं भी मत भागिएगा, बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए 100.7 FM रेनबो पर। 12:16 का वक्त, वक्त जितनी तेजी से भागता है ना उतनी तेजी से आई डोंट थिंक कोई और चीज़ है जो हमारी जिंदगी में भागती है। खैर बिल्कुल पकड़ के रखते हैं हम उसको प्रोग्राम, क्योंकि चल रहा है शत्रुपा और आज हम बात कर रहे हैं क्या महिलाओं की पहचान उनके स्टाइल और उनके कपड़ों से ही होती है। मतलब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है इस चीज़ पर। होता क्या है ना कि जब बात करते हैं हम आज की महिला की, तो सिर्फ रिश्ते को ही संभालती नहीं है बल्कि वो अपनी पहचान खुद बनाती है, मुस्कुराती भी है, सपने भी देखती है, स्टाइल भी रखती है और अपनी आज़ादी की अहमियत को भी समझती है। अब समय बदल रहा है तो इस बदलते समय में महिलाओं की सोच जो है, उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका स्टाइल जो है और उनका फैशन, हर कुछ बदल जाता है भाई। और समाज की अगर हम बात करें तो शायद समाज का ढर्रा वहीं पर अटका रहता है। जब महिलाओं की बात होती तो ऑब्वियसली अभी भी देखा जाता है कि बहुत हद तक महिलाओं को उनके कपड़ों से, उनके स्टाइल से ही लोग जज करना शुरू करते हैं। भाई अगर कोई लड़की ट्रेडिशनल कपड़े पहन ले तो लोगों को लगता है कि बहुत संस्कारी होगी, और अगर कोई लड़की मॉडर्न आउटफिट पहन ले तो लोगों को लगता है कि भाई ये तो बड़ी मॉडर्न है, पता नहीं इनका कैसा सोच होंगे, इनकी विचार कैसे होंगे। और बड़ी बात नहीं होती कि लोग कैरेक्टर तक को भी सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन सवाल फिर यही रह जाता है कि क्या किसी महिला की पहचान सिर्फ उसके कपड़ों से तय होनी चाहिए? तो भाई बदलते वक्त के साथ एक चीज़ बहुत क्लियर हो जाती है कि सबको बदलना पड़ेगा, इस सोच को बदलना पड़ेगा। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा नहीं आता है, क्योंकि जो महिलाएं हैं भाई वो दिखती कभी कभार कुछ हैं और होती कुछ और हैं। आप अगर उनको देख रहे हैं कि वो बहुत ट्रेडिशनल है, लेकिन हो सकता है वो माइंड से बहुत एडुकेटेड, बहुत मॉडर्न हो। तो चलिए इसी बात पर बहुत सारी बातें अभी आपसे करेंगे और बहुत सारी बातें आपको बताएंगे भी कि कहाँ समाज में लोगों से चूक हो रही है, कहाँ पर लोगों को लग रहा है कि वो जज तो कर रहे हैं और उनके हिसाब से वो सही कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली होता बहुत कुछ गलत है। चलिए फिलहाल अगला ट्रैक आप सभी के रेडियो सेट पर प्यारा सा क्यूटी पाई आप सभी के लिए आ गया, क्योंकि आज के समय में हर महिला क्यूटी पाई तो है ही है। तो एंजॉय करिए इस गाने को और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की आपकी दोस्त जरीना के साथ।

0: लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो। सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
3: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई, जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदाबहार गीत
1: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

भाई चिन्मय श्रीपदा की आवाज में ये प्यारा सा ट्रैक था आप सभी के रेडियो सेट पर, और इसी के साथ बता देते हैं आप सभी को कि प्रोग्राम चल रहा है शत्रुपुर। और आज इस प्रोग्राम में हम सभी बात कर रहे हैं कि क्या कपड़े और स्टाइल किसी का कैरेक्टर हो सकते हैं। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि भाई फैशन ना कभी भी कैरेक्टर नहीं बनता है किसी का, और ना ही होता है। अगर कोई किसी फैशन में लिप्त है या किसी पर्टिकुलर फैशन को फॉलो करता है, कपड़ों को फॉलो करता है, तो हम उससे कभी भी उस इंसान का कैरेक्टर, उसका जहन, उसकी सोच और उसकी पर्सनालिटी को नहीं जज कर सकते। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि कपड़े हमारा प्रोफेशन ज़रूर दिखा सकते हैं। मतलब जैसे कि आज है इंटरनेशनल नर्स डे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है, और हम सभी देखते हैं कि भाई नर्स जो हैं वो बहुत ही प्यारे से सफ़ेद कपड़ों में होती हैं, और दूर से ही हम उनको पहचान जाते हैं कि हाँ वो पर्टिकुलर प्रोफेशन को फॉलो कर रही हैं। तो ये चीज़ जो है ये थोड़ा अलग हो सकती है कि कपड़े जो है वो आपका प्रोफेशन दिखा देंगे, लेकिन कपड़े जो है वो आपका कैरेक्टर कभी भी नहीं दिखा सकते। और अगर आप किसी को जज कर रहे हैं सो बी वेरी वेरी कॉन्शियस, कहीं आप गलत तो नहीं या गलत साबित तो नहीं हो जाएंगे। भाई फैशन सिर्फ पर्सनैलिटी एक्सप्रेस करता है, और ये महिला अगर कोई साड़ी में भी है तो भी कॉन्फिडेंस हो सकती है, ये मैंने आपको पहले ही बोला है, और जीन्स में है तो भी कॉन्फिडेंट हो सकती है और ग्रेसफुल भी हो सकती है। भाई किसी को सिंपल रहना पसंद होता है तो किसी को ग्लैमरस कैरी करना अच्छा लगता है, तो वो डिपेंड करता है ना कि किस टाइप की महिला, उनको क्या पसंद है। लेकिन सबसे जरूरी बात इन सब में पता क्या हो जाती है, वो ये होती है कि

हर महिला को अपनी पसंद चुनने का अधिकार होता है ना, और वो अधिकार वो यूटिलाइज करें, उसका सदुपयोग करें, ये भी बहुत ज़रूरी है। आज हर महिला मतलब लोग क्या कहेंगे वाली सोच में बिल्कुल भी नहीं जीना चाहती, वे खुद के लिए जीना चाहती हैं। और कभी बहुत बार ऐसा होता ना, जब ज़िंदगी के फैसले लेने हो तो कभी कभार बहुत सारे लोगों से पूछना पड़ता, लेकिन ओवरऑल हर कोई यही चाहता है कि उनकी ज़िंदगी का फैसला जो है वो खुद का हो। क्या पहनेंगे, क्या बनेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे जिएंगे, ये सब हर एक इंसान को खुद ही तय करना चाहिए, और यही असली फ्रीडम भी है ना। फ्रीडम को हम लोग बहुत बहुत गलत तरह से जज कर लेते हैं। मतलब फ्रीडम सिर्फ घर से बाहर निकलने का नाम नहीं होता है, मतलब किसी भी पर्पज़ से अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो सिर्फ यही फ्रीडम नहीं होती है, बल्कि फ्रीडम उस एहसास का नाम भी है जहाँ एक महिला बिना डरे, बिना जजमेंट के, अपनी असली पहचान के साथ जी सके। और भाई ये तभी पॉसिबल है जब घर के लोग, समाज के लोग, आसपास के लोग इस चीज़ को, उस इंसान को करने दें, है ना। और अगर ऐसा करने देते हैं तो आप देखिए इंसान की और उस महिला की उड़ान कहाँ तक होती है, शायद रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए बातें बहुत सारी अभी और भी करेंगे, फिलहाल अगला ट्रैक आप सभी के रेडियो सेट पर। यस, हम तो ऐसे हैं भैया, और हम ऐसे ही रहते हैं और ऐसे ही जियेंगे, है ना।

0: मुफ्त की रबड़ी खाए, देखो अपने रज्जू ताऊ,
1: मक्कल घुमा के मक्खी उड़ाए, रतन और ताऊ दोनों बिकाऊ।
0: छुटकी, भगवान करे वो सुखी रहे और उन दोनों का साया भी हमसे दूर रहे।
1: हर वक्त टोकती रहती है तू मेरी बहनी।

0: स्टे ट्यून्ड 100.7 एफएम रेनबो,
1: धड़कन लखनऊ की।
2: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।
3: माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्तानें।
4: वो भूली दास्तां फिर याद आ गई।
3: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत अफसाने।

0: महकते हुए दिलकश तराने।
1: खोया खोया चांद, खुला आसमान।
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ दोस्तों, फिल्म जब तक है जान का ये प्यारा सा ट्रैक था आप सभी की रेडियो सेट पर, और मुझे लगता है कि अनुष्का शर्मा का ये आखिरी वो वाला ट्रैक था जहां पर हम लोगों ने उनको बहुत ही बिंदास अवतार में देखा था। मतलब हर लड़की जब उनको इस गाने में देखती है ना, ऑब्वियसली बिल्कुल उन जैसा बनना चाहती है, बिल्कुल मस्त मौला, बिल्कुल बेफिक्रे हो जाना, मतलब क्या करना है कैसे करना है ये सब खुद ही डिसाइड करे। भाई ऐसे ही कुछ हम आज भी बातें कर रहे हैं प्रोग्राम शत्रुपा में, जहां आज हम बात कर रहे हैं कि स्टाइल और जो कपड़े हैं आपके वो आपका कैरेक्टर कभी भी डिसाइड नहीं करते हैं, और स्पेशली जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो तब तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। वैसे एक चीज़ बहुत अच्छी, जब हम कपड़ों की बात करते हैं ना तो देखते वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं और लोग कपड़ों को भी बदलते हैं, मतलब जो ट्रेंड है उनको फॉलो करते करते हम लोग उस मुकाम पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर लोग एनवायरमेंट कॉन्शियस हो चुके हैं। मतलब हमारे आसपास के वातावरण को ध्यान में रखते हुए, हमारे नेचर को ध्यान में रखते हुए भी लोग खुद को ड्रेस अप करना शुरू कर चुके हैं, और आई होप कि फ्यूचर में और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स होंगे। भाई हम बात कर रहे हैं उन चीज़ों की जहां पर हम देखते हैं न्यूज़ में आता है कि फलों के छिलकों से कपड़े बनाए जा रहे हैं, जूट का इस्तेमाल हो रहा है। खैर जूट की तो बात ही क्या कहने, मतलब पहले से ही बहुत सारी चीज़ें हैं, बैग्स हम लोग यूज़ करते हैं, ज्वेलरी जो है वो इन सब चीज़ों से बनाई जा रही है, और सेम एज बहुत सारी बार देखा है कि पेड़ों के जो पत्ते हैं उनके रेशों से कपड़े जा रहे हैं। तो इन सब से ये समझ में आता है कि सिर्फ फैशन और ट्रेंड ही नहीं महिलाएं फॉलो कर रही हैं, बल्कि हो क्या रहा है, एनवायरनमेंट, नेचर, इन सबको साथ में लेकर के आगे चलना, आगे बढ़ना, और समाज को, और कहते हैं ना इस दुनिया को, इस प्रकृति को बचाना भी सीख रही हैं। वैसे आज भी अगर हम देखें ना तो हर महिला के अंदर ना एक अलग सी कहानी होती है। कई लड़कियां ऐसी होती है जो अपने सपनों को सिर्फ इसलिए बस रोक देती है ना, क्योंकि उनको ये लगता है कि समाज जो है ना वो क्या कहेगा। मतलब एक टर्म चलता है ना कि इतनी आज़ादी लड़कियों के लिए अच्छी नहीं होती है। सुना होगा आपने भी शायद अपने आस पास, या अपनी ही किसी बहन के लिए या अपनी किसी सहेली के लिए होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि ये एक तमगा लगा दिया जाता है कि इतनी आज़ादी लड़कियों को नहीं देना चाहिए, उनके लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन अब जो है ना फीमेल्स जितनी भी हैं वो ये सब समझ चुकी हैं कि रिस्पेक्ट जो है वो मांगी नहीं जाती है, वो कमाई जाती है, खुद की पहचान, खुद के कॉन्फिडेंस से, खुद के प्रोफेशन से, और अपने आप को प्रूव करके। और बस इसी राह पर आज के समय में हर महिला निकल चुकी है। आई होप कि ये आगे हमेशा इसी तरह बढ़ती जाए और अपने आप को बहुत अच्छे मुकाम पर लेकर जाकर बहुत कुछ जिंदगी में प्रूव करे, तभी तो हम सभी का दिल जो है ना बिल्कुल झूम झूम जाता है। तो बस अगला बिल्कुल गाना ऐसा ही है, आप सभी के रेडियो सेट पर भेजते इस गाने को, गदर 2 फिल्म का ये गाना, बहुत ही प्यारा सा गाना है, एंजॉय करिए इसको, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की आपकी दोस्त जरीना के साथ।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सात रंग का इंद्रधनुष है,
3: सात सुरों की सरगम है,
4: सात जन्म है सात समंदर,
2: साथ हमारा हरदम है,
4: जिंदगी के सतरंगी रंग
3: FM रेनबो के संग।

जी हाँ, गाना तो बहुत खूबसूरत है, ये साथ ही बहुत ही खूबसूरत मैसेज इसमें मतलब छुपा हुआ है। जब शुरुआत हुई थी ना गाने की, तो कहा गया था कि जो दिल से लगे उसके कह दो हाय हाय, मतलब हाय हेलो वाला है, और उसी जगह पर जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय बाय। बिल्कुल यही जिंदगी में अप्लाई करना चाहिए, जहां पर आपको लगे आपका दिमाग का दही हुआ जा रहा है उसको जिंदगी से बिल्कुल निकाल फेंकिए, और तुरंत निकाल फेंकिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी है, आपको जीना है और अपने हिसाब से जीना है। और उतना तो सेंस आई थिंक हर एक महिला में होता है, क्या सही है क्या गलत है, उन चीज़ों को साथ में लेकर चले। भाई आज जिस तरह से हम सभी ने बात की, तो मुझे ये लगता है कि हम सभी को हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि किसी भी महिला की डिग्निटी उसके कपड़ों की लंबाई या चौड़ाई से बिल्कुल भी नहीं होती, उसकी सोच उसकी ऊंचाई से तय होती है। क्योंकि आप सिर्फ खूबसूरत नहीं, आप मजबूत हैं, आप आत्मनिर्भर हैं, आप अपनी

या चौड़ाई से बिल्कुल भी नहीं होती। उसकी सोच उसकी ऊंचाई से तय होती है, क्योंकि आप सिर्फ खूबसूरत नहीं, आप मजबूत हैं, आप आत्मनिर्भर हैं, आप अपनी पहचान खुद बनाने की ताकत रखती हैं। स्टाइल आपकी पसंद है, फ्रीडम आपका अधिकार है और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी सबसे बड़ी पहचान होती है। बस यहाँ पर जरूरत होती है इन चीजों का एहसास करने की और अपनी जिंदगी में ढालने की। तो चलिए इसी बात के साथ अब आपकी दोस्त जरीना को दीजिए आज के प्रोग्राम शत्रुपा से इजाजत। प्रोग्राम का आखिरी ट्रैक आप सभी के रेडियो सेट पर और इसी के साथ लेती हूँ आप सभी से विदा, लेकिन अगला प्रोग्राम जल्दी से वापस लेकर के आती हूँ। मतलब गाना आप इंजॉय करिए, एक लेती हूँ न्यूज ब्रेक, उसके बाद इलाकाई खबरें आएंगी, वो बहुत लंबी नहीं है, थोड़ी सी होंगी 5 मिनट की, उसके बाद जल्दी से मैं प्रोग्राम लेकर वापस आती हूँ। फिलहाल इस गाने को इंजॉय करिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंध किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। डॉ शर्मा के साथ चार विधायक रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी समारोह में उपस्थित थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए हैं। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइव, सहायक नर्स मिडवाइव और महिला स्वास्थ्य आगंतुकों को प्रदान किए गए हैं। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। गृहमंत्री अमित शाह ने महान सिख योद्धा बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के सिरहिंद फतेह दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया, मुगलों को पराजित किया और आत्मसम्मान, साहस और धर्म की रक्षा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अनगिनत अत्याचार सहने के बावजूद उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल की परीक्षा में 95.8% अंक लाकर बिजनौर जिले का मान बढ़ाने वाली मेधावी छात्रा सृष्टि चौहान को उनके उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के सम्मान में एक दिन के लिए बिजनौर का प्रतीकात्मक जिलाधिकारी बनाया गया है। यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में जनपद स्तर पर टॉप करने वाली सृष्टि ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासनिक कार्यप्रणाली को करीब से देखा और जन समस्याओं का निस्तारण की प्रक्रिया को समझा। शासन की इस पहल का मुख्य उद्देश्य मेधावी छात्राओं का मनोबल बढ़ाना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत महिला सशक्तिकरण का संदेश देना है। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत की मोहनी,
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जवां अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7।

0: FM Rainbow.
1: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।

0: ये देखो ताजमहल,
1: लाल पत्थर का ताज।
0: ताज ही है, किसने लाल पोत दिया है?
1: इस इमारत का नाम बताओगे या मैं जाऊं?
2: हुमायूं का मकबरा। इतने पैसे नहीं थे कि तुम्हें आगरे ले जाके ताज दिखाऊं। सॉरी।
1: आज से हुमायूं का मकबरा ही मेरे लिए ताजमहल है। हमारी मोहब्बत जितना खूबसूरत है।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया तनाज़ो को एक दहाई के सबसे बड़े बहरानों में से एक करार देते हुए कौमी ज़राए पर बोझ कम करने के लिए आवाम से एकजुट होने की अपील की है। वज़ीर आज़म ने गुजरात के एक प्रोग्राम में कहा कि हुकूमत ये यकीनी करने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है कि इस हालात का मुल्की आवाम पर कम से कम असर पड़े।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: वजीर आजम ने आवाम से सात निकाती अपील को अपनाने की बात दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें।
0: इसी दौरान मरकजी हुकूमत ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कोई कमी नहीं है। खाम तेल और कुदरती गैस का 60 दिन का और एलपीजी का 45 दिनों का जखीरा मुहैया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में कल नई दिल्ली में हुई काबीना की मीटिंग में ये जानकारी दी गई। हुकूमत ने कहा है कि आवाम को घबराने या ईंधन और दीगर मसनूआत की ज्यादा खरीद करने की जरूरत नहीं है। नीट यूजी 2026 के इम्तिहान को एनटीए ने मंसूख कर दिया है। जल्दी इम्तिहान की दोबारा तारीखों का ऐलान किया जाएगा। दोबारा मुनक़िद होने वाले इस इम्तिहान के लिए उम्मीदवारों से कोई भी अलग से फीस नहीं ली जाएगी। इम्तिहान में खलल के मामलों की अब जांच सीबीआई करेगी, जिसके लिए सभी अहम दस्तावेज एनटीए सीबीआई को सौंपेगी। वाज़ह रहे कि यह इम्तिहान गुज़िश्ता 3 मई को मुनक़िद हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हेमंत विश्व शर्मा ने आज मुसलसल दूसरी मर्तबा असम के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी के खानपारा वाक़े वेटरिनरी कॉलेज ग्राउंड में मुनक़िद एक जलसे में डॉक्टर शर्मा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मेंबर असेंबली रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरे और अजंता नियोग ने भी वुजरा के ओहदे का हलफ लिया। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह समेत कई मरकजी वुजरा और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत वाली रियासतों के वुजराए आला भी इजलास में मौजूद रहे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ कल नई दिल्ली में मुनक़िद CII सालाना बिजनेस समिट 2026 में शामिल हुए। प्रोग्राम को खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में उत्तर प्रदेश में तहफ़्फ़ुज़ का माहौल बना है, पॉलिसी तामीरात में इसलाह हुई है। उन्होंने कहा कि मुजरिमों के तई ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी ने आज रियासत में सरमायाकारी की नई राहें हमवार कर दी हैं। आज उत्तर प्रदेश ने मुल्क में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में मारूफ रियासत के तौर पर पहचान बनाई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट अजेंद्र सिंह लोधी के खिलाफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुबैना तौहीन आमेज और नाजेबा तबसरा करने के इल्जाम में महोबा जिले में भारतीय जनता पार्टी के लीडर सत्येंद्र प्रताप की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस अफसरान के मुताबिक ये तनाज़ो तब शुरू हुआ जब अजेंद्र सिंह लोधी वजीर आजम की उस अपील पर रद्द अमल जाहिर कर रहे थे जिसमें आवाम से सोना न खरीदने की अपील की गई थी। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की जाँच की जा रही है। रेवेन्यू काउंसिल के तहत लेखपाल के खाली ओहदों पर तकरूरी के लिए उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन 21 मई को रियासत के 44 जिला में खसूसी इम्तिहान मुनक़िद करेगा। कमीशन के एग्जाम कंट्रोलर की जानिब से कल जारी जानकारी के मुताबिक इम्तिहान सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। मेन एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अलॉट जिले की आइंदा जानकारी कमीशन की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। और गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत के बेशतर अज़ला में मौसम खुश्क रहा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में रियासत में मशरक़ी और मगरबी हिस्सों में तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश और बिजली गिरने का कयास जाहिर किया। दरियासना आज बिजनौर, अमरोहा और बदायूं में एक बार फिर

0: तेज आंधी के साथ बारिश होने से मौसम खुशगवार हो गया और दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज हुई। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
1: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
2: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
4: सात रंग का इंद्रधनुष है,
5: सात सुरों की सरगम है,
6: सात जन्म है सात समंदर,
4: साथ हमारा हरदम है,
6: जिंदगी के सतरंगी रंग
5: FM रेनबो के संग।
7: जी हाँ दोस्तों, 100.7 FM रेनबो पर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम कर देती हूँ। 1:16 का वक्त हो चला है, जरीना एक बार फिर से जुड़ चुकी है आप सभी के साथ, लेकिन इस वक्त प्रोग्राम जो है वो थोड़ा चेंज है। प्रोग्राम होटो पे तेरी बात लेकर के मैं जुड़ चुकी हूँ आपके साथ। भाई प्रोग्राम होटो पे तेरी बात में आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम करना है जो लगभग आप हर रोज करते हैं इस समय, वो ये होता है कि हम आपको देंगे कोई टॉपिक और उस टॉपिक पे हमारे दिमाग में तो उथल पुथल चल ही रही होती है, हम जानना चाहते हैं कि आप उस चीज पर क्या सोचते हैं। भाई आजकल लाइफ में हम सभी देखते हैं ना कि सबको लगता है बहुत ज़्यादा हम बिजी हैं, मतलब सभी का। आप किसी को कभी कह दीजिए आओ कभी घर पर मिलें या फला जगह मिला जाए, प्लान्स तो कभी ज़िंदगी में बनते ही नहीं क्योंकि लोग बहुत बिजी हैं, है ना। तो ये जो बिज़ी रहना होता है वो क्या सच में अच्छा है या बुरा है, मतलब कभी आप उन लोगों से पूछ के देखिए जिनके पास करने को कुछ भी नहीं होता है, मतलब शायद रिटायर्ड हो गए हैं या फिलहाल कोई जॉब नहीं है या स्टडीज़ नहीं करनी है और कुछ ऐसा सच घर के भी काम उनके पास नहीं है, तो जो अकेले बैठे रहते हैं, जो वेले बैठे रहते हैं, उनसे कभी आप पूछे कि अगर बिजी नहीं है तो ज़िंदगी कैसी होती है। तो मेरा मन क्या कहा कि मैं आज आपसे इसी पर बात कर लूं कि आपको क्या लगता है ज़िंदगी में बिज़ी रहना ज़्यादा सही है या नहीं। कहते हैं ना कि आज के, मतलब आज का जो समय है उसमें ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल चलने का नाम है और जो चलते रहते हैं वही मुस्कुराते हुए मंजिल तक पहुंचते हैं। तो प्लीज़ मुझे तो यही लगता है कि भैया बिज़ी रहना बहुत सही होता है, मतलब फ्री रहेंगे तो कुछ ना कुछ दिमाग में खुराफात चलेगी, लेकिन मुझे ये भी जानना है कि आप इस पर क्या सोचते। तो मुझे मेल करिए fmakashwanilakhnau@gmail.com पर। क्या मेल आई डी फिर से बोल दूँ? ओके फाइन, fmakashwanilakhnau@gmail.com। तो ये लखनऊ LKO मत लिखिएगा, LUCKNOW है, और फटाफट से अपने जो भी आइडियाज है, जो आपको लग रहा है कि बिजी रहना सही होता है ज़िंदगी में कि नहीं, वो हमें भेज दीजिए फटाफट से लिखकर। अच्छा, उससे पहले कुछ मेल्स जो पहले ही आ जाते हैं प्रोग्राम में उनको मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ। दीपमाला त्रिवेदी लीजी लिखती हैं, हेलो RJ मैम, मैं हरदोई से हैं, मेरा नाम दीपमाला है और मैं आपके प्रोग्राम को डेली, मतलब प्रोग्राम का डेली लिसनर हूँ, प्लीज़ मेरा नाम शामिल कर लीजिए। ओके, तो देखिए नाम शामिल हो चुका है और भैया मोनू सेठ जी ने तुरंत मुझे नमस्ते बोल दिया है और लिखते हैं कि आपको सुनकर खुशी हुई। शिवम भैया को भी इन्होंने आभार देना चाहा है और इन्होंने कहा है कि भैया शिवम जी ने बहुत बढ़िया गाने बजाए। तालिब अंसारी जी भी लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, आगे लिखा है इन्होंने, काफ़ी दिनों के बाद आपकी वॉइस रेनबो पर सुनने को मिली है। यस, ऑब्वियसली हर हफ्ते का हो जाता है, कभी कभार बीच में गैप भी हो जाता है। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप कितना कीनली ऑब्जर्व करते हैं कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। खैर, इन्होंने लिखा है 4 बजे तक आपके साथ रहेंगे और अभी ये खाना खा रहे हैं, तो खाना खाते खाते अब आई होप आपका खाना फिनिश हो चुका होगा, तो बस फटाफट से मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि लाइफ में बिजी रहना अच्छा है या बुरा है। सेम एज बसंत कुमार सिन्हा जी ने भी लिखा है, गुड आफ्टरनून मैडम जी, और आज का थीम ये जानना चाहते हैं क्या है। दमदम एयरपोर्ट कैलकटा से ये मेल आया था, तो मैंने थीम आप सभी को बता दिया है। फटाफट से आप अपने भी मेल जो हैं वो टाइप कर लीजिए और मुझे बताइए आपको क्या लगता है कि ये बिजी रहना एक ब्लेसिंग है आपके लिए कि नहीं है। फिलहाल ये गाना आप सभी के रेडियो सेट पर, इंजॉय करिए इसको, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ दोस्तों, फिल्म टशन का ये ट्रैक था आप सभी के रेडियो सेट पर। और वक्त देखिए कितनी तेजी से भाग रहा है, 1:25 का वक्त तो हो चला है, सेकंड्स जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने आप सभी से कहा था कि लाइफ में बिजी रहना कितना इम्पॉर्टेंट है या अनइम्पॉर्टेंट है, इस पर अपनी जो भी विचार हैं, आपके जो भी राय हैं वो हमें दीजिए। तो यहाँ पर बहुत सारे मेल्स आने शुरू हो चुके हैं। देखते हैं भाई रामराज जी क्या लिखते हैं। लिखा है इन्होंने, श्री गणेशाय नमो, जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू, भानु, पप्पी, पासी, मनीष, नीरज, मिर्जा, इमरान बेग, पहली बार इस कार्यक्रम में ईमेल भेज रहा हूँ। हमारा ईमेल ज़रूर शामिल करिएगा और आपकी महान कृपा होगी। और धन्यवाद इन्होंने लिख दिया, और यानी टॉपिक पर कुछ भी एज सच नहीं लिख कर दिया इन्होंने। नेक्स्ट जो मेल है वो है नीरज कुमार का, देखते हैं उन्होंने कुछ टॉपिक पर लिख कर दिया है कि नहीं। तो लिखा है इन्होंने, हेलो डियर, प्यारी प्यारी क्यूट सी जरीना मैम, आपको प्यार भरा नमस्कार। पिंकी रिंकी गाँव जगदीशपुर शिवगढ़ दीवानों के शहर जिला रायबरेली से ये मेल है। यस, हमेशा ये कन्फ्यूजन होता है, नीरज कुमार मुझे सामने दिख जाते हैं लेकिन उनकी आई से रिंकी पिंकी जो है वो मेल लिखती हैं। और इन्होंने लिखा है कि शुभ दोपहरिया, कैसी हैं आप, हम लोग एकदम चकाचक हैं, हम भी बिल्कुल चकाचक हैं। और आज मेरी प्यारी दीदी और जीजू की मैरिज एनिवर्सरी है, हमारे हिसाब से बिजी रहना बेकार है क्योंकि हम अपनों को समय नहीं दे पाते और बिजी होने से हम बहुत कुछ मिस भी कर देते हैं। इसलिए तो मेरा मानना है कि लोग बिजी नहीं होते हैं तो ठीक होते हैं, अपने समय को अच्छे से इंजॉय करते हैं। ओके, तो रिंकी पिंकी जी आपके जो ओपिनियन है वो भी सही है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना, आपने सुना होगा खाली दिमाग शैतान का घर, तो ऐसे में थोड़ा बिजी, थोड़ा मतलब फ्री रह ले वो सही है, लेकिन बिजी ज़्यादा रहना मुझे लगता है सही है। खैर अपना अपना ओपिनियन होता, आपको लग रहा है कि वक्त की कमी हो जाती है उन इंसानों के पास जो बहुत ज़्यादा बिजी होते, ये तो होता ही है, वो उतने फ्री नहीं रह पाते। थैंक यू सो मच मेल लिखने के लिए, बहुत प्यारी बात आपने लिख कर दी है और आपके अपने ओपिनियन को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। नेक्स्ट है विजयपाल यादव जी का मेल, लिखते हैं, आदरणीय बहन जी सादर नमस्ते, कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमारी समझ में बिजी रहना बहुत ही अच्छा है क्योंकि जब खाली बैठेंगे तो आप इधर उधर के विचार मन में आते रहेंगे आपके जो परेशान कर सकते हैं, हमारी समझ में बिजी रहना ही ज़्यादा अच्छा है। और ये विजयपाल जी हैं ग्राम व पोस्ट ललहौवा जिला खीरी से। तो विजयपाल जी आपने वही बात बोल दी जिसका डर हर किसी को रहता है कि भाई बिजी रहेंगे तो दिमाग में इधर उधर के ख्याल आएंगे और वो बेवजह डिस्टर्ब करेंगे। और ज़्यादातर लोग जो आजकल के समय में ना ओवर थिंकर होते हैं, मतलब जो चीज़ नहीं भी हो रही है या शायद नहीं हो उसको भी इमेजिन करते रहते, कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा या कहीं वो चीज़ हो गई तो क्या होगा, तो इसमें ना दिमाग बहुत ज़्यादा उलझा रहता है। ऐसे में बेटर यही होता है कि खुद को बिजी रखिए तो फालतू की उल जुलूल बातें ना दिमाग में बिल्कुल नहीं आएंगी। नेक्स्ट है अनंत राम मिश्रा जी, लिखते हैं हरदोई से कि एक कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। यस, इस घर को हम सभी लोग जानते हैं, इसीलिए हमें किसी ना किसी के कार्य में हमेशा, अच्छा किसी ना किसी कार्य में हमेशा व्यस्त रहना चाहिए जिससे हमारे जीवन में तरक्की हो और ऐसे कार्य में स्वयं को व्यस्त रखें। यस, बहुत सही बात आपने कही है कि दिमाग शैतान का घर ना बने, इसलिए कुछ ना कुछ करते रहें। नेक्स्ट वकील अहमद क्या लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम भी। और आगे इन्होंने लिखा है, लाइफ में बिजी रहना अच्छी बात है, नर्स दिवस की शुभकामनाएं और बड़े मंगल की भी शुभकामनाएं सभी को। आंधी बारिश हो रही है वकील अहमद, मंसूरी कटका हथूरी जिला सीतापुर से। अच्छा, आंधी बारिश आपके एरिया में हो रही है, अभी हमारे वहाँ तो बिल्कुल बढ़िया चटक धूप निकली हुई है एंड आई एम जस्ट होपिंग, कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड कि जल्दी से यहाँ भी बढ़िया वाला मौसम हो जाए, मतलब इस बार ऊपर वाला अच्छे से बिल्कुल मेहरबान है। ये चीज़ हम हमेशा देख रहे हैं कि होता क्या है, एक बार बारिश होगी, 3-4 दिन मौसम बढ़िया सा अच्छा हो जाता है, उसके बाद 5-6 दिन की धूप, फिर से ऊपर वाले को याद आता है कि वो बारिश वाला बटन दबाना है, फिर से ठंडा मौसम हो जाएगा और फिर से धूप। तो बस हमारा ये जो मई जून है, आई होप बस इसी तरह निकल जाए और हम सभी लोग सुकून से इस बार की गर्मियों को काट लें। भाई बड़े मंगल में ना वो वाला फील भी बहुत कम आ रहा है जहाँ पर पसीने से लथपथ एकदम पूरी सब्जी बन रही है और लोग लाइन लंबी लंबी लगा करके पूरी सब्जी ले रहे हैं। इस बार खैर वो जेस्ट वाली फीलिंग आ नहीं रही है ना, आप सभी को भी नहीं आ रही होगी, मतलब ऊपर वाला बीच बीच में इस तरह प्यारा सा मौसम कर देता है और हम सभी लोग भूल जाते कि हम लोग मई जून में जी रहे हैं, मतलब अभी मई है, आने वाला जून है उसमें जियेंगे, तो ठीक है सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और उसके बाद और भी यहाँ पर बहुत सारे मेल्स हैं, जैसे कि चंद्रमोहन मिश्रा का है और महेंद्र जी का है, बसंत कुमार सिन्हा ने फिर से मेल लिखा है, रोशनी

बाबा जी का भी मेल है, इन सबके मेल अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन उनसे पहले ये गाना भेजूंगी आप सभी के रेडियो सेट पर, वरना आपको लगेगा भैया लो गाने बजा ही नहीं रही, बोलती जा रही हैं, तो हम बोलेंगे नहीं, बस फुल स्टॉप अभी फिलहाल के लिए। और ये गाना आप सभी के रेडियो सेट पर फ्रॉम द फिल्म क्रिश, सोनू निगम, श्रेया घोषाल की प्यारी सी आवाज है। इंजॉय करिए इस गाने को और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।

0: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।
1: जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है होटो पे तेरी बात, और आपकी जो बात है वो लगातार हम तक पहुंच रही है और बहुत प्यारी प्यारी बातें आप सभी ने लिख कर दी है। महेंद्र दीपन जी ने क्या लिखा है, बहुत ही प्यारा सा मेल इन्होंने भेजा है, और इन्होंने साथ में ये भी लिख दिया है कि भाई थोड़ा बड़ा हो गया है, अपने हिसाब से आप पढ़ लीजिएगा, और कहाँ से मैं पकड़ूँ कहाँ छोड़ूँ। अगेन आपने बहुत ही प्यारा सा पोस्टर बनाकर भेज दिया है, तो इन्होंने क्या लिखा है, सादर प्रणाम, मैं महेंद्र दीपन, गांव रूड़, जिला नागौर, राजस्थान से 100.7 FM रेनबो लखनऊ का नियमित श्रोता हूँ, आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, और आज का विषय है लाइफ में बिजी रहना सही है या नहीं। ओके, और इन्होंने लिखा है कि मुझे बहुत अच्छा लगा इस विषय पर, मेरा मानना है कि जीवन में व्यस्त रहना ना केवल सही है बल्कि बहुत ज़रूरी है। मेरा व्यक्तित्व अनुभव यही कहता है कि मैं दिन भर अपने काम के दौरान रेडियो सुनता रहता हूँ, और उससे न केवल मैं काम कर पे ध्यान दे पाता हूँ बल्कि मन में कोई फालतू नकारात्मक विचार नहीं आता, यस पॉजिटिविटी बनी रहती है। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है कि तनाव से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि हम जब बिजी रहते हैं तो रिलैक्स महसूस करते हैं, क्योंकि काम का रिलैक्सेशन हम लोग के माइंड में रहता है, और बैठे रहेंगे तो भाई वही दिमाग में फिजूल बातें और टेंशन सारी चीज़ें आएंगी। और इन्होंने लिखा है सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि, दिन के एंड में जब हम व्यस्त रहकर अपना काम पूरा करते हैं तो एक अलग ही सुकून मिलता है। थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा सा मेल महेंद्र जी आपने लिखा है, और इसी के साथ अब अगले मेल पर भी हम पढ़ेंगे। कौन है, रोशनी रावत जी लिखते हैं, गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड प्यारी जरीना मैम जी, आप कैसी हैं, 12 बजे से जुड़े हुए हैं आपके साथ, मैं बहुत अच्छी हूँ, और थैंक यू सो मच कि आप 12 बजे से जुड़ी हूँ, शाम 4 बजे तक हम यही चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, कार्यक्रम इनको बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिनों बाद आप आई हैं, और मेरा नाम रोशनी रावत है, ग्राम पोस्ट बम्हना, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव से ये मेल आया है, और फिलहाल ये चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रहे हैं, और टॉपिक पर ये लिखती हैं कि अपनी परिस्थितियां जैसी भी हों, व्यस्त रहने से हमेशा दिमाग में फालतू ख्याल नहीं आते, और हमेशा खुश रहने के लिए अच्छा महसूस होता है, पर हमेशा व्यस्त रहना भी ठीक नहीं, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलते रहना चाहिए, जो दोस्त दूर हैं उनसे फ़ोन पर बात कर लेनी चाहिए, यस वो वाला टैंट्रम नहीं दिखाना चाहिए, अरे बहुत बिजी रहते हैं टाइम ही नहीं मिलता, मतलब ऐसे लगता है कि बिल्कुल प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हमारे अपने पड़ोसी हमारे दोस्ती हो गए, कि उनको फ़ोन करने का टाइम नहीं मिलता, और मिलना तो मतलब आप बस शायद अगला जन्म लेना पड़ जाए, ऐसी कहानियां होती हैं घरों में। बसंत कुमार सिन्हा जी ने फिर से हमें

लिखा है और फिर से उन्होंने क्या लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मेल खाली रिसेंट ऐसे ही किया है। ओके, चंद्रमोहन मिश्रा जी क्या लिखते हैं, मैं चंद्रमोहन मिश्रा नौरंगपुर दोहरा लखीमपुर खीरी से, सबसे पहले आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार। आप बात आपने बहुत अच्छी पूछी है, तो मैं इस पर यही कहना चाहता हूँ कि जब हम व्यस्त होते हैं तो हमारा दिमाग सक्रिय रहता है, हम लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और अपने समय का सदुपयोग करते हैं, हमें दिशा और उद्देश्य देता है ये चीज़। और दूसरों को दूसरी ओर फ्री रहने का मतलब आलस नहीं है, चिंतन के लिए समय निकालना है, खाली समय में अपनी रचनात्मकता को फिर से जीवंत करें, मानसिक शांति पाने और अपने प्रियजनों के साथ जुड़ने का मौका देता है। तो मेरे विचार से वो इन्होंने लिखा है कि वो नहीं है जो हमें थका दे, अच्छा मेरे विचार से अच्छा वो नहीं है जो हमें थका दे, अच्छा वो है जो हमें ठहरा दे। बहुत ही प्यारी बात लिखी है इन्होंने। और असली खुशी सार्थक व्यस्तता में है, हमें व्यस्तता के बीच भी छोटे छोटे खालीपन निकालने चाहिए जो हमें खुद से जोड़ते हैं। चंद्रमोहन मिश्रा जी, बहुत डीप बात आपने लिखी और बहुत बहुत शुक्रिया लिखने के लिए भी। और बाबू अंसारी जी क्या लिखते हैं, बाराबंकी से ये मेल आया है, अस्सलामुअलैकुम जरीना जी लिखा है इन्होंने, वालेकुम अस्सलाम, पूछते हैं कैसी हैं आप, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और आज का टॉपिक सुन नहीं पाए हैं ये, इसीलिए मेल बस इन्होंने लिखा है शामिल कर लीजिए। तो मेल तो देखिए शामिल हो चुका है और नेक्स्ट जो मेल आया है वो किसका है यहाँ पर, ओके नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। और मोहब्बत व प्यार भरे अंदाज में पूरे लखनऊ शहर को ये आदाब कहते हैं और आपका मेल बस इतना ही है, बाकी कहाँ गायब हो गया है। ओ मिल गया, लिखते हैं जरीना जी, सबसे पहले तो तहे दिल से गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून आपको भी है। और इनका कहना है कि जिंदगी में, लाइफ में बिजी रहना ही हमारी ज़िंदगी को आगे ले जाता है, उसी बिजी टाइम मैं किसी और को अगर टाइम देते हैं तो ये बहुत ही नेक काम है। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर साहब ने हमें मेल लिखा है। ओके, मोहम्मद जहीर साहब जी आपका भी मेल है और इन्होंने लिखा है कि बिजी रहना आज के टाइम पर बहुत सही है, लेकिन परिवार और दोस्तों के लिए वक्त निकालना भी ज़रूरी है। मैं मेल पूरा पढ़ना इसके बाद इन्होंने लिख दिया और उसके बाद थैंक्स भी लिखा हुआ है। मेल कहाँ है भैया, इतना ही है आपका मेल। और नाम लिखा है आपने जहीर मलिक, सचिन विवेक शर्मा और केशव नगर ददौली मार्ग लखनऊ से। तो बस मेल इतना था, मैंने पूरा पढ़ लिया है बिल्कुल, मतलब सत्य और निष्ठा के साथ, है ना, कुछ भी छोड़ा नहीं है इसमें। रामेश्वर जी, गुलफशा सिद्दीकी और परवीन जी आपके भी मेल हमारे पास है, लेकिन इन मेल्स को हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। फिलहाल जो अगला गाना है उसको आपके रेडियो सेट पर भेज देते हैं, वरना आपको लगेगा लो भैया गाना फिर नहीं आया। तो ये लीजिए प्यारा सा गाना आप सभी के रेडियो सेट पर, इन्जॉय करिए इस गाने को और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: स्टे ट्यून्ड 100.7 एफएम रेनबो,
1: धड़कन लखनऊ की।
2: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।

0: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow ki.
1: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।
2: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूं और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल एफएम रेनबो।
3: आई एम संध्या त्रिगुनी। बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो एफएम की।
4: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ एफएम रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताजा जानकारियाँ भी देता है। दैट्स व्हाई आई लव एफएम रेनबो।
5: ये तो सुन रहे हैं एफएम रेनबो और आप
6: जी हाँ, और आप भी सुन रहे हैं, मुझे बिल्कुल पता है। और क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है होंठों पे तेरी बात, और आज मैंने वो बात आपसे पूछी है जो हर किसी की बात है, मतलब हर किसी के होंठों पे बात रहती है कि भैया क्या करें, बड़े बिजी हैं। तो आपको क्या लगता है, जो बहुत ज़्यादा बिजी हैं वो बिजी होना लाइफ में सही है या गलत है? तो मेल्स जो आए हुए हैं उनको मैं शामिल कर लेती हूँ। रामेश्वर जी का मेल है, यहाँ पर लिखते हैं होंठों पे तेरी बात कार्यक्रम में सप्रेम नमस्कार, आपको बराबर सुन रहे हैं हम, प्रस्तुति इनको अच्छी लग रही है। और कहाँ से ये मेल आया है, मुंगिसापुर कानपुर देहात से ये है, और सबके नाम लिखे हैं उन्होंने परिवार में, लेकिन टॉपिक पर कुछ नहीं बोला, तो मैं आगे ज़्यादा नहीं

शामिल करूंगी इस मेल को, क्योंकि मुझे पॉइंट चाहिए, मतलब टॉपिक पे बात चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं बैठकर। नेक्स्ट है गुलफ्शा सिद्दीकी, क्या लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम जरीना पी। वालेकुम अस्सलाम। और संडीला से ये मेल है और इन्होंने लिखा है कि मेरा मानना है बिजी रहना सही है, लेकिन इतना भी बिजी ना रहो कि अपने परिवार को अपने खास को टाइम ही ना दो। बिजी रहो लेकिन कभी कभी हमें अपनों के लिए टाइम निकालना चाहिए, तभी ज़िंदगी बहुत आसान होती है। यस, बहुत अच्छी बात, बहुत प्यारी सी बात आपने लिखी है। बिज़ी रहिए लेकिन अपने अपनों के लिए आप बिज़ी हैं ये भी ध्यान में रखिए, है ना। नेक्स्ट है परवीन जी का मेल, लिखते हैं आजकल लोग खाली होकर भी बिज़ी रहते हैं क्योंकि मोबाइल तो होता ही है हाथ में। यस, ये बिल्कुल वो वाली बात है जिसका मुझे बहुत देर से इंतज़ार था कि लोग ना बिज़ी होकर भी अपने आप को बिज़ी दिखाते हैं, मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, पूरा पूरा दिन स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, बेड तोड़ रहे हैं, सोफा तोड़ रहे हैं, लेकिन अगर फोन कर दो आप तो बहुत बिजी हैं, क्या करें, इतना काम है, इतना काम है, तो मतलब वही वाली बात हो गई है। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है कि दुनिया निरंतर चलती रहती है तो हम तो मामूली इंसान मात्र हैं, हमें भी प्रकृति के नियम के अनुसार निरंतर कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अगर कुछ नहीं है तो सिंपल ध्यान ही

जिंदगी बहुत आसान होती है. यस, बहुत अच्छी बात, बहुत प्यारी सी बात आपने लिखी है. बिजी रहिए लेकिन अपने अपनों के लिए आप बिजी हैं ये भी ध्यान में रखिए, है ना. नेक्स्ट है परवीन जी का मेल, लिखते हैं आजकल लोग खाली होकर भी बिजी रहते हैं क्योंकि मोबाइल तो होता ही है हाथ में. यस, ये बिल्कुल वो वाली बात है जिसका मुझे बहुत देर से इंतजार था कि लोग ना बिजी होकर भी अपने आप को बिजी दिखाते हैं, मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, पूरा पूरा दिन स्क्रोलिंग कर रहे हैं, बेड तोड़ रहे हैं, सोफा तोड़ रहे हैं, लेकिन अगर फोन कर दो आप तो बहुत बिजी हैं, क्या करें, इतना काम है, इतना काम है, तो मतलब वही वाली बात हो गई है. नेक्स्ट इन्होंने लिखा है कि दुनिया निरंतर चलती रहती है तो हम तो मामूली इंसान मात्र हैं, हमें भी प्रकृति के नियम के अनुसार निरंतर कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए. अगर कुछ नहीं है तो सिंपल ध्यान ही कर लिया करो ताकि दिमाग जो है वो तरोताज़ा रहे. यस, बहुत अच्छी बात लिखी है. और परवीन जी, बहुत ही प्यारा मेल आपने लिखा है, बहुत सही सही बात, मतलब छोटी सी आपने बात लिखी लेकिन बिल्कुल सही लिखा है आपने. सत्यनारायण कुरील जी का फिर से भी मेल आ गया है. राधे राधे लिखते हैं और टॉपिक पर कुछ नहीं लिखा इन्होंने, राजस्थान से ये मेल था. रोशनी रावत ने क्या लिखा है, जरीना मैम जी गुस्ताखी माफ़, फिर से ईमेल भेज दिया. ओके, अभी 2 अप्रैल को जो कार्यक्रम हुआ था आपने आपको मैंने देखा था. ओके, मतलब इन्होंने किसी प्रोग्राम में मुझे देखा है और उस पर इन्होंने लिखा है कि आपको बता दूँ कि मुझे बड़ा अच्छा लगा था और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. बहुत प्यारी प्यारी बातें आपने लिखी, मेल लिखने के लिए, बातें शेयर करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया. और मोहम्मद अहमद जी, बिजी रहना ठीक है लिखते हैं लेकिन बस इतना बिजी ना रहो कि लोगों को भूल जाएं. ओके, बहुत सही बात है. नवी हसन जी क्या लिखते हैं, कुछ उन्होंने टॉपिक पर नहीं लिखा है तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगी इसको. हॉटमेल के कुछ मेल्स आने शुरू हो चुके हैं तो बस थोड़ा सा अब इंतज़ार कर लेते हैं अगले प्रोग्राम के लिए. फिलहाल इस प्रोग्राम से लूंगी आप सभी से इजाज़त. आज का प्रोग्राम का आखिरी गाना आप सभी के रेडियो सेट पर, इंजॉय करिए इसको और उसके बाद जल्दी से वापस आते हैं अगले प्रोग्राम यानी आपके फेवरेट हॉटमेल को लेकर के. सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की.

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइस, सहायक नर्स, मिडवाइस और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। प्रत्येक पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र, 1,00,000 रुपये नकदी और पदक शामिल है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द करते हुए दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया है। एजेंसी ने परीक्षा में कथित अनियमितताओं और जांच एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर यह निर्णय लिया है। साथ ही केंद्र सरकार ने पूरे मामले की व्यापक जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दी है। नई परीक्षा तिथि और बदलाव जारी होने वाले एडमिट कार्ड का कार्यक्रम जल्द ही आधिकारिक माध्यमों से घोषित किया जाएगा। एनटीए ने अभ्यर्थियों और अभिभावकों से केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने और सोशल मीडिया पर प्रस्तावित अपुष्ट खबरों से बचने की अपील की है। एनटीए ने यह भी स्पष्ट किया कि मई 2026 चक्र में पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थियों को डेटा, उम्मीदवार स्थिति और चुने गए परीक्षा केंद्र आगामी पुनरीक्षा के लिए मान्य रहेंगे। इसके लिए दोबारा पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप सिंह की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी को दर्ज किया गया है। मथुरा के वृंदावन में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील जे सिंह ही ने किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से देश और व्यापारी आगे बढ़ रहा है। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन वाराणसी चैप्टर की महत्वपूर्ण बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आर के चौधरी ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ है और सरकार द्वारा समय समय पर किए जा रहे प्रयासों से उद्योगों को स्थिरता मिल रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि समन्वित नीतियों और तेज निर्णयों से छोटे उद्योगों को नई ऊर्जा मिलेगी। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 3 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।
1: सात रंग का इंद्रधनुष है,
2: सात सुरों की सरगम है,
3: सात जन्म है सात समंदर,
1: सात हमारा हरदम है,
3: जिंदगी के सतरंगी रंग
2: FM रेनबो के संग।
4: जी हाँ दोस्तों, 2:05 का वक्त, अगला प्रोग्राम यानी आपका अपना फेवरेट हॉटमेल लेकर

के आपकी दोस्त जरीना फिर से जुड़ चुकी है आप सभी के साथ। भाई हॉटमेल में क्या करना है, अगेन द सेम थिंग, मेल आईडी हमारी नोट डाउन कर लीजिए, fmakashwani@gmail.com। ये जो हमारी मेल आईडी है इस पर आप अपना पसंदीदा गाना जो भी सुनना चाहते हैं वो लिख कर आप हमें भेज दीजिएगा। आई एम हियर टू प्ले योर सॉन्ग्स। तो बस अगले एक घंटे आपकी फरमाइश हमारे सर आंखों पर। और फिलहाल ये जो पहला गाना हम बजा रहे हैं वो किसकी पसंद का है ये गाने के बाद मैं आपको बताती हूँ। इंजॉय करिए इस गाने को और अपना मेल भी फटाफट हमें भेजते रहिए। तो ये गाना आ गया आप सभी के रेडियो सेट पर और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ दोस्तों, आपसे कहा था कि आपको गाने के बाद बताऊंगी कि इस गाने को किसने रिक्वेस्ट किया था। तो आपको बता देती हूँ कि आलमबाग से ये रिक्वेस्ट आई थी आयत की, जिन्होंने इस गाने को सुनना चाहा था। और देखिए, आपकी आयत जो फरमाइश है वो फुलफिल हो चुकी है। और इसी के साथ और बहुत सारे मेल्स यहाँ पर आ चुके हैं, तो मैं फटाफट से मेल्स शामिल कर लेती हूँ। भाई मूसा शेख जी ने प्यार भरा आदाब लिखा है, पूछते हैं आप खैरियत से हैं। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और ये सनावत से मेल आया है शेख मूसा मोहसिन जी का, बहुत बहुत शुक्रिया मेल लिखने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो मेल है वो भी मैं शामिल कर लेती हूँ। मतलब नेक्स्ट मैं कहाँ देखूँ, ऑलमोस्ट आपके 200 मेल्स यहाँ पर हैं एंड आई एम गेटिंग कन्फ्यूज कि कैसे कवर होंगे। ओके चलिए, फिर भी कोशिश करते हैं, फटाफट से और भी लेते हैं। उत्तम कुमार भगत जी का मेल लिखा है, इन्होंने लिखा है पाकुड़ झारखंड से ये मेल। बाप रे, इतनी दूर से मेल है ये। बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यार भरे मेल के लिए। श्वेता भगत, किसुतासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, इन सबका नाम ये चाहते थे कि हम ले लें। और वेस्ट बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत, सबके नाम इन्होंने मेंशन कर दिए हैं। तो देखिए, हमने भी पढ़ दिया है। और नेक्स्ट जय जी क्या लिखते हैं, होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल। और गाने की रिक्वेस्ट इन्होंने की है, कौन सा गाना है भाई, पुष्पा पार्ट वन का है। चलिए मैं देखती हूँ, इस गाने को ज़रूर आगे क्यू कर देती हूँ। बहुत ही प्यारा गाना है और जावेद अली की आवाज़ में है। गेस्ट शायद आप कर ही चुके होंगे, पर मैं कोशिश करूँगी आपके आगे आपका गाना जो है वो ज़रूर प्ले करूँ। मेहर अरोड़ा लिखती हैं पदमपुर ज़िला श्रृंगार नगर राजस्थान से, मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, और ये भी गाना सुनना चाहती हैं। नेक्स्ट तालिब अंसारी जी क्या लिखते हैं, ज़रीना हफीज़, मैम अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। और साबिर अंसारी, आरसिफ अंसारी, ये नाम इन्होंने चाहा है कि मैं ले लूँ। और राजा कटरा बाराबंकी से ये मेल आया है, और गाना आपने भी रिक्वेस्ट किया, एंड आई विल प्ले दिस सॉन्ग, देखती हूँ अभी। नेक्स्ट है जय जी, आपका फिर से मेल आ गया, तो फिर से मैं बिल्कुल भी नहीं शामिल करूँगी। राजकुमार दूरी जी क्या लिखते हैं, गांव फरासी हिसार से राजकुमार दूरी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार, और बस नाम चाहते थे ले लें, और हमने देखे नाम ले लिया है। नेक्स्ट जो है हरजिंदर शिंदा जी का, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर शिंदा, जसवीर, सीता और गीता, लिखते हैं अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दें। तो बस अगला गाना आप ही के लिए। नेक्स्ट है हॉटमेल प्रोग्राम, किसने लिखा है, रामेश्वरन विश्वकर्मा जी लिखते हैं, प्रिय प्रस्तुतकर्ता जी सादर प्रणाम, किसी भी गीत में मेल शामिल कर लीजिए। ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से मेल आया है, रामशरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल, दिव्यांशी विश्वकर्मा, और लास्ट में धन्यवाद इन्होंने लिख दिया है। अजीत जी आपका भी मेल आया हुआ है, प्रिया जी होस्ट को नमस्कार लिखते हैं, वीरम गांव गुजरात से, अजीत भवसार, प्रमिला भवसार, भावेश, सनी भवसार, और गाना आपने भी रिक्वेस्ट किया है। तो देखते हैं अभी इतने सारे मेल्स पढ़ रहे हैं किसका गाना जो है वो यहाँ पर प्ले होगा। नेक्स्ट भी मेल शामिल कर लेते हैं, राजकोट से जैमिन कुमार जैन, हेतल जैन, कृष्णा, राकेश जैन, सबके मेल्स आए, मतलब सबके नाम यहाँ मेंशन है, मेल तो एक ही है ये, फिल्म अनुराग का ये गाना सुनना चाहते हैं। ओके बाबू अंसारी जी आपने भी लिखा है, गुड आफ्टरनून जरीना मैम, ये गाना सुनवा दीजिए। ओके ये गाना मैं पूरी कोशिश करती हूँ सुनवाने की। नसीम अंसारी, मुनान अंसारी और बाबू अंसारी, इन सब ने मिलकर ये मेल लिखा है। और भाई जिस तरह से सभी लोग बोल रहे हैं

गाना वो गाना, तो यहाँ पर भैया इतने सारे जब हम मेल्स पढ़ते हैं ना, उसमें से कोई एक गाना आपके रेडियो सेट पर पहुँचता है, तो वो वाला गाना ये है। और जिसने जिसने कहा था ना कि कोई भी गाना, बस वो तो समझ ले कि उन्हीं के लिए गाना है। एंजॉय करिए इस प्यारे से गाने को और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।
2: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।
3: जी हाँ दोस्तों, और इस पर प्रोग्राम चल रहा है हॉट मेल, और आपके प्यारे प्यारे से हॉट हॉट से मेल हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। वैसे हॉट से याद आया, बाहर मौसम तो बड़ा हॉट हॉट सा है, लेकिन कुछ के मेल्स ऐसे आ रहे हैं कि उनके एरिया में, मतलब रायबरेली से भी मेल आया था कि उधर बड़ी अच्छी खासी आंधी वांधी आई हुई है, बादल गरज रहे हैं, और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप भी मुझे साथ साथ बताते चलिए, मतलब इतला करते चलिए कि आपके एरिया में, आपके शहर में कैसा वाला मौसम है, ताकि हम भी पूरी उम्मीद में रहें कि हमारे वहाँ भी मौसम बदलने वाला है। ओके, नेक्स्ट बाबू अंसारी जी क्या लिखते हैं ये देखते हैं। बाराबंकी से, गुड आफ्टरनून जरीना मैम, ये गाना सुनवा दीजिए प्लीज। ओके, इतना सा प्लीज आपने लिख दिया है। ये गाना मुझे बहुत पसंद है, और गाना जो है वो मैंने अपने दिमाग में फीड कर लिया है, देखती हूँ आगे क्यों होता है या नहीं हो पाता है। नसीम अंसारी जी, मुनान अंसारी, बाबू अंसारी, और ये इन्होंने मेल लिखा, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यारे से मेल के लिए। भाई मूसा शेख जी क्या लिखते हैं, प्यार भरा आदाब भेजते हैं, और सनावत से शेख मूसा मोहसिन, और इन्होंने लिखा है दुआओं में याद रखिएगा। बिल्कुल याद रखेंगे आपको। अकरम हुसैन जी क्या लिखते हैं, सलाम नमस्ते, प्लीज़ अपनी पसंद के किसी भी गीत में हमें शामिल कर लीजिए। नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा को आत बिहार से, शेख जफर हसन, नरगिस जफर, कोई देख लीजिए कहीं इधर उधर आपका, मतलब आपकी बिल्डिंग में आपके आसपास कोई बचा तो नहीं है, आपने सबके नाम मेंशन कर दिए। खैर ये भी एक तरह का प्यार होता है ना, मतलब अगर हमारा नाम रेडियो पे जा रहा है तो मेरे आसपास जितने लोग हैं, मेरे परिवार के लोग, जितने भी प्यार करने वालों के, सबका नाम जाए, बड़ी बात है ये भी सोचना इस तरह का, वरना आजकल तो लोग ऐसे तो ना, मेरा नाम बस आगे आगे आए, बाकी तो गए सब पीछे, है ना। ओके, संदीप मक्कर जी क्या लिखते हैं, फिल्म राम लखन का ये गाना सुनना चाहते हैं। ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, बरकत मक्कर, कमल सहानी, पिंगा वाला चौक, गुराया, जालंधर पंजाब से ये मेल आया है। बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यारे से मेल के लिए और इतनी दूर से मेल भेजने के लिए। आफ्ताब अंसारी जी लिखते हैं, आरजे जरीना जी, सिस्टर को प्यार भरा नमस्कार, आपको भी आगे आदाब भी इन्होंने लिख दिया है, आपको भी आदाब। प्रोग्राम पेश करने का अंदाज़ आपका बहुत शानदार है, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे लोगों के नाम हैं तो नाम लेना तो बनता है। शेरवानी स्कूल गुंजडुंडवारा उत्तर प्रदेश से, ओके, आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी, देखिए नाम सबके ले लिए हैं। गाने की देखिए अभी फिलहाल कोई गारंटी नहीं है, नेक्स्ट गाना देखते हैं कौन सा बजने वाला है। सैफ अंसारी क्या लिखते हैं, हाय मैम माय नेम इज, ओके ये मेल आईडी है, आगे जो मेल लिखा गया है वो उस्मान अंसारी ने लिखा है।

श्रीनगर लखीमपुर से हूँ। ओके अच्छा, श्रीनगर सुनने से मुझे लगा कि शायद आप वहाँ श्रीनगर जम्मू कश्मीर से आप मेल भेज रही हैं, तो मैं पूछ लेती हूँ। भैया आप लोग तो बड़े मस्त मौसम में होंगे, हम लोग तो बड़ी गर्मी झेल रहे हैं। खैर ये बगल से ही मेल है, ये हमारे यहाँ श्रीनगर में मौसम काफ़ी सुहाना है। ओ वाह, यहाँ पर भी इनके मौसम मतलब बड़ा बढ़िया है। चलिए ठीक है, तो यानी उम्मीद जो है वो और भी ज़्यादा हमारी जाग जाए कि यहाँ लखनऊ में भी अच्छा होने वाला है मौसम। और सब लोग बाहर बैठे हैं, इन्होंने बताया ठंडी ठंडी हवा ले रहे हैं। और इसी बात पे मैम एक सॉन्ग प्ले कर दीजिए। मैं एक क्या, मैं लगातार सॉन्ग ही तो बजा रही हूँ। और जो गाने हैं वो मौसम आपके वहाँ अच्छा, हमारा अच्छा नहीं है, तो हम भैया अभी तो नहीं ये सब बजाएंगे, ठीक है। लेकिन चलिए पूरी पूरी कोशिश रहेगी उषमा जी कि हम आपका गाना ज़रूर बजाएं। नेक्स्ट है नितेश जी का सप्रेम नमस्कार, लिखते हैं पता पलारी छत्तीसगढ़ से ये मेल आया हुआ है। नितेश कुमार, दुर्गा प्रसाद और पराग टेलर, तनुजा और ईशांत देवांगन, ये सबके नाम हैं। तो ये देखिए मैंने नाम तो ले ही लिए हैं, कोई भी गीत में इन्होंने लिख दिया है कि मेल शामिल कर लें, तो आपका देखिए मेल शामिल हो चुका है। और किसका मेल शामिल होगा, किसका शामिल होगा, यस टीडी मल्होत्रा, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, ये गाना सुनना चाहते हैं, मुझे लगा ये आप कहना चाहते हैं। ओके नेक्स्ट, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से ये मेल है। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। तो देखिए ये सारे गाने जो हैं वो भी शामिल हो चुके हैं। अब इसी के साथ एक काम करती हूँ, बहुत ज़्यादा वक्त मैंने ले लिया है, अगला जो गाना है वो आप में से ही किसी रिक्वेस्ट का था, तो ये गाना जो है वो भेज देती हूँ आप सभी के रेडियो सेट पर। एंजॉय करिए इस गाने को, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।
4: Keep listening to 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ दोस्तों, सोनू निगम अलका याग्निक की आवाज़ में ये गाना था आप सभी के रेडियो सेट पर फ्रॉम द फिल्म जीत। जितना प्यारा गाना उतने ही प्यारे बोल, उतना ही खूबसूरत पिक्चराइजेशन है। कभी इसको देखिएगा, गाने को आपको बहुत पसंद आएगा। मतलब सुनवा तो हमने दिया है, लेकिन जब आप देखेंगे ना तो भी उतना ही अच्छा लगेगा। खैर, 2:40 का वक्त हो चला है, प्रोग्राम चल रहा है हॉट मेल, और अगला मेल जल्दी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे मेल यहाँ पर हैं और फिर बाय द एंड कहीं कुछ मेल छूट ना जाए, तो इसके लिए तो और स्पीड अप करती हूँ। नेक्स्ट जो मेल है वो है, हेलो आरजे, हाय, किसने लिख कर दिया है, हितेंद्र दास जी ने, हाउ आर यू, आई एम एब्सोल्युटली

फाइन लिखते हैं आपका आपका आवाज़ अच्छा लग रहा है. आवाज़ नहीं आपकी आवाज़. ओके हम समझ गए हैं. खैर आप जब शब्द लिखते हैं ना तो ऑब्वियसली मेरी जो आपकी फीलिंग्स है ना वो पूरी हम तक पहुंच रही होती है. आवाज़ की तारीफ कर रहे हैं और आज मेरी माँ रूप तारा दास जी की क्या लिखा है आपने आपकी बिल्कुल भी शब्द क्लियर नहीं हो पा रहे हैं अब. कुछ तो है आपने लिखा है 30 दिन. अच्छा स्वर्गवास हो गया था आपकी माता जी का. अच्छा ओके ओके ओके 30 दिन हो गए हैं उनको तो कोई कल अंतिम संस्कार नहीं आपकी. देखिए ये शब्द बहुत ही ज़्यादा आपने ऊपर नीचे कर दिए हैं और वो चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है. असम से ये मेल आया है तो हम समझ सकते हैं कि थोड़ा सा हिंदी लिखना शायद मुश्किल हो रहा हो इनका. हितेंद्र दास जी हमने आपका मेल पढ़ाया ना. आई कैन अंडरस्टैंड कि कुछ तो मिस हैपनिंग है आपके घर पर जिसको आप यहाँ पर मैंशन करना चाहते हैं. मेल लिखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. ऊपर वाला आप सभी को इस टाइम से जल्दी से बाहर निकाल दें. नेक्स्ट मेल ले लेते हैं. शमसुल कमर राही जी लिखते हैं आरजे जी आदाब. शमसुल कमर राही शाहिन फातिमा अदनान खान फैज़ान खान अनु खान उस्मान खान कलीम अंसारी और थैंक्स इन्होंने लिख दिया है. नेक्स्ट जो है किसका जीत भवसार जी के प्रिया आरजे नमस्कार. कल हूँ ना हो का ये गाना सुनना चाहते हैं. और वीरम गाम गुजरात से अजीत भावसार प्रमिला भावसार दोनों लोगों ने मेल लिखा है साथ में. बहुत बहुत शुक्रिया मेल लिखने के लिए. निसार अली जी क्या लिखते हैं. प्रसारक जी प्यार भरा आदाब नमस्कार. आप हमें किसी भी गीत में शामिल करें. धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी नौशाद सलमानी बेबी आलिया अयान बाबू प्लीज़ शामिल कर लीजिए इन्होंने लिखा. देखिए मेल आपका शामिल हो चुका है. नेक्स्ट महेंद्र जी क्या लिखते हैं. महेंद्र मोदी जी गाने की रिक्वेस्ट की है इन्होंने. रामगढ़ कैंट से ये मेल आया है और थैंक यू लिख दिया है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मेल लिखने के लिए. दातार सिंह जी का भी मेल यहाँ पर है. गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से है दातार सिंह शेखावत. संगीता कुंवर तुषार सिंह रिंकी शेखावत और ये भी गाना सुनना चाहते हैं. गाना तो सभी लोग सुनना चाहते हैं. सभी मेल कर रहे हैं. सभी कोई ना कोई गाने की रिक्वेस्ट भेज देते हैं. कोई ना कोई ऐसे लोग होते जो कहते हैं आप अपनी पसंद का कोई गाना बजा दें. लेकिन यूजुअली हमारी पसंद जो है वो आपकी पसंद में ही शामिल हो जाती है क्योंकि देखिए अलग से तो कुछ बजा ही नहीं सकते हम यहाँ पर. आफ्ताब अंसारी जी क्या लिखते हैं. आफ्ताब अंसारी जी का मेल पहले भी शामिल हो चुका तो दोबारा बिल्कुल भी नहीं शामिल करूँगी. दूनागिरी जिला अल्मोड़ा उत्तराखंड से हिमांशु जोशी कमला जोशी अनीता जोशी और भरत जोशी जी लिखते हैं. मैं आकाशवाणी का नियमित श्रोता हूँ और रोज कार्यक्रम सुनता हूँ. आज तक कभी भी मेरा गाना नहीं चलाया गया. अरे ये क्या हो गया. आज इन्होंने लिखा है अवश्य चलाया जाए. तो ये मैं सारे एंकर्स में सारे आरजेस में चेक करूँगी कि पहले आपका गाना चला है कि नहीं और अगली बार मैं पक्का बजा दूँगी अगर नहीं चला होगा. वैसे अगर स्क्रॉल होगा अगर आपकी लिस्ट में आपका जो गाना है वो आ जाता है तो वो गाना बज भी जाएगा. ऐसा बिल्कुल भी परेशान मत होइए. अब नाजिम उस्मानी जी क्या लिखते हैं. हीरा की तमन्ना है गाना सुनवा दीजिए. नाजिम उस्मानी महमूदाबाद सीतापुर से. ओके उसके अलावा और किसका है. कमलकांत गुप्ता जी पिपरिया से कमलकांत गुप्ता श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता और समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता श्रीमती श्रद्धा गुप्ता अदिति गुप्ता राधे गुप्ता दीपक गुप्ता श्रीमती अंकुर राघव गुप्ता. देखिए नाम सबके शामिल हो चुके हैं. और कौन शंभु दयाल जी का भी मेल हम पढ़ लेते हैं. गांव जाखोद से शंभु दयाल पाठ खटक विमला देवी योगेश कुमार दीपक कुमार कुमारी पूजा खटक और लिखा है इन्होंने आपका हर पल खुशियों से भरा हो. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे से प्यार के लिए. और ये मैं सबके लिए बोल देती हूँ कि आप सभी का भी हर पल खुशियों से भरा हो. तो चलिए इतने मेल्स शामिल हो चुके हैं. देखते हैं नंबर किसका आता है. यस इस गाने का नंबर आया है तो ये आप डिसाइड करिएगा कि किसने इस गाने को रिक्वेस्ट किया था. बट बहुत ही प्यारा सा गाना है अल्तमश फरीदी की आवाज़ में. एंजॉय करते हैं इस गाने को. सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की.

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।
2: माने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: स्टे ट्यून्ड टू 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: भाई प्रोग्राम हॉट मेल में इस वक्त कीर्तनपुरी गोस्वामी जी हमसे पूछते हैं कि आप कैसी हैं जी। मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ, नारगोड़ा छत्तीसगढ़ से ये पूछा गया है। और बहुत सारे लोगों के नाम है, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, ये सारे नाम थे और इन्होंने लिख दिया माय रेडियो माय लाइफ। यस, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो मेल है, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, ये सारे लोगों के नाम

थे शामिल हो चुके हैं और गाना ये सुनना चाहते हैं। तो भाई गाना मैं देखती हूँ अगला कौन सा बजने वाला है। शेख मूसा जी क्या लिखते हैं, प्यार भरा आदाब, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और बार बार ये मेल आ रहा है, कन्फ्यूजन में मैं ओपन कर लेती हूँ और पढ़ भी देती हूँ, बट बार बार मेल किसी का भी नहीं पढ़ूंगी। सुदर्शन शाह लिखते हैं, पल्लवी शाह साथ में है, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह, ये सारे लोग मिलकर कहाँ से मेल लिखा है इन्होंने, पद्मा टॉकीज, नेपा नगर, मध्य प्रदेश से। गाना सुनना चाहते हैं तो बस अगला गाने का इंतज़ार करिए। नेक्स्ट जो है सदानंद जी का मेल है, प्रसारक जी को इन्होंने नमस्कार लिखा है। सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर, आरव और अर्पिता डाब की रोड अकोला से हैं, इन्होंने ये मेल लिखा है। ये कहाँ पर है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता और बहुत क्लियर इन्होंने लिखा भी नहीं है। रोजी दी कैस्ट्रो का मेल, गुड आफ्टरनून होस्ट इन्होंने लिखा है, थैंक यू सो मच, गुड आफ्टरनून आपको भी। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन रोजी पर्ल विलिस, ये सब लोग डिकैस्ट्रो हैं और आप हमें किसी भी गीत में इन्होंने लिखा है शामिल कर लीजिए। तो देखिए आपका मेल शामिल हो चुका है और किसका मेल शामिल कर लूँ। बबलेश जी लिखते हैं, प्रसारक महोदय जी नमस्कार, और गाना ये सुनना चाहते हैं और पारसमणि रेडियो श्रोता क्लब और गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से ये मेल है। बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान और डांगरी से बाबूराम जयपाल, तो ये सारे देखिए नाम शामिल हो चुके हैं। इसके बाद शमसुल कमर राही जी का मेल है, लिखते हैं आरजे जी आदाब, शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैज़ान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी, तो मेल शामिल हो चुका। गाना ये कोई भी चाहते हैं हम बजाते, तो बस अभी देखते हैं हम जल्दी से कोई गाना बजा देते हैं आप सभी के लिए। इसके बाद जो अगला मेल है, अशोक कुमार जी आपका भी मेल शामिल कर लेते हैं। अशोक राज लिखते हैं, गुड आफ्टरनून मैम, एड्रेस रायपुर ओडारा मितौली लखीमपुर खीरी से ये मेल आया है और हीना मूवी का ये गाना सुनना चाहते हैं और बहुत सारी लिस्ट इन्होंने वैसे भेज दी है और आगे लिख दिया है अजय राज, बलिस्टर राज, प्रदीप राज, ये नाम जो थे जो मुझे लेने थे और मैंने ले लिए हैं। तो वैसे मैं स्टूडियो की घड़ी जो है वो भी साथ साथ देखती जा रही हूँ, बहुत तेज़ी से बढ़ी, कुछ ही मिनट्स हमारे पास बाकी हैं, तो एक काम करती हूँ जो नेम्स बचे हैं उनको शामिल कर लेती हूँ और आज के प्रोग्राम का आखिरी ट्रैक आप सभी के रेडियो सेट पर भेज देती हूँ, वरना फिर आप कहेंगे देखिए नाम तक नहीं लिया, तो मैं नाम ज़रूर से ले लेती हूँ। विकास जी आपका भी मेल था, फागुराम यादव जी, आर कुमार जी, इसके अलावा राजू मिगलानी जी आपका भी मेल हमारे पास आया था, बहुत बहुत शुक्रिया। रिंकी पिंकी जी आपका भी मेल था, सीताराम कागरा जी का मेल हम नहीं पढ़ पाए हैं, मोहसिन रजा जी आपका भी मेल शायद हमने नहीं पढ़ा है, उसके अलावा भागवत वर्मा जी हैं, राज रेडियो क्लब से भी हमें मेल आए थे, और उसके अलावा वकील अहमद जी, आई थिंक हमने आपका भी मेल नहीं पढ़ा है, इसके अलावा और किसका छूटा है, फैसल हुडा जी का भी मेल हम नहीं शामिल कर पाए हैं, आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट अनिल कुमार जी का भी मेल हमने शायद शामिल नहीं किया है, सीपा बानो जी, आई एम सो सॉरी, आपका भी मेल शामिल नहीं हो पाया। तो ये वो नाम थे जिनके मेल आज हम शामिल नहीं कर पाए हैं, सो इट्स ओके, अगली बार ज़रूर मेरी कोशिश रहेगी कि जो मेल्स आज शामिल नहीं हुए वो अगली बार फटाफट से शामिल हो जाएं। तो चलिए एक काम करते हैं, आज के इस प्रोग्राम का आखिरी ट्रैक आप सभी के रेडियो सेट पर भेजते हैं और ये मिक्स्ड रिक्वेस्ट, मतलब आप में से किसी की रिक्वेस्ट थी इस गाने की, तो ये गाना आ गया आप सभी के रेडियो सेट पर, गाने को एंजॉय करिए और छोटा सा न्यूज ब्रेक लेती हूँ और उसके बाद जल्दी से अगला प्रोग्राम लेकर के वापस आती हूँ। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, आप सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर डॉक्टर हेमंता बिस्वा सरमा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में मोदी ने बताया कि एनडीए सरकार ने राज्य में लगातार तीसरी बार सत्ता संभाली है। उन्होंने कहा कि श्री सरमा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है और राज्य के लिए अग्रणी कार्य किए हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शपथ ग्रहण में शामिल हुए। उन्होंने नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल के नवनियुक्त सदस्यों को उज्ज्वल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी हैं। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार अपना 77वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। इस अवसर पर 13 मई को लखनऊ के शहीद स्मृति भवन में भारतीय ज्ञान परंपरा में पांडुलिपियों का महत्व एवं उपयोगिता विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी और अभिलेख प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में इतिहास, संस्कृति और अभिलेख संरक्षण से जुड़े कई विद्वान अपने विचार साझा करेंगे। राजस्व परिषद के अधीन लेखपाल के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 21 मई को राज्य के 44 जिलों में मुख्य परीक्षा आयोजित करेगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक की तरफ से कल जारी सूचना के अनुसार परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को आवंटित जिले की अग्रिम सूची आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। हमीरपुर में बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने से किसानों की सब्जी की फसलें जलमग्न हो गई हैं, जिसके बाद पीड़ित किसानों ने जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंप कर मुआवजे की मांग की है। मोहदहा बांध के अधिशासी अभियंता राजेश कुमार ने बताया कि मोहदहा बांध के दरवाजों को ठीक करने का कार्य चल रहा है, जिसके लिए बांध के पानी की निकासी की गई है, जिससे नदी का जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आज उर्सला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें 22 डॉक्टर सहित 32 स्वास्थ्यकर्मी अनुपस्थित मिले। जिलाधिकारी ने लापरवाही पर सख्त हिदायत देते हुए अनुपस्थित पाए गए डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मियों का एक दिन का वेतन काटने और मरीजों को किसी भी दिशा में बाहर दवा न लिखे जाने के निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।
1: सात रंग का इंद्रधनुष है,
2: सात सिरों की सरगम है,
3: सात जन्म है सात समंदर,
1: सात हमारा हरदम है,
3: जिंदगी के सतरंगी रंग
2: FM रेनबो के संग।

दोस्तों, लिखा छिपी के इसी ट्रैक के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर देते हैं 100.7 FM रेनबो पर, यानी धड़कन लखनऊ के। 3:07 का वक्त हो चला है और आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम सतरंगी दुनिया लेकर के आपकी दोस्त जरीना फिर से जुड़ चुकी है आप सभी के साथ। भाई, गर्मियां शुरू हो चुकी हैं और बहुत सारे ऐसे स्कूल्स भी हैं जहां पर गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। अब भैया, गर्मियों की छुट्टियां शुरू होती तो ऐसा लगता बच्चे पूरा साल ना बिल्कुल पहाड़ ढकेल कर आए हैं। मतलब छुट्टियां पहले की होती थी बहुत सादगी से बीत जाती थी, कुछ मतलब मम्मी पापा कहीं पढ़ने वढ़ने कुछ भेज देते थे कि कुछ नया सीख लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन अभी क्या होने लगा है ना, अब पेरेंट्स को अपना जन्मसिद्ध अधिकार लगने लगा कि बच्चे ने साल भर मेहनत की है तो अब उसको कहीं हम बड़ी दूर लेकर जाएंगे और घुमा कर लाएंगे। यस, एक्चुअली होता क्या था, पहले भाई घूमने के नाम पर गर्मियों की छुट्टियों में दादी का घर, नानी का घर, मामा के घर, ये सारे घरों में लोग जाया करते थे। लेकिन अब लोगों को लगता है ये उनकी तौहीन है, भैया यहाँ वहाँ नहीं जाएंगे, अब उनको कहीं बढ़िया सी ट्रिप प्लान करनी है। और अभी जो गर्मियों की छुट्टियों का जो ट्रेंड है ना, वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो आज मैंने क्या सोचा ना कि ये जो बढ़िया सा बदला सा ट्रेंड है ना, उसी पर बात करती हूँ कि जब गर्मियों की छुट्टियाँ आती हैं तो जो घूमने का नया ट्रेंड शुरू हो चुका है वो क्या है, कैसे है, क्यों है, कितना सही है, कितना गलत है, सारी बातें करूँगी। बट फिलहाल जो अगला ट्रैक है वो आपके रेडियो सेट पर भेजूँगी, तो बस बातों के लिए आप रेडी हो जाइए। अगर कहीं आप भी छुट्टी प्लान कर रहे हैं ना, तो बस मेरा ये प्रोग्राम आप ही के लिए है। फिलहाल इस गाने को एंजॉय करिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow ki.
1: जी हाँ दोस्तों, और इस पर प्रोग्राम चल रहा है सतरंगी दुनिया, आपकी दो जरीना है इस वक्त आप सभी के साथ, और हम बात कर रहे थे गर्मियों की छुट्टियों और घूमने का नया ट्रेंड, नया फैशन और नया एक्सप्लोरेशन. यस भाई, एक ज़माना हुआ करता था जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो मतलब क्या होता था कि नानी के घर चले जाते थे, आम खाने चले जाते थे हम लोग. मतलब कोई रिलेटिव है जिनके बाग वाग हैं तो हम लोग को लगता था चलो जाके आम वाम खाते हैं, दोस्तों के साथ खेलते घूमते थे, मस्ती करना, भैया छत पर खेलना, मैदान में जाके खेलना, कोई नई चीज़ सीखना. मतलब उस वक्त क्या हुआ करता था, एक समय था ना कि बस कोई गेम सीख लिया हमने, या बहुत कुछ हुआ तो कोई हुनर सीख लिया, ये सारी चीज़ें होती थी. लेकिन अब ज़माना बिल्कुल बदल चुका है. आज की जनरेशन जो है वो समर वेकेशन सिर्फ आराम करने या समय बिताने के लिए नहीं, बल्कि नई जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए, नई मेमोरीज बनाने के लिए इसको बिल्कुल एक बढ़िया सा, मतलब कहते ना, आइटम बना चुकी है. आजकल लोगों में क्या हो गया, बाहर घूमने का ट्रेंड भी खूब तेज़ी से बढ़ रहा है, कोई पहाड़ों पर जाना चाहता है, कोई मतलब लोगों को ये भी लगने लगा कि अब भैया छुट्टियों में सिर्फ पहाड़ जाएंगे तो ही सुकून मिलेगा, है ना. ऐसे भी मतलब बहुत सारे लोग घूम रहे हैं जिनको लगता है कि बस छुट्टियां हुई नहीं कि बस पहाड़ों पे भागो, और यहां से वहां जा करके वहां सारी उनकी शांति भंग कर रहे हैं लोग. इतने इतने लोग, इतना ट्रैफिक, इतनी कूड़ा कचरा फैलाना, मतलब मैंने बहुत बार ऐसे वीडियोस देखे हैं कि लोग खूबसूरत शांत पहाड़ों पर जाते हैं और वहां जा करके अपने हुड़दंग से अशांति मचा कर वापस चले आते हैं. खैर लोग कर रहे हैं, लोगों को लगता है सनसेट इन्जॉय करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. तो ओवरऑल अब वो ट्रेंड जो था ना पहले कि किसी के रिश्तेदार के घर चले जाएं, कहीं कुछ सीख लें, वो सब बिल्कुल भी नहीं बचा. गर्मियों की छुट्टियों का जो मतलब हो चुका है वो ये हो गया है कि कहीं तो जाना है, कोई ना कोई ट्रिप तो करनी है, उसके लिए कहीं से भी पैसा जुटाओ, तोड़ो मरोड़ो, जो मर्जी आए करो, है ना. तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इनके लिए और क्या कुछ हम कर सकते हैं, क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे. बट फिलहाल इस तेरी ओर को आपकी ओर भेज रही हूँ, इंजॉय करिए सिंग इस किंग के इस तेरी ओर को, और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की. और राहत फतेह अली खां की आवाज़ भी कम राहत देने वाली नहीं है जो आपके रेडियो सेट पर इस वक्त है.

0: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।
1: करियर पर है ध्यान,
2: स्पोर्ट्स में करना है ना,
1: पॉजिटिव है फैशन,
2: क्रिएटिव है पैशन,
1: टेक्नोलॉजी में रुचि,
2: बने पर्सनालिटी ऊंची,
1: फॉलो करें ट्रेंड्स,
2: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स
1: ओनली ऑन यूथ वेव।
2: यूथ की बात यूथ के साथ
1: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर,
2: धड़कन लखनऊ की।
3: सुनो ना, एक बात पूछूं?
4: हाँ हाँ पूछो।
3: शादी से पहले तो तुम कहते थे शादी के बाद ढेर सारा प्यार करूंगा, लेकिन अब क्या हुआ?
4: सच बताऊं तुम्हें?
3: हाँ बताओ।
4: तब मुझे लगता नहीं था कि हमारी शादी हो ही जाएगी। हाँ
3: क्या?
5: इंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन रहेगा संग संग।
6: मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए
7: जब छाएगा 100.7 FM रेनबो का सतरंगी रंग।
8: कोई

जी हाँ दोस्तों, अरिजीत की आवाज़ में प्यारा सा गाना था फ्रॉम द फिल्म धुरंधर, आप सभी की रेडियो सेट पर। और इसी के साथ 3:31 का वक्त हो चला है, प्रोग्राम चल रहा है सतरंगी दुनिया। और आपको सभी को बता दूं कि इस छोटी सी दुनिया में ना बहुत सारी चीज़ें हुआ करती हर रोज़ हर पल और हर दिन, जिसमें जैसे कि हम आपसे बात कर रहे हैं कि गर्मियों की छुट्टियां और ये जो घूमने का ट्रेंड है वो अचानक से बिल्कुल बदल गया है, एकदम चेंज हो चुका है। खैर, इसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी आई, जैसे मतलब अब ट्रैवल सिर्फ घूमने तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि होता क्या है कि लोगों की लाइफस्टाइल का ये हिस्सा बन चुका है। अब लोग सिर्फ फ़ोटो लेने नहीं जाते, बल्कि हर सफ़र में नई यादें नए एक्सपीरियंसेस को अपनी लाइफ में ज़रूर जोड़ना चाहते हैं। और सही भी है भाई, भाग दौड़ भरी इतनी बड़ी सी जो ज़िंदगी है ना, उसमें वेकेशन लोगों को एक मेंटल पीस देता है। और बहुत जो आप कहीं और जाते हैं ना, वहाँ का फील, वहाँ की सुबह की ठंडी हवा, वहाँ पहाड़ों की ठंड अगर पहाड़ पर गए हैं तो, या खूबसूरत मौसम जो होता है वो ऑब्वियसली आप सभी को कहीं ना कहीं ताज़ा करता है और हील भी कर देता है। तो अब तक अगर आपने कहीं का प्लान नहीं बनाया है तो बस बना लीजिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है ना, कि जो अब का समय ना उसमें घूमना फिरना सिर्फ अमीरों तक बिल्कुल सीमित नहीं रह गया। अभी क्या हो गया है कि बहुत सारी बजट ट्रिप्स होती हैं, वीकेंड्स बहुत बार प्लान होते हैं, और ये सभी अपने अपने पॉकेट के हिसाब से, अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से आज के समय में कर रहे हैं, है ना। तो पहले हम लोग सुनते थे बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम जो अमीर शमीर लोग होते हैं वही जाते थे, लेकिन अब यूजली सभी लोग अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी चीज़ों को प्लान करते हैं। तो अगर अभी तक आपने भी कुछ नहीं प्लान किया है तो थोड़ा मोड़ा एक दो दिन का वेकेशन ज़रूर इन छुट्टियों में ज़रूर प्लान करिएगा। भाई ये देखिए, 3:33 का वक्त हो चला है, और ये जो वक्त तेज़ी से बढ़ रहा है ना, वो ये बता रहा है कि मेरे यहाँ इस प्रोग्राम से जाने का वक्त भी करीब आ रहा है, क्योंकि अगली जो एंकर है वो भी यहाँ पर आ चुकी हैं। बैठकर मुस्कुरा रही हैं, बताऊँगी बिल्कुल भी नहीं कि वो कौन है, लेकिन बस थोड़ा सा इंतज़ार करिए, पता भी चल जाएगा। बट फिलहाल जो अगला गाना है ना, वो ज़रूर आप सभी के रेडियो सेट पर भेजूंगी। यस बॉस, यस, इसी फिल्म का ये गाना है। एंजॉय करिए इस गाने को और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हिंग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हिंग।

जी हाँ भाई, आज के प्रोग्राम सतरंगी दुनिया में भी हम कुछ ऐसी ही बात कर रहे हैं कि भाई जग घूमिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी खूबसूरत जगह आपको मिल जाती है जो शायद आपने कभी अपने सपने में भी नहीं सोची होती हैं। भाई गर्मियों की छुट्टियों की जब हम बात करते हैं तो ये सिर्फ हमें आराम नहीं देती बल्कि परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका भी देती है। नए लोगों से मिलना, नई जगहों को समझना और नई चीज़ें सीखना इंसान को हमेशा बेहतर ही बनाता है। तो इसीलिए अगर इस गर्मी आपको मौका मिलता है तो थोड़ा समय खुद के लिए मैं ज़रूर कहूँगी आप सभी निकाल लीजिए, नई जगहों पर जाइए, नई यादें बनाइए और ज़िंदगी को खुलकर जीने की कोशिश भी करिए, क्योंकि ज़िंदगी ना सिर्फ काम करने के लिए नहीं होती, कभी कभी खूबसूरत सफ़र जीने के लिए भी जिंदगी होती है और इस बात को समझना जरूरी होता है। और आपको पता है आजकल तो भैया हम वहां तक देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी कलेक्शन कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि छुट्टियां आ रही हैं साल भर के बाद तो उनका यही फाइनल डेस्टिनेशन है जहां उनको जाना होता है। तो बहुत मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है जिनको लगता है कि अब ना ये पैसे इधर उधर खर्च करने के लिए नहीं है, ये बचाने के लिए होते हैं और कहीं बढ़िया जगह पर जाने के लिए भी होते हैं। अच्छा सबसे बड़ी बात होती है जब हम घर बैठ के सोच रहे होते हैं ना तो हम लोग को लगता है यार जाना बड़ा मुश्किल काम होगा, वहाँ जाएंगे कैसे, क्या होगा क्या होगा, मतलब अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, बुकिंग करनी पड़ेगी। बट सीरियसली अगर एक बार आप प्लान करके देखिए और घर से बाहर कदम निकालिए उसके बाद तो बस रास्ते ही रास्ते हैं और वो रास्ते बड़े खूबसूरत हैं, वहाँ जो हवाएँ चल रही ना बेहद बहुत प्यारी सी। तो सीरियसली माइंड को पूरा रिलैक्सेशन देता है जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं कहीं दूसरी जगह पर जाते हैं। तो कोशिश करिए आप भी और प्लान करिए, मैं ज़रूर कहूँगी। और इसी के साथ जो अगला गाना है वो भी मैं बजा देती हूँ, भेजती हूँ इसको आपके रेडियो सेट पर और गाने

में ना सीरियसली बहुत ही खूबसूरत इसका भी पिक्चराइजेशन है. फिल्म सिम्बा का ये ट्रैक है और गाना सुनते ही आप समझ जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत वादियाँ, बहुत ही खूबसूरत मौसम, बहुत ही खूबसूरत रंग और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत आवाज़. इंजॉय करिए इस गाने को.

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
3: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर MK बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। MK बंधानी हींग।
4: सपने बड़े हैं,
5: स्टाइल अलग है,
4: तो ये शो है आपके लिए।
5: करियर हो या फैशन ट्रेंड्स,
4: स्पोर्ट्स हो या लाइफ को बेहतर बनाने वाले स्मार्ट टिप्स,
5: सब कुछ एक ही जगह, तो सुनना मत भूलिए यूथ वेव हर शाम 4 बजे
4: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
3: जी हाँ दोस्तों, 3:51 और ये देखिए कुछ ही सेकंड्स में 52 भी हो चुके हैं। प्रोग्राम चल रहा है सतरंगी दुनिया और यहाँ पर बहुत सारी हम लोगों ने रंग बिरंगी बातें कर ली हैं। भाई इतनी बातें सुनने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि अगर अब तक आपने कोई प्लान नहीं किया तो ज़रूर आप छुट्टियों में कहीं ना कहीं ज़रूर प्लान कर लीजिएगा। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर आती है कि ज़रूरी नहीं कि आप बहुत दूर कहीं जाएं तभी आपको लगेगा कि भाई छुट्टियों का एहसास हो रहा है। आप आसपास भी कहीं जाते हैं अगर कुछ ही दिनों के लिए तो भी वो चीज़ बहुत आपको सुकून देती है। ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही होता है कि आप अपनी जगह से कुछ टाइम के लिए हटें, वहाँ से हटें तो माहौल चेंज होता है, लोग बदलते हैं, एटमॉस्फेयर बदलता है, तो वो आपके माइंड को ज़रूर रिलैक्स करता है। भाई काम तो ज़िंदगी भर चलता रहता है, ज़िंदगी भी ज़िंदगी भर चलती रहती है और आपसी जो आप मतलब लोग हैं आपके साथ, कभी कभार बहुत बार ऐसा भी होता है उनकी वजह से भी लोग नहीं जाते, लोगों को लगता अरे यार उनको छोड़ के कैसे जाएं, इनके को साथ ले जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, सारी चीज़ें अरेंज हो जाती हैं। तो ट्रस्ट मी, आप भी अगर आप नहीं प्लान अभी तक कर पाए हैं तो ज़रूर कहीं ना कहीं जाने का प्लान कर लीजिए, क्योंकि ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। भाई फिजिकल हेल्थ तो हर कोई ध्यान देता है ना, मेंटल हेल्थ जो है वो शायद फिजिकल हेल्थ से भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, तो उसको दुरुस्त रखने के लिए, बढ़िया रखने के लिए ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में हमेशा करते रहने चाहिए। तो चलिए अब इसी बात के साथ, ये स्टूडियो की क्लॉक का इशारा भी हो रहा है कि भाई वक्त ख़त्म हो रहा है प्रोग्राम सतरंगी दुनिया का भी, तो आपकी दोस्त जरीना को दीजिए इस प्रोग्राम से इजाज़त, और इजाज़त लेती हूँ आज के पूरे स्लॉट से भी क्योंकि अगली एंकर यहाँ पर आ चुकी हैं। बताऊँगी फिर नहीं कि वो कौन है, आप उनकी आवाज़ सुनिएगा और ख़ुद ही समझ जाइएगा वो कौन है। तो फिलहाल आज के प्रोग्राम का आखिरी ट्रैक आप सभी के रेडियो सेट पर, एंजॉय करिए इसको और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: सपने बड़े हैं,
1: स्टाइल अलग है,
0: तो ये शो है आपके लिए।
1: करियर हो या फैशन ट्रेंड्स,
0: स्पोर्ट्स हो या लाइफ को बेहतर बनाने वाले स्मार्ट टिप्स,
1: सब कुछ एक ही जगह। तो सुनना मत भूलिए यूथ वेव हर शाम 4 बजे
0: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

नमस्कार, शाम के बजे हैं 4। प्रस्तुत है मुख्य समाचार। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द करते हुए दोबारा परीक्षा कराने का फैसला किया है। एजेंसी ने परीक्षा में कथित अनियमितताओं और जांच एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर यह निर्णय लिया है। साथ ही केंद्र सरकार ने पूरे मामले की व्यापक जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दी है। नई परीक्षा तिथि और दोबारा जारी होने वाले एडमिट कार्ड का कार्यक्रम जल्द ही आधिकारिक माध्यमों से घोषित किया जाएगा। एनटीए ने अभ्यर्थियों और अभिभावकों से केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने और सोशल मीडिया पर प्रसारित अपुष्ट खबरों से बचने की अपील की है। एनटीए ने यह भी स्पष्ट किया कि मई 2026 चक्र में पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थियों का डेटा, उम्मीदवार स्थिति और चुने गए परीक्षा केंद्र आगामी पुनर्परीक्षा के लिए मान्य रहेंगे। इसके लिए दोबारा पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह की उपस्थिति में आज प्रदेश मुख्यालय पर संगठनात्मक बैठक चल रही है। इस बैठक में प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष व जिला प्रभारी शामिल हैं। बैठक में संगठनात्मक विषयों पर चर्चा होगी। इसके अलावा बूथ कमेटियों के गठन व प्रशिक्षण अभियान के बारे में पूछताछ होगी। प्रदेश की परिषदीय और कस्तूरबा विद्यालयों में कल से 19 मई तक भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस शिविर में बच्चों को पढ़ाई के साथ भारतीय भाषाओं और सांकेतिक संवाद की भी सीख दी जाएगी। शिविर के दौरान बच्चे अपनी मातृभाषा के साथ दूसरी भारतीय भाषाओं से परिचित होंगे, संवाद कौशल विकसित करेंगे और पहली बार इंडियन साइन लैंग्वेज की बुनियादी जानकारी भी प्राप्त करेंगे, ताकि समाज में संवेदनशीलता और समावेश की भावना को बढ़ावा मिल सके। संस्कृति विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 6 जनपदों में वृहद परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इसके अंतर्गत सार्वजनिक रामलीला मैदान स्थलों का विकास और विस्तार, जीर्णोद्वार एवं

सौंदर्यीकरण कार्य आदि कराया जाएगा। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि जनपद शाहजहांपुर के अंतर्गत टाउन एरिया कोर्ट में रामलीला मैदान का विकास विस्तार जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण के कार्य कराए जाएंगे। इसी प्रकार गोरखपुर के नगर क्षेत्र बड़हलगंज में रामलीला मैदान का विकास विस्तार जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण आदि कार्य कराया जाएगा। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। अगला बुलेटिन शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबो घंटे तरन्नुम के साथ।

जी हाँ, 4:03 हो चुके हैं और 4 की चाय के साथ हाजिर है तरन्नुम लेकर प्रोग्राम यूथ वेव। बहुत सारी बातें हैं आज आपके करियर से जुड़ी, आपको जॉब दिलाने से जुड़ी, ये सारी बातें शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले लाल पीली अखियां आप तक।

दोस्तों ट्यूसडे है यानी मंगलवार और आज के दिन इस प्रोग्राम का सेगमेंट होता है कि आपके करियर के लिए कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहाँ है, कब है, लास्ट डेट क्या है, कैसे अप्लाई करें वगैरह वगैरह। तो इसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक चीज़ आपको और बता दें कि अब से कुछ ही देर में हमारे साथ वर्चुअली तौर पर जुड़ेंगी प्रज्ञा त्रिपाठी जी, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर लखनऊ, और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन उनके पास है। जॉब आपको मिल सकती है अगर आप ITI डिप्लोमा होल्डर हैं, अगर आपने 12th पास किया, ये सारी जानकारी वो देंगी। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे रोजगार समाचार, और एक चीज़ और आपको बता दें कि कौन कौन सी वैकेंसीज कहाँ कहाँ निकली है, ये भी हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और ट्रैक है जो बिल्कुल बेखरार है आप तक पहुँचने के लिए, तो सुने।

0: वेल, आपको टाइम बता दें 4:11 हो चुके हैं. तरन्नुम है आपके साथ प्रोग्राम यूथ वेव लेकर. और कौशल्या लर्न एंड अर्न क्या है ये और इसमें क्या हो सकता है, कैसे वैकेंसी है, क्या सब कुछ है, इसको जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है लाइन पर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर प्रज्ञा त्रिपाठी जी. मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका.
1: जी धन्यवाद.
0: जी मैम सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए.
1: जी मैं प्रज्ञा त्रिपाठी जिला रोजगार अधिकारी लखनऊ बोल रही हूँ.
0: जी मैम.
1: और ये मैं आज आपको टाटा प्लांट पुणे के लिए बच्चों के लिए वैकेंसी आई हुई है.

0: जी
1: जिसका इंटरव्यू 13, 14, 15 और 16 मई को जो ये मटियारी चौक पॉलिटेक्निक के आगे देवा रोड पर है वहां पर इंटरव्यू होगा, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगी और अपने अपने रोजगार संगम पोर्टल के बारे में भी।
0: जी बिल्कुल मैम, बताइए।
1: हम ये मेल जो 13, 14, 15 और 16 को प्लेसमेंट ड्राइव है, इसमें वो बच्चे जिनके जो आईटीआई पास हैं या 12th पास हैं
0: अच्छा
1: वो और उनकी एज 18 से 23 साल के बीच में है, ये वहां पर जा करके और इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यू के बाद चयनित होने के बाद इनको जो वेतन मिलेगा वो वेतन लगभग 19,000 होगा
0: जी,
1: और 2 साल का अप्रेंटिसशिप होगा, उसके बाद वहीं पर इनकी परमानेंट जॉब मतलब एक तरह से इनको वहां पर ही जॉब मिल जाएगी। तो मैं बच्चों से कहना चाहूंगी कि जो बल्कि हमारा रोजगार संगम पोर्टल है इस पोर्टल को देख ले, rozgarsangam.up.gov.in, इस पर इस जो वैकेंसी से संबंधित संपूर्ण सूचना दी गई है,
0: ओके
1: तो इसको देख करके अप्लाई कर दे और इनका जो रजिस्ट्रेशन का स्कैन है उस पर स्कैन करके और फिर 8 बजे वहां पर इन 4 दिनों में पहुंचे और इंटरव्यू दे। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और
0: जी।
1: बच्चे अच्छा करियर बना सकते हैं।
0: तो मैम, क्या
1: तो
0: सिर्फ
1: ये
0: इंटरव्यू के बिहाफ पे ही जॉब है या फिर रिटर्न में भी कुछ?
1: नहीं, रिटर्न भी होगा और इंटरव्यू भी होगा इसमें, उसके बाद इनका मेडिकल भी होगा। जी, पहले इनकी मेरिट लिस्ट बनेगी, इनके जो 12th के नंबर्स होंगे उसके बिहाफ पे उनमें से बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, फिर इनका लिखित टेस्ट होगा, लिखित टेस्ट के बाद इनका इंटरव्यू होगा, उसमें जो सेलेक्ट होंगे उनका मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद इनको पुणे प्लांट पे भेजा जाएगा।
0: जी, तो मैम इसमें कितनी टोटल वैकेंसीज हैं?
1: इसमें 500 से ऊपर वैकेंसी है इनकी।
0: अच्छा, 500 से ऊपर
1: जी
0: वैकेंसीज हैं।
1: जी
0: और ये जो नैप है यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, इसके तहत है ये पोस्ट?
1: जी जी जी इसके तहत है ये और बच्चे इसमें वहां पर जा करके और इंटरव्यू यही लखनऊ में हो। सबसे अच्छी बात ये है कि इनको वो इंटरव्यू देने के लिए पुणे नहीं जाना पड़ेगा,
0: बिल्कुल
1: ये इंटरव्यू लखनऊ में ही हो रहा है और बच्चे इसमें चयनित होंगे तो फिर उसके बाद वो पुणे अपने जा सकते हैं आराम
0: मैम।
1: से।
0: इसकी जो मेल आईडी है आपने जो बताया, rozgarsangam.up.gov.in,
1: जी rozgarsangam.up.gov.in।
0: मैम, जो हमारे यंग लिसनर्स हैं जो इस वक्त प्रोग्राम सुन रहे हैं और आप इतनी बड़ी अधिकारी हैं और खासकर आप एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हैं, क्या कहना चाहेंगे उन यूथ के लिए जो अपना?
1: जी, मैं एक सूचना पहले आपको और देना
0: जी
1: चाहूंगी
0: बिल्कुल
1: मैडम
0: जी।
1: कि ये हमारे सेवा योजन विभाग की तरफ से बच्चों के जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं जैसे जर्मनी हो गया, जापान हो गया, इसराइल में जो भाषा है उसके लिए लर्निंग वो क्लासेस चलाई जा रही हैं बैचेस बना के, तो अभी रोजगार संगम पर वो भी फ्लैश हो रहा है और जो बच्चे नर्सिंग या अदर जॉब्स करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ से ओवरसीज और फॉरेन कंट्रीज में भेजे जा रहे हैं बच्चे, तो बच्चे निशुल्क या कुछ मतलब जो प्राइवेट संस्थान है वो इन लर्निंग क्लासेस के बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं और हमारे यहाँ बहुत ही कम मानदेय पे ये बच्चों को सिखाया जा रहा है, तो बच्चे इसमें आकर के लर्निंग जर्मनी जापान और अन्य विभिन्न भाषाओं की ट्रेनिंग ले सकते हैं, उसके बाद हम उनको फॉरेन में प्लेसमेंट भी देते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से है।
0: अच्छा,
1: तो
0: तो
1: बच्चे
0: जी मैम, ये लॉन्ग टर्म कोर्सेज हैं जो लैंग्वेजेस के हैं या फिर शॉर्ट टर्म?
1: नहीं, ये 2 साल के लैंग्वेज कोर्सेज हैं बच्चों
0: अच्छा
1: के लिए।
0: दो साल के लैंग्वेज कोर्सेज हैं ये।
1: जी,
0: और क्या कहना चाहेंगे मैम जो यूथ इस वक्त सुन रहे हैं?
1: जो जो यूथ इस समय सुन रहा है, मैं उससे सबसे पहले यही कहना चाहूंगी कि इस समय पे जॉब मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो आप लोग इसलिए हाथ बांध कर ना बैठे रहे कि आपको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, ये मत सोचते रहे, जो अभी मिल रही है उसको अपनाइए। जब एक जॉब आप करेंगे तो आगे और भी जॉब्स मिलेंगी, एक सीढ़ी चढ़ेंगे तो शिखर पर भी पहुंचेंगे, तो जो भी कार्य कर रहे हैं उसकी शुरुआत करिए, जो शुरुआत करेंगे तो अंत भी होगा, और सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगी।
0: बहुत
1: धन्यवाद।
0: बहुत बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मैम इतना कीमती वक्त हमें दिया, थैंक यू सो मच।
1: धन्यवाद।
0: ओके ओके, तो 4:16 हो चुके हैं और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन, इतनी अच्छी जानकारी, इतना अच्छा जो एक मैसेज था मैम ने दिया और बहुत ही बढ़िया सा जो ट्रैक है वो पहुंच रहा है आप तक, रीस्टार्ट फ्रॉम द मूवी 12th फेल।
2: पति जला रात भगा, पासा पलट दे बोर्ड उलट दे, अरे उठ बाजी ले अपने हाथ।

आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इन सभी पदों के लिए एक एक पद की रिक्ति उपलब्ध है। पद हैं रीडर वाक रोग विशेषज्ञ समूह ए, पुनर्वास अधिकारी समूह ए, व्याख्याता शिक्षा समूह ए, व्याख्याता श्रवण वाक रोग विज्ञान समूह ए, व्यावसायिक परामर्शदाता समूह बी और समाज कल्याण अधिकारी समूह बी, लेखाकार समूह बी, विस्तार सेवा सहायक समूह बी, विस्तार सेवा सहायक समाज कार्य समूह बी, कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रुप बी, तकनीकी सहायक ऑडियो विजुअल समूह बी, मनोवैज्ञानिक समूह बी, कार्यालय अधीक्षक सह लेखाकार समूह बी और डेटा एंट्री ऑपरेटर समूह बी। इनमें व्यावसायिक परामर्शदाता समूह बी और समाज कल्याण अधिकारी समूह बी के दो दो पद उपलब्ध हैं। अहमदाबाद और छतरपुर स्थित सीआरसी में जिन पदों के लिए रिक्तियां उपलब्ध हैं वे हैं निदेशक सलाहकार एक पद, सहायक प्रोफेसर दो पद, विशेष शिक्षा में व्याख्याता दो पद। इन पदों के लिए पात्रता संबंधी विवरण जैसे आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और अन्य आवश्यकताएं इस वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं। वेबसाइट का पता है डब्ल्यू

0: www.ayjinishd.nic.in. कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं. उपनिदेशक कृषि एक पद, उपनिदेशक सिविल मैकेनिकल एक पद, प्रधान निजी सचिव दो पद, लेखाधिकारी एक पद, उच्च श्रेणी लिपिक एक पद तथा अवर श्रेणी लिपिक एक पद. पात्रता शर्तों आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए देखिए जल शक्ति मंत्रालय की वेबसाइट jalshakti.dowr.gov.in तथा केंद्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर भी ये तमाम जानकारी विस्तार से उपलब्ध है, जिसका पता है www.cwc.gov.in. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर में इन पदों की कुल 83 उपलब्धियां मौजूद हैं और इनके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं. रिक्तियां विभाग के अनुसार तय की जाएंगी. विभागों के नाम हैं एनेस्थीसिया, बायोकेमिस्ट्री, कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, डर्मेटोलॉजी, ईएनटी, फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूरोनेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स, पैथोलॉजी, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, फिजियोलॉजी, साइकेट्री, पल्मोनरी मेडिसिन, रेडियोलॉजी, रेडियोथेरेपी, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन और ब्लड बैंक, ट्रॉमा एवं सर्जरी मेडिसिन तथा यूरोलॉजी. आवेदन पत्र, विभागवार सीटों की संख्या, आरक्षण नियमों और शर्तों आदि के विस्तृत विवरण के लिए देखिए वेबसाइट www.aimsgorakhpur.edu.in. इन भर्तियों के बारे में कोई भी नई सूचना इसी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी. आप एक बार फिर वेबसाइट का पता नोट कर सकते हैं www.aimsgorakhpur.edu.in. आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं. आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही. कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे. तब तक के लिए नमस्कार.
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
1: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
0: ओनली 100.7 FM रेनबो।
1: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
2: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधारी हिंग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधारी हिंग।

4:34 हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है यूथ वेव तरन में आपके साथ। अगर आप चाहते हैं मुंह मीठा कराना और जॉब पाना, और कहां कहां वैकेंसी निकली है, पोस्ट कितनी है, कब कब इसकी लास्ट डेट है, ये सारी जानकारी तो भाई देने के लिए हम यहां पर बिल्कुल तैयार हैं। आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड में भर्तियाँ निकली हैं, पोस्ट निकली हैं, वैकेंसीज हैं, और ये जो भर्तियाँ हैं, रिक्तियाँ हैं, ये हैं असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट पर, और इसकी लास्ट डेट है 14 जून 2026। एज लिमिट आपको बता दें कि आप कम से कम 18 साल के हों, और मैक्सिमम आपकी जो एज है वो होना चाहिए 30 साल। अप्लाई कहाँ करना है आपको, कहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिल जाएगी, तो इसके लिए आप विज़िट कर सकते हैं इसकी जो वेबसाइट है rrbapply.gov.in। इसके अलावा एक और जो रिक्तियाँ आई हैं, जो पोस्ट आई हैं, वो भी आपको बता दें। जो जॉब अलर्ट है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और वो है भारतीय वन्य जीव संस्थान में 20 पोस्ट निकाली हैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट एसोसिएट। इसके अलावा भी कई पोस्ट हैं जो खाली हैं। लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की है 22 मई 2026, और सैलरी की अगर हम बात करें तो वो है 30,000 रुपये पर मंथ, और 1,20,000 रुपये तक भी हो सकता है। ये पोस्ट पे डिपेंड करेगा। यहाँ आपको कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ विजिट करनी है, वेबसाइट है इसकी www.gov.in। तो भाई ये दो पोस्ट हैं जो हमने आप तक पहुंचाई, और तीसरी चौथी पांचवी पोस्ट भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले पहुंचाना है हमें एक ट्रैक आप तक।

जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हिंग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हिंग।

जी चार चार चार तरनों में आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है यूथ वेव और सेल्फी ले ले रे बड़ा मंगल है और सब तरफ भंडारे आयोजित किए जा रहे हैं और ऐसे में सेल्फी तो बनती ही है और साथ ही साथ जो भी कह सकते हैं ना कि आपसे अच्छी चीज़ हो सकती है वो आप बिल्कुल इसमें हाथ बटाइए। फिलहाल अगर हम बात करें कि अक्सर ये होता है कि कहीं जॉब हम कर रहे हैं, मतलब कहीं पर इंटरव्यू हो रहा है या कहीं पर हम जॉब कर रहे हैं, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम लोग जॉब शुरू कर देते हैं, नई नई जिनकी जॉब लगती है, थोड़ा सा यूज्ड टू हो जाते हैं कि भाई एक महीना हो गया, दो महीना हो गया है और बहुत ही ईजिली हम इस चीज़ को टैकल कर लेंगे। लेकिन अक्सर क्या होता है कि अचानक कोई अंदर आ गया, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर आ गया, कोई एग्जीक्यूटिव आ गया और आपसे आके उसने अचानक से कोई सवाल पूछ लिया और आपको उस बारे में पता नहीं है, लेकिन आप ये शो करने की कोशिश करते हैं कि नहीं मुझे तो सब पता है और आप उल्टा सीधा जवाब देना शुरू कर देते हैं क्योंकि आप घबरा जाते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि जब आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं शो होता है तो इंसान सामने वाला समझ जाता है कि भाई इसको जो जानकारी है वो अधूरी जानकारी है। इसलिए कहा जाता है कि जो अधूरा ज्ञान होता है ना वो बहुत ख़तरनाक होता है, बकौल उसके कि अगर आपके पास ज्ञान ही ना हो। इसलिए अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता है और अचानक कोई प्रबंधक है या एग्जीक्यूटिव है आपसे अचानक सवाल पूछते हैं तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अक्सर इसलिए होता है ऑफिसेज में कि काम की पोजीशन कैसी है, प्रोजेक्ट की जानकारी क्या चल रही है, आपको कितना पता है। तो जवाब देने से पहले हमेशा 1 से 2 सेकंड रुक कर सोचिए ताकि आप सही और बिल्कुल साफ आंसर कर सकें। पहले जो उन्होंने क्वेश्चन किया उसको ध्यान से सुने, पूरी तरह से समझें। अगर सवाल साफ ना हो तो बहुत ही नरमी से उससे पूछ लीजिए कि भाई ऐसे नहीं तो क्या इसको ऐसे पूछ सकते हैं या इसको हम ऐसे क्लेरिफाई कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो समझदारी है और जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ज़्यादा बेहतर दिखती है। नंबर दो, कोई भी अगर आपसे सवाल सीनियर पूछ रहा है तो सिर्फ वही जानकारी दीजिए जो आपको बिल्कुल सही तरीके से पता हो। कई लोग क्या करते हैं ना कि इम्प्रेस करने के लिए जल्दी जल्दी जवाब देते हैं, जल्दी जल्दी बोलने लगते हैं, लेकिन अगर वो जानकारी गलत निकली तो जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो डगमगा जाता है और अगर वो गलती से गलत जवाब हो गया तो फिर ये होता है कि सामने वाले पे जो असर है ना वो गलत पड़ता है। इसलिए अगर बहुत प्रेशर आ रहा है तो पीसफुल रहें, बिल्कुल शांत रहें।

और जब भी आपसे प्रबंधक सवाल पूछे तो सिर्फ आपके जो अल्फाज हैं, जो शब्द हैं, वो ही नहीं बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपके अंदर जो आत्मविश्वास है वो कैसा दिख रहा है, आपके बोलने का ढंग कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंखों में देखकर साफ और बिल्कुल शांत आवाज़ में जवाब देने से काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। और अगर आप घबराहट में या डर दिखाने में या फिर आप घबरा जाते हैं तो जो आपका आत्मविश्वास है वो बहुत कम नज़र आता है। जवाब हमेशा ऐसा दें जो बिल्कुल छोटा हो, साफ हो और एकदम बैलेंस्ड बिल्कुल जवाब हो, और लंबे उलझे हुए जवाब देने के बजाय सीधे मुद्दे पर बात करें। पहले प्रॉब्लम पूछें, फिर उसका जो रीज़न है, फिर उसका जो कंक्लूजन क्या है, अंत में जो समाधान जिसे कहते हैं ना, वो आपकी बात आसानी से समझ जाएगा। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि अगर ऑफिस में अचानक से कोई सवाल पूछ ले तो आपको क्या करना है। और जॉब के बारे में तो हम आपको डिटेल में जानकारी दे ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारी कोशिश ये भी रहती है कि हम आप तक ऐसे ऐसे सॉन्ग्स पहुंचाएं कि अगर आपको ज़रा सा ऑफिस में अगर आप हैं और आप लो फील कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि कुछ नया चाहिए, कुछ एकदम समथिंग डिफरेंट, समथिंग ऐसा जो आपको थोड़ा सा शेक कर दे, कहते हैं ना कि एक सुस्ती सी आती है, मौसम ही कुछ ऐसा है, तो चलिए एक शेक करने के लिए, अपने आप को हिलाने डुलाने के लिए एक ट्रैक पहुंचा दिया हमने आप

जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।

नमस्कार, शाम के 5 बजे आप सुनिए मुख्य समाचार। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2025-26 में 1,98,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है। ये लगातार चौथा वर्ष है जब बैंक मुनाफे में रहे। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये प्रदर्शन तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देशभर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति न्यायालयों में अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर करेगी। समिति में न्यायमूर्ति अरविंद कुमार के अलावा कलकत्ता, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय तथा बॉम्बे उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्ति दिबांग सु बसाक, अश्विनी कुमार मिश्रा और सोमशेखर सुंदरेशन शामिल होंगे। मथुरा के वृंदावन में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील जे सिंह ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से देश और व्यापारी आगे बढ़ रहा है। आगरा के थाना कमला नगर क्षेत्र में आज यमुना नदी में नहाने गए 6 बच्चे अचानक गहरे पानी में चले जाने से डूब गए। हादसे की सूचना मिलते ही थाना कमला नगर पुलिस मौके पर पहुंची और पीएसी की रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। पुलिस गोताखोरों और स्थानीय तैराकों की मदद से बच्चों को यमुना से बाहर निकाल लिया गया। सभी को गंभीर हालत में तत्काल एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उपचार के दौरान 4 बच्चों की मौत हो गई। लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल ने नगर निगम में ईंधन के अनावश्यक खपत को नियंत्रित करने एवं संसाधनों के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नगर आयुक्त गौरव कुमार को पत्र लिखकर आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। महापौर ने नगर निगम में ईंधन की बचत को प्राथमिकता देते हुए निर्देशित किया है कि जिन अधिकारियों और अभियंताओं के पास वर्तमान में नगर निगम से 2-2 वाहन आवंटित या संलग्न है, उनसे 1 वाहन तत्काल हटाया जाए और केवल 1 ही वाहन उपलब्ध कराया जाए। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन होते हैं। अगला बुलेटिन शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबोज़, घंटे तरन्नुम के साथ।

और 5:02 हो चुके हैं एक बार फिर से हाजिर है तरन्नुम लेकर प्रोग्राम टॉप 10 सुनते रहिए रेनबो धड़कन लखनऊ की और आपको बता दें कि आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे 2001 के उन 10 गानों की जो रहे टॉप मोस्ट जिसमें से नंबर 10 पर है ये ट्रैक

हाँ बिल्कुल, ऐसा ही कुछ खूबसूरत अंदाज था 2001 के गानों का। और ये जो गाने होते थे ना, ये गलियों गलियों बजा करते थे। और वो जो दौर था वो था कैसेट का दौर, सीडी प्लेयर्स का ज़माना, गली गली बजते रोमांटिक गाने और हर दिल में बस एक ही बात, म्यूज़िक म्यूज़िक म्यूज़िक। तो बस ऐसे ही इंजॉय करते रहिए इस एक घंटे में 2001 के 10 सुपर हिट सॉन्ग्स, जिसमें कह सकते हैं कि एक नॉस्टैल्जिक म्यूज़िकल राइड है ये। और बस जब उस दौर में हम पहुंच जाते हैं, उस दौर के जब गाने सुनते हैं, तो एक बहुत अजीब सा सुकून मिलता है। एक ऐसे रिदम होता था उन गानों में, ऐसे बोल होते थे जो दिल तक उतर जाते थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपका दिल खुश होता है तो आप ये ध्यान नहीं देते कि जो गाना प्ले हो रहा है उसके जो अल्फाज हैं वो क्या हैं, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक पर ध्यान देते हैं। बस आप झूमना चाहते हैं, गाना चाहते हैं। लेकिन जब आपका दिल थोड़ा सा उदास होता है या थोड़ा सा किसी ने तोड़ दिया होता है, तब आपका दिमाग कहाँ जाता है, आपके गाने के एक एक बोल, और आप चाहते भी हैं, सोच सोच के आप चाहते हैं रोएं और रोएं और गाने रुलाते हैं। तो कुछ गाने ऐसे भी थे इस दौर के जिन्होंने रुलाया, लेकिन गाने सुपर डुपर हिट थे। कुछ गाने ऐसे भी थे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ सोचने पर मजबूर किया, जैसे कि जो अगला गाना है, बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, और इस गाने को लकी अली ने अपनी आवाज़ दी है। यस एग्जैक्टली यही ट्रैक, तो पहुँचा दें आप तक।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

और दोस्तों ये जो सॉन्ग आप सुन रहे हैं शाहरुख खान और काजोल का जो मैजिकल केमिस्ट्री थी और सोनू निगम अलका याग्निक की सोलफुल आवाज़ थी, तो इस गाने में चार चांद लगा दिए थे। और कहते हैं ना कि उस दौर में यानी 2001 में इस गाने ने एक नया लेवल दिया था। इजिप्ट की खूबसूरत लोकेशन थी और इतना ड्रीमी म्यूज़िक है कि आज भी अगर लोग सुनते हैं तो एकदम इसमें नयापन लगता है। और नेक्स्ट जो अब हम ट्रैक की बात करने वाले हैं, ट्रैक नंबर 7 टॉप 10 पर जो है, और वो है फिल्म आमिर खान की, एक फिल्म आई थी जिसका नाम था लगान। और ये सिर्फ स्टोरी नहीं थी बल्कि जो म्यूज़िक थी ना उसका ज़बरदस्त म्यूज़िक था। और म्यूज़िक कंपोज़र कौन थे आपको बता दें, A.R. रहमान थे। और उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ ने जो ये गाना अभी आप सुनेंगे, इतना बेहतरीन गाना था, इतना बेहतरीन। और इसकी जो म्यूज़िक है, एक एक इसकी जो बीट है उसको जब सुनो तो ऐसा लगता है कि बस ये जो गाना है वो आजकल के दौर का है। और सही बात है कि अगर किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत की जाए और जो मेहनत है कामयाब ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो लगान एक यादगार फिल्म और लगान के जितने भी ट्रैक हैं वो भी यादगार, जिसमें से एक ट्रैक मितवा आप तक।

0: कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

ये नहीं प्यारे। जी हाँ दोस्तों, 2001 में ये जो गाना आया था अंडे का फंडा, ये भी उस वक्त बहुत ही टॉप पे रहा था। और अब जिस गाने की हम बात करने वाले हैं और जो गाना हम आप तक पहुंचाने वाले हैं, एक ऐसा ये गाना है कि कह सकते हैं कि म्यूजिकल सफर में जो एक प्यार की हल्की सी खुशबू और दिल की मीठी धड़कनों को अगर आप महसूस करना चाहते हैं विद म्यूजिक, तो फिर ये गाना आपके लिए है। और ये गाना सिर्फ एक मेलोडी नहीं है, बल्कि उन जज्बातों की आवाज़ है जो दिल चुपके से महसूस करता है। बॉम्बे जयश्री की सोलफुल आवाज़ और ब्यूटीफुल म्यूजिक इस ट्रैक को टाइमलेस बना देते हैं। तो बहुत ही, एक कहते हैं ना कि जब आप किसी प्यार के बारे में बात करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, तो फिर आपका जो होठ है, आपका जो दिल है, आपका जो दिमाग है, वो खुद मुस्कुराने लगते हैं ज़रा ज़रा। 5:32 प्रोग्राम टॉप 10 तरन्नुम आपके साथ, सुनते रहिए।

5:40 हो रहे हैं दोस्तों, और आप सुन रहे हैं 2001 के कुछ ऐसे सॉन्ग जो टॉप 10 लिस्ट में उस दौर में शामिल थे। और अभी तक जो आपने गाने सुने उनमें एक और भी गाना आया था उस दौर में, उस सन में कह सकते हैं कि ये जो गाना था ये कह सकते हैं कि उस प्यार को, उस कनेक्शन को बयान करता है जो दो दिलों के बीच बिना कुछ कहे महसूस होता है। जब कोई इंसान हमारी हर धड़कन, हर दुआ और हर ख्याल में बस जाए तो शायद वही असली मोहब्बत होती है। इस गाने की सॉफ्ट मेलोडी और हार्ट फेल्ट लिरिक्स आज भी लिसनर्स के दिल को टच करते हैं। चाहे लॉन्ग ड्राइव हो, रेनी इवनिंग हो या किसी अपने की याद, ये सॉन्ग हर मूड को और भी स्पेशल बना देता है। और सच बताएं, अगर किसी को अपने दिल की बात बिना बोले समझानी हो तो भी ये गाना एकदम परफेक्ट है। तो चलिए, अब वक्त हो गया है कि रोमांस और इमोशन से भरे इस खूबसूरत गाने को, इस खूबसूरत नगमे को महसूस करने का, और ये जो गाना है उसे पहुंचाते हैं हम

जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।

अच्छा 2001 में जो गाने आए थे वो एकदम अलग थे, बिल्कुल अलग, और बिल्कुल अलग उनकी म्यूजिक थी, बिल्कुल अलग। यानी अगर पार्टी एंथम में आपको चाहिए कि भाई कोई ऐसा सॉन्ग जिस पे बस पैर जो है वो थिरकते रहें, तो भाई एक गाना ऐसा था जो अभी आपने सुना, अंडे का फंडा। लेकिन उसी कैटेगरी में अगर रख सकते हैं हम नेक्स्ट ट्रैक को, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। एक फिल्म आई थी और उसमें जो फिल्म का नाम था बताएंगे नहीं, क्योंकि उस फिल्म का जो टाइटल ट्रैक है वो उस ज़माने में बहुत हिट था और लड़के लड़कियां इस गाने को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे। कहते हैं ना कि हर इंसान की लाइफ में, हर इंसान की ज़िंदगी में एक दौर ऐसा आता है कि जब आप तन्हाई में बैठ के सोचते हैं उस दौर को कि ऐसी ऐसी बातें हम लोग करते थे, या ऐसे काम करते थे, ऐसे कपड़े पहनते थे, ऐसे मुस्कुराते थे, ऐसे अपने आप को सजा संवार के बाहर निकलते थे, तो एक अजीब सी मुस्कुराहट आती है मतलब एक अजीब सी हंसी आती है कि क्या दिन थे वो, कितने नादान, कितने अनजान से लोग थे। और इसी को तो कहा जाता है कि यंग एज जब आती है तो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, सारे माहौल अच्छे लगते हैं, सारे लोग अच्छे लगते हैं। यस, एक्सक्यूज़ मी, ट्रैक आप तक।

0: सितारे
1: एक्सक्यूज मी क्योंकि 5:52 हो गए हैं और पूरे टॉप 10 ट्रैक हमें आप तक पहुंचाने हैं इसलिए थोड़ा सा इस ट्रैक को कम करते हैं और दिल को मिलाते हैं इस ट्रैक के साथ

और आपकी जो दिल है वो दिल की जो धड़कन है उसको दिल की धड़कन के साथ यानी रेनबो के साथ ऐसे ही मिलाते रहिए और नेक्स्ट प्रोग्राम लेकर यानी शामे और लेकर भी हाजिर रहेंगे हम तरन्नुम आपके साथ सुनते रहिए रेनबो द हार्ट बीट ऑफ लखनऊ

नमस्कार, शाम के 6 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द करते हुए दोबारा परीक्षा कराने का फैसला किया है। एजेंसी ने परीक्षा में कथित अनियमितताओं और जांच एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर यह निर्णय लिया है। साथ ही केंद्र सरकार ने पूरे मामले की व्यापक जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दी है। नई परीक्षा तिथि और दोबारा जारी होने वाले एडमिट कार्ड का कार्यक्रम जल्द ही आधिकारिक माध्यमों से घोषित किया जाएगा। एनटीए ने अभ्यर्थियों और अभिभावकों से केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने और सोशल मीडिया पर प्रसारित अपुष्ट खबरों से बचने की अपील की है। एनटीए ने यह भी स्पष्ट किया कि मई 2026 चक्र में पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थियों का डेटा, उम्मीदवार स्थिति और चुने गए परीक्षा केंद्र आगामी पुनर्परीक्षा के लिए मान्य रहेंगे। इसके लिए दोबारा पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह की उपस्थिति में आज प्रदेश मुख्यालय पर संगठनात्मक बैठक चल रही है। इस बैठक में प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष व जिला प्रभारी शामिल हैं। बैठक में संगठनात्मक विषयों पर चर्चा होगी। इसके अलावा बूथ कमेटियों के गठन व प्रशिक्षण अभियान के बारे में पूछताछ होगी। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में कल से पिछली विजेता तेलंगाना व मेजबान यूपी सहित विभिन्न राज्यों की 16 टीमों में शामिल 275 खिलाड़ी अस्मिता नेशनल महिला रोइंग लीग में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। लीग में राज्य सीधे भाग लेने के बजाय जिला स्तर पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से मेजबान जिले की टीम गोरखपुर क्वींस अपनी चुनौती पेश करेगी। आज आरएफआई के महासचिव शुभाशीष मुखर्जी ने तैयारियों का जायजा लिया और कोर्स ओपनिंग की शुरुआत कराई। ज्येष्ठ मास के दूसरे बड़े मंगल पर लखनऊ में सुबह से ही मंदिरों के बाहर बजरंग बली के जयकारों के बीच भक्त कतारों में दर्शन करते नजर आए। दूसरी ओर सामाजिक संस्थाओं, व्यापारिक संगठनों ने जगह जगह भंडारों का आयोजन कर सेवा की परंपरा निभाई। अलीगंज के नए और पुराने हनुमान मंदिरों के आसपास सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है। यहां प्रसाद वितरण के साथ शीतल पेय और पानी की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी के साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। अगला बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। FM रेनबोज घंटे तरन्नुम के साथ।

0: जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: हमको अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, हमको अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, कोई तुझसा हो तो नाम भी तुझसा रखे। उनसियत का सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। तरन्नुम है आपके साथ, प्रोग्राम शाम अवध, सुनते रहिए।

और 6:07 हो चुके हैं और प्रोग्राम शुरू हो चुका है शामियावाद। और साथ ही साथ ये जो वक्त है यानी 6 बज चुके हैं लेकिन धूप कहीं ना कहीं आपको हल्की नज़र

रही होगी। लेकिन पहले लोग बड़ा खुश थे कि भाई मई शुरू हो गया है, लेकिन देखिए लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, मई देखो चल रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है ना कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। लोग एसी को ऑन करने में सोचते थे, ऑन करें, नहीं नहीं गर्मी, मई है भाई गर्मी है, ऑन करो एसी, लेकिन दूसरा कहता था कि नहीं मौसम ठंडा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब आपको धूप करेगी परेशान और पारा आपका जो इम्तिहान है कह सकते हैं वो रहेगा। और एक हफ्ते से ये लगातार चल रहा था कि मौसम का जो मिजाज था लगातार बदल रहा था, कभी तेज़ हवाएं चल रही थी, कभी बूंदाबांदी हो रही थी, तो जो टेम्परेचर था उसमें काफ़ी गिरावट आई थी, लोगों को राहत मिली थी। लेकिन अब मौसम ऐसे ही रहने वाला है, यानी ड्राई रहने वाला है, बहुत पसीना, गर्मी, तेज़ धूप, ये सारी चीज़ें, पारे में उछाल, ये सारी चीज़ें हर साल पेपरों में आती हैं, हम लोग पढ़ते हैं, न्यूज़ में आता है, ऐसे बच के करिए, वैसे बच के करिए, और फिर हम लोग भूल जाते हैं कि पिछले साल कितनी शिद्दत की गर्मी थी, या कितना तेज़ जाड़ा पड़ा था, या कितनी ज़्यादा बारिश हुई थी। लोग याद नहीं रख पाते, क्यों? क्योंकि उतना ज़्यादा ध्यान हम उस चीज़ पर नहीं दे पाते हैं। तो फिर आखिर ध्यान हम किस चीज़ पर देते हैं? ध्यान हम अक्सर उन बातों में लगाते हैं जो शायद आप ये कह सकते हैं कि या तो हमारे लक में नहीं है, या हमारे नसीब में नहीं है, या अक्सर लोग ध्यान अपने पर कम, दूसरों पर ज़्यादा देते हैं। दूसरों पर वो निगाह रखते हैं, उनकी एक एक कह सकते हैं गतिविधियाँ जो होती हैं ना, उस पर ध्यान देते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे अर्न कर रहे हैं, वो कैसे घूम रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं लोग ध्यान देते हैं। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान अपने पर देना शुरू कर दें, थोड़ा सा अपना आप हेल्थ का ध्यान रखें, चाहे वो मेंटल पीस हो, चाहे वो आपकी फिज़िकल एक्टिवनेस हो, फिज़िकल एक्टिविटीज़ आप करिए, कुछ ऐसा काम कीजिए जिसमें आपका दिल ऐसा महसूस ना हो कि दिल खाली हो गया है। अक्सर लोग ये कहते नज़र आते हैं कि भाई दिल खाली हो गया है, तो एक चीज़ ये भी समझ लीजिए कि गर्मी का असर जो होता है ना, मौसम का जो मिजाज होता है वो हमारी ब्रेन पे काफ़ी असर डालता है। मौसम अगर कूल है तो आप देखिए कि इंसान बहुत ही कूल रहता है, लेकिन मौसम अगर थोड़ा सा भी उल्टा हो गया, यानी कि मान लीजिए कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत गर्मी लग रही है, एकदम से आपको गर्मी लग रही है, एकदम से आपको लग रहा है कि बहुत तेज़ प्यास लग रही है, ये सारी चीज़ें हैं, तो भाई मौसम का तो असर है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ भी कुछ ऐसा नोटिफिकेशन दे रही है कि कहीं ना कहीं आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो नंबर एक बात तो ये कि चलिए जो मौसम की हमने बात करी कि धूप ऐसे ही रहने वाली है, गर्मी ऐसे ही पड़ने वाली है, सारी चीज़ें हमने शेयर कर ली। लेकिन अगर हम अपनी मेंटल हेल्थ की बात करें, अपनी मानसिक शांति की बात करें, तो एक चीज़ है जो कह सकते हैं नॉट बना के इंसान को रख ले कि अगर आप चाहते हैं कि मेंटल पीस आपके पास रहे, तो हमेशा बहुत ज़्यादा लोगों से उम्मीदें बांधना छोड़ दीजिए। बहुत ज़्यादा जो आप अच्छा करते हैं आप चाहें कि सामने वाला भी उससे ज्यादा अच्छा करे, ये चीजों को आप दिमाग से निकाल दीजिए, यानी हर चीज को अपनी लाइफ में बिल्कुल कम कर दीजिए। अपने अल्फाज, अपने एहसासात, और जो बहुत सारे लोगों की जो भीड़ होती है ना, जिनसे आपको कोई दिली सरोकार नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं, आप जबरदस्ती चाहते हैं कि लोग आपके आसपास रहें, लेकिन क्या अकेले में जब आप होते हैं, आप तन्हाई में होते हैं, तो क्या आप वो चीज महसूस कर पाते हैं? अगर जवाब है कि नहीं, तो फिर अपने ऊपर आज से काम करना शुरू कर दीजिए। अब गर्मी की बात हमने की, तो भाई गर्मी है और बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा शिद्दत है, तो थोड़ा थोड़ा जो आजकल के सीजनल फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। और ज़्यादा आपको मेंटल अगर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, तो फिर इसके लिए रेनबो है। रेनबो आपके पास एक से बढ़कर एक ट्रैक लेके आता है, जिसमें से एक ट्रैक है इश्क़ जां आप तक।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

अच्छा, कुछ शामें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल अजीब होती हैं, बिल्कुल अलग होती हैं। मतलब वो कोई शाम ऐसी होती है जिसमें दिल करता है कि बहुत पेपी नंबर सुने जाएं, कुछ शाम ऐसी होती हैं जिनमें लगता है कि नहीं भाई, बहुत रिलैक्स किया जाए। और देखिए, शाम की बात हम कर भी कहाँ रहे हैं, अभी सूर्यास्त हुआ ही नहीं है। और सूर्यास्त की जो टाइमिंग है वो आपको बता दें कि अभी भी उसमें वक्त काफ़ी बाकी है, यानी कम से कम 19 मिनट बाकी हैं, यानी 6:44 पर सूर्यास्त होना है। और सोचिए ज़रा कि ये शामें कितनी देर में आती हैं और दिन कितने लंबे होते चले जाते हैं, और अक्सर ऐसा होता भी है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपका दिल खुश होता है तो फिर जो लम्हे होते हैं, जो दिन होते हैं, बड़े छोटे नज़र आते हैं, बहुत कम दिन लगते हैं। ऐसा लगता है कि जो खुशी के लम्हे हैं उनको कैसे भी करके रोक लें, कैसे भी करके उनको बांध लें, कैसे भी करके उसी लम्हों में हम अपनी ज़िंदगी गुजार दें। और खुशी की अगर बात हम करें तो भाई, खुशी की बात एक ये है कि डाकघर में रविवार को भी आधार सेवा शुरू हो गई है, यानी संडे को भी लोगों को जो आधार सेवा है वो उपलब्ध करा रहा है। पहले दिन लखनऊ GPO चौक प्रधान डाकघर, इंदिरा नगर, गोमती नगर, अलीगंज, राजेंद्र नगर, आलमबाग और आवास विकास कॉलोनी के डाकघरों में 200 लोगों ने इसका फायदा उठाया। इसके अलावा मोबाइल नंबर है, पता है, बायोमेट्रिक है, सारी चीज़ें भी आप अपडेट करा सकते हैं। अब ये मत कहिएगा कि भाई संडे आ रहा है तो फिर संडे को जो है पोस्ट ऑफिस बंद रहता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो चली जाती हैं। और अब एक और खुशखबरी हम आपको देंगे और थोड़ी राहत मिलेगी। कहते हैं ना कि जब खुशियाँ मिलती हैं तो अजीब से जो चेहरे पर एक परेशानी, हैरान कौन इंसान रहता है, और जब खुशी मिलती है तो एकदम से रिलैक्स हो जाता है, राहत मिलती है। और राहत है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि राहत आखिर है तो किस चीज़ की है। लेकिन उससे पहले एक वक्त और हो गया है कि हम आप तक पहुंचा दें एक और खूबसूरत सा ट्रैक, क्योंकि अक्सर ये होता है अगर आप गाड़ी में हैं, अगर आप ऑफिस से निकले हुए हैं, या अगर आप बहुत मूड में हैं, तो फिर मेरी बातें इतनी अच्छी नहीं लगेंगी जितने अच्छे आपको लगेंगे ये जो खूबसूरत से ट्रैक हैं जो हम क्यों करके रखें।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।

0: क्या बात है, आजकल टाइम से घर।
1: हाँ हाँ, बस एक फटाफट से अब मसाले वाली चाय जल्दी से पिला दो।
0: अरे ठीक है बाबा, लेकिन इतनी जल्दी में क्यों है?
1: अरे 7 बजे FM रेनबो पर कॉल जो करनी है।
2: जी हाँ, FM रेनबो लेकर आया है हर रोज शाम 7 बजे से हेलो FM कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए। तो कर डालिए अपने दिल की बात अपने पसंदीदा गाने के साथ।

और बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो आपसे दूर हैं, आप उनको वीडियो कॉल के जरिए देख सकते हैं, लेकिन अब वक्त आ रहा है कि आप उनसे मिलने के लिए बिल्कुल बेकरार हैं। हम बात कर रहे हैं समर वेकेशन की, और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें से कुछ लोग हैं जो भाई सोचते हैं कि कौन सी ट्रेन कहाँ से

गुजर जाती तो अच्छा था, कौन से लोग कहाँ से मिल जाते तो अच्छा था। ऐसे में रेलवे ने गुजरात से बिहार के बीच लखनऊ होकर, जी बिल्कुल आपने सही सुना, रेलवे ने गुजरात से बिहार के बीच लखनऊ से होकर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। और ये जो समर्स वेकेशन आ रहे हैं ना, इसको आराम से आप इजली, अगर आप चाह रहे हैं कि आप गुजरात बिहार, या आप यहाँ से गुजरात जाना चाह रहे हैं या बीच में बिहार में उतरना चाह रहे हैं, जैसे भी आप चाह रहे हैं, तो ये जो एक बहुत ही ख़ास इन्फॉर्मेशन थी जो हमें लगा कि भाई बहुत जल्दी बतानी चाहिए आप लोगों को, बहुत जल्दी आप तक पहुँचानी चाहिए, तो वो हमने आप तक पहुँचा दी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, मतलब ट्रेनों से जुड़ी अगर हम बात करें तो कुछ ट्रेनें हैं जो बदले हुए रूट से चलाई जाएंगी, क्योंकि आजकल रेलवे खंड पर, रेल खंड पर मरम्मत के काम चल रहे हैं। ऐसे में जयनगर अमृतसर एक्सप्रेस और दरभंगा नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है वो बदले रूट से चलेगी, तो वहाँ पर कुछ इंटरलॉकिंग का काम है जो कराया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों कि अक्सर हम घर से निकलते हैं और सोचते कुछ हैं, होता कुछ है, पाना कुछ और चाहते हैं लेकिन मिलता कुछ है। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम अपनी प्लानिंग के हिसाब से लेकर चलते हैं और प्लान जो हमारे होते हैं वो सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि हम नहीं समझ पाते, हम मतलब कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं, इतनी अच्छी हो जाती हैं कि जिनको हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, उम्मीद ही नहीं रख रहे थे कि ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हो जाएंगी। और इसी में एक ऐसी चीज़ भी है जिसको हम और आप अच्छी तरह समझते हैं, मेरा इशारा आप किसकी तरफ है, और वो है मोहब्बत। फिलहाल कुट्टी मोहब्बत, ट्रैक आप तक।

0: क्या है बदल, जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल FM रेनबो।
3: I am संध्या त्रिगुनी। बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो FM की।
4: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ FM रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताजा जानकारियाँ भी देता है। That's why I love FM रेनबो।
5: ये तो सुन रहे हैं FM रेनबो और आप

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।
2: छः बजकर 45 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है शामे अवध, और इस प्रोग्राम के ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं आपकी लाइफ के लिए, हमारी लाइफ के लिए, सबके लिए, वो हम आप तक पहुंचाते हैं। और इसी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो बात है वो हम आपको बता दें कि जो स्वघटना फॉर्म है जो भरे जा रहे हैं, सेल्फ एनुमेरेशन फॉर्म जो भरे जा रहे हैं, एक चीज़ अच्छी तरह से आप लोग सभी लोग समझ लीजिए, जान लीजिए कि एक बार अगर इसमें नाम मुखिया का दर्ज हो गया तो फिर उसके बाद जो संशोधन है उसकी गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। इसलिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं और सबमिट करने से पहले दोबारा से अपना नाम जो है वो हमेशा बहुत ध्यान से चेक कर लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गलत हो गया हो। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी समझ में ही नहीं आ रही है कि ये जो स्वगणना हो रही है, जो सेल्फ एनुमेरेशन हो रहा है, इसको क्या है, कैसे, कहाँ जाएँ, किससे पूछें। अक्सर लोग एक दूसरे से बात करते हैं, शाम का वक्त है, लोग पड़ोसी से पूछते हैं, ये बताओ तुमने ये कर लिया, उन्होंने कहा हाँ भाई हमने तो फॉर्म भर दिया, उन्होंने उनसे भरवा लिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे पैसे भी ले रहे हैं आपसे। तो इसका बहुत ही ईजिली जो स्टेप बाई स्टेप है वो ये है कि इसका आधिकारिक जो पोर्टल है sc.census.gov.in, उस पर जाकर आप स्वगणना के लिए जो फॉर्म है वो फिल कर दीजिए। उसके बाद जो परिवार का मुखिया है उसका मोबाइल नंबर दर्ज कीजिए और OTP के माध्यम से लॉगिन, यानी OTP आएगा, जो परिवार के मुखिया होंगे जो भरा जाएगा जिनका नाम, तो वो लॉगिन करेंगे। उसके बाद अपना जो स्टेट है, आपका जो राज्य है और जो ज़िला है उसको चुनिए। उसके बाद जो मकान की स्थिति है, लैंडमार्क चुनिए, और घर की जो लोकेशन है उसको भी उसमें मेंशन कर दीजिए। अब सवाल आता है जो मालिक हैं या जो किराएदार हैं, जो भी सुविधाएँ हैं, बिजली, पानी, शौचालय, जो भी है उसकी जानकारी, परिवार के कितने फैमिली मेम्बर्स हैं परिवार के, उनकी आपको जानकारी उसमें फिल करनी है। उसके बाद जो सटीक लोकेशन है उसको भी आप चिन्हित कर लीजिए, उसको आप चिन्हित करके बाद देख लीजिए कि भाई क्या है, मानचित्र पे जाके आप उसको देख सकते हैं। सभी जो जानकारी हैं उनको बहुत ही ध्यान से भरने की, आप जब भर लीजिएगा उसके बाद ही आपको फॉर्म को सबमिट करना है। बहुत जल्दी नहीं है, बहुत ईजली, बहुत ही आराम से, बहुत ही ध्यान से। उसके बाद क्या करना है आपको, जब सबमिशन हो जाएगा आपके फॉर्म का, तो आपको 11 अंकों की एक स्वगणना पहचान संख्या मिल जाएगी।

और उसके बाद जब 22 मई के बाद जितने भी सरकारी प्रगणक जो हैं जब वो घर आएंगे तो उन्हें आप ये जो आईडी आपको मिलेगी इसको दिखाना है बस, और कोई बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो कॉल कर रहे हैं, फेक कॉल कर रहे हैं कि भाई हम आपके घर आ रहे हैं, हम आपकी स्वगणना करेंगे, हम आपका फॉर्म भरेंगे। तो कुछ लोग ऐसे भी मामले देखने में आए हैं कि जो बहुत ही भोले होते हैं, उनको नहीं समझ में आता तो वो अपने घर की जो जानकारियाँ हैं वो सारी चीज़ें दे देते हैं, ओटीपी वो लोग भूले से निकलवा लेते हैं, यानी चलाकी से कर देते हैं, और आप सोचते हैं कि आपका सेल्फ एनुमिलेशन हो रहा है। तो स्वगणना, स्व का मतलब अपने आप, खुद आप कोशिश कीजिए, या फिर घर का कोई ऐसा फैमिली मेम्बर जिसको आप पे पूरा आपको भरोसा हो उस पर, उससे ये काम करवाइए। फिलहाल 6:48 हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है शाम अवध तरन्नुम आपके साथ, और मेरे साथ है एक और ट्रैक लता जी की आवाज़ में।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में पीसीओडी और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, पीसीओडी या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।

जी हाँ बिल्कुल, आपको खोना नहीं है और ना ही अभी सोना है, बल्कि रेनबो को एंजॉय करते रहना है। 6:55 हो चुके हैं, प्रोग्राम शाम में अवध को वाइंड अप करने के लिए दीजिए इजाजत। तरन्नुम को मिलते हैं आपका मोस्ट फेवरेट प्रोग्राम हेलो एफएम में, डायल कीजिए 2238852 2238845।

नमस्कार। शाम के बजे हैं 7। अब सुनिए यूपी की टॉप 10 न्यूज। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द करते हुए दोबारा परीक्षा कराने का किया फैसला। साथ ही केंद्र सरकार ने पूरे मामले की व्यापक जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह की उपस्थिति में आज प्रदेश मुख्यालय पर संगठनात्मक बैठक हुई। संस्कृति विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए गोरखपुर, शाहजहांपुर समेत 6 जनपदों में वृहद परियोजनाएं प्रस्तावित की गई है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक रामलीला मैदानों, स्थलों का विकास और विस्तार, जीर्णोद्वार एवं सौंदर्यकरण कार्य आदि कराया जाएगा। प्रदेश के परिषदीय और कस्तूरबा विद्यालयों में कल से 19 मई तक भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर किए जाएंगे आयोजित। शिविर में बच्चों को पढ़ाई के साथ भारतीय भाषाओं और सांकेतिक संवाद की भी सीख दी जाएगी। महोबा में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली पुलिस थाने में मामला किया गया दर्ज। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि आज के समय में युवाओं को केवल डिग्री नहीं बल्कि रोजगार देने वाला हुनर उपलब्ध कराना सबसे बड़ी आवश्यकता। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर अमरोहा में आज श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय रजबपुर में राष्ट्रीय सेमिनार और नर्सेज सम्मान समारोह किया गया आयोजित। फतेहपुर में जल निगम नगरीय और ग्रामीण विभाग से संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने कार्य की प्रगति धीमी पाए जाने पर अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण को कार्यदायी संस्था पर कार्रवाई के लिए किया निर्देशित। देवरिया के सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कुशीनगर में आज अपने संसदीय क्षेत्र के सेवरही स्थित गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान का निरीक्षण किया। इस दौरान वैज्ञानिकों ने उन्हें गन्ने की नई प्रजातियों से कराया अवगत। और ज्येष्ठ मास के दूसरे बड़े मंगल पर लखनऊ में सुबह से ही मंदिरों के बाहर बजरंग बली के जयकारों के बीच भक्त कतारों में दर्शन करते नजर आए। दूसरी ओर सामाजिक संस्थाओं, व्यापारिक संगठनों ने जगह जगह भंडारों का आयोजन कर सेवा की परंपरा निभाई। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन रात्रि 8 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबो तरन्नुम के साथ।

जी 7:02 हो चुके हैं, एक बार फिर से हाजिर है तरन्नुम लेकर प्रोग्राम हेलो एफएम। डायल करना है 2238-8442 और 2238-8852 और कहिए हेलो एफएम। तरन्नुम देगी आपके सवालों का जवाब और पहुंचाएगी आपकी पसंद के गाने आप गायक।

0: 7:06 हो चुके हैं और आपको बता दें कुछ ही देर में आप सुनने वाले हैं प्रादेशिक समाचार, लेकिन उससे पहले हमारे साथ लाइन पर कौन है, मतलब कौन है ये पूछते हैं। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे
1: हैं? मुश्ताक अली बोल रहे हैं, गुलमा गांव जिला बहरिच।
0: जी मुश्ताक साहब, बहुत बहुत आपका वेलकम है, खुश आमदीद इस प्रोग्राम में। बताइए मुश्ताक साहब, क्या कहना चाहते हैं?
1: ये फिल्म सुनना चाहते हैं।
0: मतलब सीधा गाने, बस गाना सुनेंगे, कुछ बात बात नहीं करनी आपको? आपको अगर बात नहीं करनी थी तो फिर आप मेल ही कर देते।
1: और बात करेंगे।
0: अच्छा बात करनी है तो बताइए, क्या बात करनी है आपको?
1: अरे हमारे वाले से जो
0: बड़े घबराए से लग रहे हैं, कोई बात हो गई क्या? मतलब कहीं जाना है, शादी वादी में जाना है?
1: नहीं शादी।
0: अच्छा अच्छा, तो मतलब कहाँ कहाँ रहते हैं आप? आपने ये नहीं बताया आप रहते कहाँ।
1: हाँ खेती किया गया है, घुमाया गया है।
0: अच्छा
1: तो कुआवा जाट है।
0: अच्छा अच्छा,
1: हाँ गांव में है, देहात में घर हमारा।
0: अच्छा कौन से देहात में है?
1: इधर नानपुरा बाबा गंज के।
0: अच्छा बाबा गंज के पास। अच्छा अच्छा अच्छा,
1: हाँ हमारे यहाँ से 180 किलोमीटर।
0: जी जी जी जी,
1: हाँ।
0: अच्छा तो अभी आपने खेती करके अभी आप आए होंगे, ठीक है, घर आए होंगे, थक गए होंगे, है ना?
1: जी नहीं, बटवा जात रहा है, मतलब बटवा जात रहा है।
0: जी जी,
1: तो बटवर के अजर वादर कुछ पानी है तो भीग।
0: अच्छा चलिए, ये गाना जो आपने कहा है।

0: किसको सुनवाएंगे आप?
1: हमारा फौजदार विश्वकर्मा।
0: अच्छा,
1: सरोज सोनी है, विश्वकर्मा।
0: क्या बात है।
1: और विगत अली पूना।
0: दोस्ती बहुत लंबी है आपकी।
1: और बम्बई में मोहम्मद और हैदराबाद।
0: अरे वाह, बड़े बड़े दूर दूर आपके दोस्त हैं। बम्बई में हैं और कहाँ बताया आपने? हैदराबाद में हैं, पूना में भी हैं। हाँ, तो घूमने गए हैं कभी आप?
1: जी हम लखनऊ से।
0: लखनऊ से कभी बाहर नहीं गए आप?
1: हाँ लखनऊ में।
0: चलिए, अच्छा, बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी पसंद का गाना आ रहा है आप तक।

0: 7:10 हो गए हैं, हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर लाइन पे, उनसे बात करते हैं। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम तरन्नुम बाजू।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, बताएं कैसे मिजाज हैं आपके, कौन बोल रहे हैं?
1: अच्छे मिजाज हैं, अच्छे मिजाज हैं हम।
0: अच्छा, अच्छे मिजाज हैं आपके।
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो घर में कोई आपको अच्छे भाई तो नहीं कहता?
1: देखिए भाई तो सारे लोग मेरे जो भी हैं वो सारे लोग अच्छे हैं। हाँ, और आपस में तालमेल भी बहुत अच्छे हैं।
0: क्या बात है, मतलब सब अच्छा ही अच्छा है?
1: सब अच्छा ही अच्छा है।
0: तो आप कहाँ से फोन कर रहे हैं? रेशमी नगरी कहाँ से?
1: मुबारकपुर आजमगढ़।
0: आजमगढ़ से हैं, अच्छा अच्छा। वैसे जावेद साहब एक बात पूछें, अगर आप बुरा ना माने तो?
1: नहीं नहीं पूछिए, बिल्कुल पूछिए।
0: अक्सर लोग कहते हैं कि आजमगढ़ के लोग जो हैं बड़े कंजूस होते हैं, क्या ऐसा है?
1: नहीं मैडम ऐसा तो नहीं है।
0: अच्छा ऐसा नहीं है?
1: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है।
0: अच्छा
1: हाँ, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए आजमगढ़ जिले से हट के, जैसे हम अपने मुबारकपुर खास तौर की बात करें, आजमगढ़ से सिर्फ ये 17 किलोमीटर के दूरी पे है हमारा मुबारकपुर। तो रेशमी से धागे से जो बनी हुई साड़ियाँ बनती हैं वो बनारसी साड़ियाँ वो मशहूर भी हैं।
0: क्या बनता है वहाँ पे?
1: बनारसी साड़ियाँ जो बनती हैं।
0: क्या बात है, रेशमी नगरी, इसीलिए आप कहते रहते हैं रेशमी नगरी। वैसे हमने ये जो बात आपसे कही कि आजमगढ़ के लोग कंजूस होते हैं, ये सिर्फ आपका, हमने जो टेम्परमेंट है ना, जो टेम्परामेंट जैसे कहते हैं, टेम्पर जो होता है ना, देखें कि लूज तो नहीं होता। आप समझ में आ गई कि आजमगढ़ के लोग बड़े सहज और सरल होते हैं, उनको गुस्सा नहीं आता जल्दी।
1: नहीं गुस्सा भी नहीं आता है, और बहुत छोटे बड़ों का आदर एहतराम भी करते हैं
0: जी।
1: और मतलब मेहमान नवाजी में भी पीछे नहीं रहते हैं।
0: हाँ लेकिन एक बात है, थोड़े आगे लखनऊ वाले रहते हैं मेहमान नवाजी में। पहले आप। चलिए, आपने गाना बहुत अच्छा पसंद किया, ये बताइए आप किसको सुनवाना चाहेंगे, किस किस को सुनवाना चाहेंगे?
1: जी मोहम्मद फैज साहब हैं, रामपुर कटरा से हैं।
0: जी जी जी जी।
1: और रिंकू पिंकी जी हैं रायबरेली से।
0: अच्छा, ये सब आपके दोस्त हैं?
1: शमा परवीन अंसारी जी हैं, साहिदा अंसारी जी हैं, सादिया अंसारी जी हैं, और इरशाद अहमद साहब आजमी हैं, और हमारे बहुत ही खास मित्र हैं शमी अख्तर अंसारी साहब, इस वक्त रेम्बो से जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम सुनते हैं जी।
0: चलिए बहुत अच्छा लगा जावेद साहब, आपने हमें कॉल की, जावेद अख्तर साहब की कॉल थी हमारे पास आजमगढ़ से, और उन्होंने पसंद किया था ये ट्रैक, और ये ट्रैक पहुंच रहा है आप तक 7:13, कुछ ही देर में पहुंचेंगे आप तक। प्रादेशिक समाचार सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की, बोले तो FM रेनबो, घंटे तरन्नुम के साथ।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: जय श्री राम।
1: बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हिंग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हिंग।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पेपर लीक के आरोपों के कारण 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द। सीबीआई जांच के आदेश, नई परीक्षा तिथि का ऐलान जल्द। आगरा में यमुना नदी में नहाने के दौरान 6 बच्चे डूबे, 4 की मौत, 2 का उपचार जारी। जेठ महीने के दूसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में दिखा आस्था और सेवा का संगम। प्रमुख हनुमान मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। और प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित। आगामी 24 घंटों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश और बिजली गिरने का अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित और राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एक रिपोर्ट।
1: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि वह सीबीआई के साथ पूरा सहयोग करेगी और जांच के लिए जरूरी सभी सामग्री, रिकॉर्ड और सहायता उपलब्ध कराएगी। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे और दोबारा होने वाली परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, सोने की खरीद को टाले।

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज असम में नव निर्वाचित एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने नव निर्वाचित मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और मंत्रिमंडल के नव नियुक्त सदस्यों को उज्जवल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में FIR दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है और मामले की जांच जारी है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। आगरा के थाना कमला नगर क्षेत्र में आज यमुना नदी में नहाने के दौरान 6 बच्चे डूब गए। PAC और गोताखोरों की रेस्क्यू टीम ने बच्चों को नदी से बाहर निकाल लिया। सभी को गंभीर हालत में SN मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उपचार के दौरान 4 बच्चों की मौत हो गई। 2 बच्चों का उपचार जारी है। पुलिस उपायुक्त नगर सैयद अली अब्बास ने बताया कि सभी बच्चे एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आगरा आए थे। राजस्व परिषद के अधीन लेखपाल के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 21 मई को राज्य के 44 जिलों में मुख्य परीक्षा आयोजित करेगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक की तरफ से जारी सूचना के अनुसार परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को आवंटित जिले की अग्रिम सूचना आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। चंदौली में बीते 24 घंटों में 3 लोगों की हत्या करने वाले व्यक्ति को बीती रात पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। मारे गए अपराधी ने 24 घंटों में ट्रेन में यात्रा करने वाले 2 लोगों और अस्पताल में भर्ती एक महिला की हत्या कर दी थी। पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने बताया कि पूछताछ में अपराधी ने तीनों हत्याओं की बात कबूल की थी। ज्येष्ठ मास के दूसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में आस्था और सेवा का संगम दिखाई दिया। जनपदों के प्रमुख हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। अयोध्या में ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल के अवसर पर रामकोट परिक्रमा में श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ देखने को मिली। बिजनौर में जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रसाद बांटा। लखनऊ में भी बड़े मंगल पर हनुमान मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अलीगंज के पुराने और नए हनुमान मंदिर, हनुमान सेतु मंदिर, दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर समेत अन्य मंदिरों को बड़े मंगल पर भव्य रूप से सजाया गया है। इन मंदिरों में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ का आयोजन किया गया। दिन में तेज धूप के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कमी नजर नहीं आई। शहर भर में सामाजिक संस्थाओं और व्यापारिक संगठनों ने जगह जगह भंडारों का आयोजन कर सेवा की परंपरा निभाई। भंडारों में प्रसाद वितरण के साथ शीतल पेय और पानी की विशेष व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं ने भी सेवा कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में आज हुई तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं और आसपास के जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से कई इलाकों में आवागमन बाधित हो गया। एक रिपोर्ट।
2: बदायूं जिले में जमकर बारिश हुई, जिस कारण जगह जगह पेड़ टूटने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। आज दोपहर जिले के कई इलाकों में अचानक घने बादलों के साथ आई तेज आंधी से जहां पेड़ टूटकर गिर गए, वहीं तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया। साथ ही बारिश को देखते हुए किसानों ने भी खेतों की जुताई शुरू कर दी है। मौसम के लगातार करवट बदलने से लोगों को गर्मी से भी काफी राहत मिली है। मोहम्मद नईम, आकाशवाणी समाचार, बदायूं।
0: मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आगामी 24 घंटों में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने का अनुमान है।
3: आने वाले दिनों में अगर लखनऊ की बात करें तो मौसम साफ रहेगा, दिन में धूप खिलेगी, लेकिन तापमान ऐसा कोई एक्सट्रीम लेवल तक का नहीं पहुंचेगा। हालांकि तापमान में यहाँ धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं प्रदेश की बात करें तो कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई बेल्ट में हल्का बूंदाबांदी, गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती है, उसका सबब जारी रहेगा कल के लिए। उसके बाद मौसम आने वाले दिनों के लिए पूरी तरीके से साफ है। अब यहां से धीरे

0: तापमान में हल्की हल्की आने वाले दिनों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।
1: प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने आज गोरखपुर में संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में सरकार, उद्योग जगत, निजी आईटीआई संचालकों और प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने युवाओं को रोजगार परक और भविष्य आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने को लेकर मंथन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की मजबूत आधारशिला कौशल विकास संस्थान है। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड द्वारा संचालित माटी कला कौशल विकास योजना के अंतर्गत रामपुर में 15 दिवसीय विशेष शिल्पकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। योजना के तहत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में माटी कला कार्य से जुड़े कुम्हार और परंपरागत कारीगरों को आधुनिक तकनीक, आकर्षक डिजाइन, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन एवं विपणन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि इच्छुक कारीगर 29 मई तक आवेदन कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेपर लीक के आरोपों के कारण 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द, सीबीआई जांच के आदेश, नई परीक्षा तिथि का ऐलान जल्द। आगरा में यमुना नदी में नहाने के दौरान 6 बच्चे डूबे, 4 की मौत, 2 का उपचार जारी। जेठ महीने के दूसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में दिखा आस्था और सेवा का संगम, प्रमुख हनुमान मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। और प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित, आगामी 24 घंटों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश और बिजली गिरने का अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: बजकर 34 मिनट हो चुके हैं और हमारे साथ लाइन पर कोई है, नेक्स्ट कॉलर हमारे रेगुलर लिसनर हैं वो, लेकिन नाम उनका उन्हीं के मुंह से सुनते हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड इवनिंग टू यू टू, कैसी हैं?
1: मैं बहुत अच्छी दीदी, और आपसे बात जैसे और ही अलग बात है।
0: क्या बात है, आप लोग जब ये मतलब बटर लगाते हैं ना अच्छा वाला तो बड़ा अच्छा लगता है।
1: क्या करें, सब आपकी गर्म मेहरबानी है।
0: हाँ लेकिन अच्छा लगता है। अच्छा, सबको पता होता है कि तारीफ झूठी हो रही है लेकिन फिर भी लोग खुश हो जाते हैं।
1: झूठी नहीं तारीफ, तो बिल्कुल नहीं कह सकती झूठी है।
0: अच्छा बिल्कुल सच्ची
1: हमारी हंसी से चेहरे से, अगर आप सामने होते तो आप खुद ही देख पाते हैं।
0: सही बात है। वैसे अगर आपका सामना करना हो तो कहाँ आना पड़ेगा बताइए?
1: आप बताइए हमें कहाँ आना है आपसे मिलने के लिए?
0: नहीं आप बताइए, आप रहती कहाँ है? चंडीगढ़ में है अभी आप? अच्छा अच्छा, तो मतलब वेट वेट बढ़ गया आपका? लस्सी छाछ दही प्योर खा के
1: पूछे दीदी, इतना दुखी हो रखी अपने
0: क्यों वेट से? अच्छी बात है ना,
1: बैठने से ना मेरा बढ़ रखा है, नींद इतनी आती कि सुबह उठा नहीं जाता कि मॉर्निंग वॉक कर पाऊँ।
0: क्या बात है, कितनी अच्छी बातें कर रही हैं आप, क्या नींद आपको आती है?
1: और ऐसा लगता है हम हमेशा सोते ही रहे।
0: क्या बात है, और आजकल लोग देखिए नींद को बुलाने के लिए कितने जतन करते हैं।
1: अरे हमें तो कहीं भी आप अपना अंगारों पे भी सुला देंगे तब भी सो जाएंगे।
0: अच्छा ऐसा शुरू से?
1: हाँ बहुत बचपन से ही मान के चलो।
0: अच्छा तो रोशनी क्या कहना चाहेंगे आप इस प्रोग्राम के माध्यम से?
1: हाँ मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, और लास्ट टाइम आपसे 20 अप्रैल को बात हुई थी।
0: अच्छा इतना याद रखते हैं आप लोग?
1: एक बार डायरी देख लेते हैं उसके बाद कॉल लगाना स्टार्ट कर देते हैं।
0: अच्छा पूरी डायरी आप मेंटेन करती हैं?
1: जी। अच्छा अभी तो हमने एक नया इंस्टाग्राम पे चैनल अपना बना रखा है जिसमें अच्छा। हमारी जो भी दिनचर्या की होती है सबकी नहीं डालते हैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: लेकिन हमारी जो कुछ फेवरेट आर्टिस्ट हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग हम इसमें अपलोड कर देते हैं।
0: क्या बात है, तो बड़ी अच्छी बात है, आप मतलब इतनी तैयारी करती है। पीछे बच्चे आप ही के है ना? पीछे
1: बच्चे
0: पीछे आवाज आ रही है बच्चों की?
1: नहीं हमारी तो शादी
0: नहीं दीदी, मतलब आपके बच्चे, मतलब आपके भाई के बच्चे या किसी और के बच्चे?
1: बिल्कुल दीदी के बच्चे जो पूरा दिन हमें परेशान करते हैं।
0: तो देखिए पीछे चिल्ला रहे हैं ना बच्चे?
1: नहीं दीदी वो फोन में शायद आवाज कुछ कर रही है वो।
0: अच्छा अच्छा,
1: अभी तो यहाँ कोई नहीं हमारे आसपास।
0: अच्छा तो रोशनी सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने मैं कॉल करी। दूसरी बात ये कि ये जो गाना आपने पसंद किया है ये आप किससे सुनवाना चाहेंगी?
1: सबसे पहले आपको
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बबीता राव जी गोसाईगंज लखनऊ से, और हमारी नीली शर्मा दीदी हैं जो रूपपुर चंदेला उन्नाव से, और जो भी सुन रहे जितने भी हमारे लिए सभी को डेडिकेट है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। बबीता से आपकी कांटे की दोस्ती है क्या?
1: बहुत ज्यादा ही हो रखी है, और फिलहाल हमारी रोज तो बातचीत होती रहती है।
0: अच्छा ये कांटे की दोस्ती क्या होती है, इसी के मतलब इसका मतलब क्या होता है कांटे की दोस्ती?
1: ये तो मुझे भी नहीं पता, आप बताइए।
0: ये हमें भी नहीं पता, अभी एकदम दिमाग में आया कि कांटे की दोस्ती लोग कहते हैं, मतलब काट लिया तब दोस्ती, ऐसे कुछ क्या या कांटा
1: नहीं,
0: कुछ
1: नहीं, हमारी सिर्फ एफएम रेनबो से ही है।
0: लेकिन अब आप देखिए रेनबो का कितना शुक्रिया अदा कीजिए आपकी आपकी इतनी अच्छी अच्छी दोस्ती
1: है। बहुत मतलब मानती हूँ रेडियो को कि हमारे इतने प्यारे प्यारे लिसनर और हमारी इतनी प्यारी प्यारी जो फ्रेंड्स हो रखी है, ये नीरू शर्मा दीदी बबीता राव जी जो हम सब एफएम रेनबो से ही मिले।
0: सही बात है, बहुत बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके रोशनी, और बबीता नीलू और जितनी भी आपकी फ्रेंड्स हैं सबको ये गाना हम डेडिकेट करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर कॉलिंग।

0: वेल टाइम हो चुका है 7:42, तरन्नुम है आपके साथ और प्रोग्राम चल रहा है हेलो एफएम। बात करते हैं हमारे जो नेक्स्ट कॉलर हैं उनसे बात करते हैं। हेलो
1: हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम।
0: जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रही है?
1: जी गुलफ्शा सिद्दीकी, संडीला से।
0: जी गुलफ्शा बताइए, गुलफ्शा आपके नाम का मतलब क्या है? गुल अफशा।
1: जी जी मैम।
0: जी बताएं क्या मतलब है इसका?
1: हमेशा खुश रहना।
0: अरे वाह,
1: मतलब बहुत सारे माने हैं।
0: नहीं, एक मायने बताइए जो बहुत अच्छा वाला हो।
1: सबसे अच्छा तो यही है, हमेशा खुश रहना।
0: तो आप हमेशा खुश रहती हैं?
1: जी जी मैम, हमारे आसपास जो लोग रहते हैं वो भी खुश रहते हैं हमसे।
0: अच्छा, ऐसा क्या करती हैं आपके सब लोग खुश रहते हैं आपसे?
1: मैम हंसते रहते हैं हमेशा।
0: हंसते रहती हैं? तो कभी कभी ये नहीं होती, लोग कहते हैं कि हर टाइम हंसती रहती है, कभी ऐसा नहीं कहते लोग?
1: तो लोग कहते हैं कहने दे।
0: ये बात हुई ना कि लोग कहते हैं कहने दे,
1: दुनिया की सुनेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे।
0: क्या बात है, क्या बात कह दी आपने, क्या खाया आपने आज ये बताइए आप।
1: दिल की सुनो।
0: दिल की सुनती हैं आप हमेशा?
1: जी मैम।
0: बहुत अच्छी बात आपने।

0: पर
1: आपने पता है मेरा 1 ग्राम दिल जीत लिया, पूरा तो नहीं लेकिन 1 ग्राम दिल जीत लिया आपने। आपकी बात हमें याद रहेगी हमेशा कि अपने दिल की सुनो। कितनी बार अपने दिल की सुनी है आपने?
0: लेकिन कभी कभी सुनना पड़ता है तो कर नहीं पाते
1: हैं। यस एग्जैक्टली यही होता है दिल की आदमी
0: है, क्योंकि कभी कभी मजबूरी ऐसी फंस जाती ना तो
1: दिल देखिए छोटा होता है, दिल छोटा होता है, फुदक फुदक के बताता रहता है ऐसा करो ऐसा करो ये करो वो करो,
0: कुछ और होता है मिलता कुछ और
1: मिलता है। कुछ और है और दिल तो है ही, फिर नॉटी नॉटी है ना। चलिए बताइए गाना किसको सुनवाना चाहेंगे आप?
0: सबसे पहले आपको
1: जी,
0: सबसे पहले आपको और शमा परवीन है, साहिबा अंसारी है, साजिया अंसारी है, मह अंसारी है,
1: मतलब जो आपका पूरा ग्रुप है जो उर्दू में
0: सब रेडियो के जरिए मिले हैं।
1: हाँ जो मतलब आपका गिरोह है ग्रुप है उसी को सुनवाएंगे आप?
0: जी मैम जितने लोग सुन रहे हैं सभी को।
1: अच्छा जितने लोग सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया गुलफशा फोन करने के लिए। 7:44 हो चुके हैं और बारिश नहीं मोहब्बत बरसा दे और सावन आया है ये ट्रैक आप तक।

0: 7:47 हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है, हेलो एफएम तरन्नुम है आपके साथ और मेरे साथ लाइन पर कोई और है, उनसे बात करते हैं. हेलो
1: हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम.
0: जी वालेकुम, कौन बोल रही है? साहिबा अंसारी, इससे पहले गुलफशा, उससे पहले रोशनी. मतलब आप लोग हैक वैक कर लेते हैं क्या फोन को कि आप लोगों के सबके नंबर आते हैं?
1: जी नंबर तो आते हैं, हम लोग सुबह भी लगाए थे, एक साथ ही सारे लोगों ने लगाया था एक लाइन से.
0: कितनी खुश हो रही है, ऐसा लग रहा है कि होल्ड बंद ही नहीं हो रहे हैं बात करते करते क्या कहना चाहेंगी साहिबा?
1: मैम कहना हमारा गाना मैम बजा दीजिए.
0: अच्छा कहेंगे कुछ नहीं, मतलब ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि मतलब आप कुछ कहेंगे नहीं, बताइए.
1: मैम क्या कहें,
0: कुछ नहीं कहेंगे, चलिए कोई बात नहीं है, गाना फिर हम सुनवा देते हैं ऋचा को, अंजू दी को, अनवारुल को, विजय को और सबको गाना सुनवा दें फिर हम.
1: जी अंजू मैम तो आपके पीछे आ भी चुकी होंगी आज.
0: अच्छा आपको कैसे पता अंजू हमारे पीछे आने?

0: वाली?
1: वो आई थी जो है शनिवार को आई थी, तो बता रहे थे हम आज रात के 8 बजे आएंगे मंगलवार।
0: अच्छा, वो बता रही थी कि वो आएंगी, और अगर हम कहें वो नहीं आई है तब?
1: पता नहीं, हम तो देख नहीं सकते।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। 7:49 हो चुके हैं और साथ ही साथ स्टूडियो में मेरे जस्ट पीछे कोई खड़ा हुआ है। और जी जनाब, बताएं कैसे आप स्टूडियो में बिना मेरी इजाज़त अंदर आ गए?
2: भाई, दरवाज़ा खुला हुआ था।
0: हाँ,
2: कुंडी लगी नहीं थी।
0: तो मतलब कोई भी दरवाज़ा खोले रहेगा और आप बिना परमिशन अंदर कैसे आएंगे? कितना खुश हो रहे हैं, कितना खुश हो रहे हैं। और आवाज़
2: आपको देख के खुश हो गया भाई,
0: क्या बात है, क्या बात है। और हम आपको सुन के खुश हो गए।
2: तो बस
0: देख नहीं पाए, हम देख नहीं पाए, आप उस तरफ उधर मुंह करे हुए थे और हमें लगा कि भाई कौन है कौन है। जब
2: नहीं, हम तो आए थे इसी जो स्टूडियो में, ये जो आप देखते हैं ना, ये जो साउंड प्रूफिंग होती है, इसमें छोटे छोटे से छेद बने रहते हैं।
0: तो क्या इसमें से झांक के आए?
2: तो एक शेर है कि रोक सकता हमें जिंदा ने बला क्या मजरू, हम तो आवाज है दीवारों से छन जाएंगे।
0: क्या बात है,
2: वैसे ही आ गए,
0: इसीलिए छन्निया छन्निया बनाई गई है। फिलहाल एक ट्रैक आ रहा है आप तक और साथ ही साथ, यस एग्जैक्टली, जेंदा नशा आप तक। और 7:50 हो गए हैं, सुनते रहिए रेनबो।

0: ਨਸ਼ਾ।
1: ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੀ ਮੇ ਬਾਤ ਕਰ ਲੈਤੇ ਹੈਂ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਲਾਈਨ ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ।
2: ਹੈਲੋ
1: ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ
3: ਹੈਲੋ
1: ਜੀ,
3: ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ?
1: नहीं आ तो रही है, लेकिन अभी तो लड़की की आवाज़ लग रही थी, अब आपकी आवाज़ लग रही है। मतलब आप कौन बोल रहे हैं?
3: तो हमको भी तो लाइन मिली है ना, हम
1: अच्छा अच्छा अच्छा जी, बताएं कौन बोल रहे हैं, शुभ नाम बताइए।
3: मिंटू तिवारी, ग्राम बसाना, तहसील जिला फतेहपुर से बोल।
1: अरे मिंटू जी, इतने दिनों बाद आपने कॉल की, कहाँ थे आप इतने दिनों से?
3: नहीं लगाते तो हाँ, मतलब उस बार आई थी, आप जब फोन उठ गया तो आपने होल्ड कर दिया, लेकिन बात ही नहीं किया आप।
1: अच्छा, ऐसा हुआ था क्या? तो देखिए अभी अभी देखिए, आप खुद देखिए।
3: एक मिनट सुनिए हमारी भी बात।
1: जी जी बताइए।
3: आप आती है प्रोग्राम तो अच्छा करती है, आपकी आवाज इतनी अच्छी है कि हर आरजे से अच्छी है आवाज, लेकिन थोड़ा आप कॉल नहीं लेती जाता है, ये गलत करती है थोड़ा।
1: मतलब क्या क्या करना चाहिए आपके साथ? नहीं, किसी नहीं, और
3: नहीं, मतलब कॉल रिसीव करनी चाहिए, नहीं कॉल लगती है उसकी।
1: अरे मिंटू, मिंटू जी मेरी बात तो सुनिए आप, अभी देखिए इतनी इतनी देखिए कॉल ले रहे हैं हम, अब लोग दो बातें अपनी करते हैं, फिर दो बातें हम करते हैं, फिर पांच मिनट का सॉन्ग सुनते हैं।
3: ठीक है, जब फोन लग जाता है तो इतनी मुश्किल से लगता है फोन, हमारा मतलब जो आरजे आ जाती है स्टूडियो में उनको कॉल रिसीव, जैसे आप एक दूसरे नंबर पर लिए हैं कॉल।
1: जी जी,
3: जब आ जाते बगल में रहते उनको बोल दीजिए कि आप कॉल रिसीव करते
1: अच्छा,
3: रहिए।
1: अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो दूसरी लाइन पर लोग हैं उनसे भी बात करें, और अभी जो हमारे बात कॉलर मतलब जो एंकर होंगे वो दोनों लोग हम लोग साथ में मिलके।
3: अच्छा अच्छा,
1: ये आपने जो आज बात बताई ना मिंटू जी, ये हम लिख के जाएंगे आज अपनी डायरी में।
3: नहीं लिख के नहीं जाइए, ये ऐसा नहीं होता, मतलब कॉल लगती कॉल उठाई नहीं जाती, ये गलत होता है। आपका प्रोग्राम हम लोग इतनी मेहनत से मतलब फोन करते हैं, फोन पे अगर जाती है घंटी तो उठता नहीं, तो ये गलत बात है ना
1: मिंटू जी, ऐसा नहीं है। आप नहीं समझते, आप नहीं समझते। चलिए बताइए कि आप गाना किसको सुनवाएंगे?
3: ये गाना तो हम भले सुनाएंगे आपको, जो आपके बगल में बैठे अनवारू सर को।
1: अच्छा,
3: आप जितने आपके एफएम के आरजे उन सभी के लिए, प्रभाकर तिवारी जी पर, रसूलपुर गुजरात।
1: ये बताइए मिंटू जी, आप थे कहाँ इतने दिनों से?
3: नहीं हम तो यहीं थे, अपने गांव में थे, प्रोग्राम सुनते आप फोन लगाते हैं एकदम।
1: अच्छा चलिए, बहुत अच्छा लगा। आप
3: थोड़ा हम अपने भाई सुना ले रहे हैं ना थोड़ा।
1: जी जी बिल्कुल,
3: बड़े भाई विनोद तिवारी प्रमोद,
1: मेरा प्रणाम कहिए अपने बड़े भाई को।
3: हाँ हाँ, प्रणाम स्वीकार है मेरे भाइयों को। लेकिन मैडम जी आप आया करिए तो कॉल उठा लिया जी।
1: अच्छा मतलब, देखिए आज आपकी कॉल हमने उठाई ना।
3: और इटावा से हो गए हमारे राहुल भाई हो गए, और प्रकाश पासवान जी हो गए, और जितने लोग
1: जी, बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। 7:56 हो चुके हैं, तो अब तरन्नुम को दीजिए इजाजत इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए। इंशाल्लाह जल्द होगी मुलाकात किसी और दिन किसी और वक्त, लेकिन चैनल यही रहेगा जिसे हम और आप प्यार से कहते हैं द हार्ट बीट ऑफ लखनऊ। तो चलते हैं, शुभ रात्रि, शुभ बखैर, गुड नाइट। अनवारुल रहेंगे आपके साथ।

नमस्कार, रात के 8 बजे हैं। सुनिए मुख्य समाचार। प्रदेश के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने आज राज्य में 16 सीएफसी परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में श्री सचान ने कहा कि सीएफसी परियोजनाओं में 90% तक सरकारी अनुदान और 10% उद्यमियों का योगदान रखा गया है, ताकि छोटे उद्यमियों को आधुनिक मशीनरी, डिजाइन परीक्षण, स्किल ट्रेनिंग और कॉमन टूल्स जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएफसी को जनहित से जोड़ते हुए व्यापक प्रचार प्रसार अभियान चलाया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड द्वारा संचालित माटी कला कौशल विकास योजना के अंतर्गत रामपुर में 15 दिवसीय विशेष शिल्पकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। योजना के तहत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में माटी कला कार्य से जुड़े कुम्हार एवं परंपरागत कारीगरों को आधुनिक तकनीक, आकर्षक डिजाइन, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन एवं विपणन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी भूपेन्द्र सिंह ने बताया, इच्छुक कारीगर 29 मई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्व परिषद के अधीन लेखपाल के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 21 मई को राज्य के 44 जिलों में मुख्य परीक्षा आयोजित करेगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक की तरफ से कल जारी सूचना के अनुसार परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को आवंटित जिले की अग्रिम सूचना आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। आगरा के थाना कमला नगर क्षेत्र में आज यमुना नदी में नहाने के दौरान 6 बच्चे डूब गए। पीएसी और गोताखोरों की रेस्क्यू टीम ने बच्चों को नदी से बाहर निकाल लिया। सभी को गंभीर हालत में एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उपचार के दौरान 4 बच्चों की मौत हो गई। 2 बच्चों का उपचार जारी है। पुलिस उपायुक्त नगर सैयद अली अब्बास ने बताया कि सभी बच्चे एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आगरा आए थे। प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में आज हुई तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं और आसपास के जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से कई इलाकों में आवागमन बाधित हो गया। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आगामी 24 घंटों में प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने का अनुमान है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई,
1: शाम होने को है,
0: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

कि दरवाजा खुला हुआ था और इसलिए हम हाजिर हो गए, दाखिल हो गए आपके करीब। 8:04:43 हो चुके हैं। इश्क के शोले को भड़काओं के कुछ रात कटे, दिल के अंगारे को दहकाओं के कुछ रात कटे। जिंदगी की भाग दौड़ में ऐसी बहुत सारी शामें गुजर जाती हैं, बहुत सी रातें आती हैं जो याद दिलाती हैं। खुशी छोटी छोटी जीतों में बसती है, तो फिर खूबसूरत इस लम्हे को, इस महक को अपने सीने से लगा लीजिए, मुस्कुरा दीजिए थोड़ा सा। मैं आपका दोस्त अनवारुल हसन आपके साथ हूं। खूबसूरत लफ्जों की रवानी के सफर में आबशार आप तक पहुंच रहा है 100.7 FM रेनबो पर।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM

मुसाफिर की तरह आए हैं और सुना है बहुत कुछ तुम्हारे बारे में, खासकर तुम्हारी आंखों के बारे में, और ये भी सुना है कि डूब कर मर जाते हैं अक्सर लोग इसमें। बहुत खूबसूरत है तुम्हारी आंखें, दिल को छू लेने वाली जादू भरी निगाहें हैं तुम्हारी, जैसे सितारों का समंदर हो जिसमें डूब जाते हैं इंसान। हर झलक में छुपी है वो बातें जो दिल की धड़कनों को और बढ़ा देती हैं। याद है वो शाम जब तुम्हारी आंखों ने पुकारा था, काली काली सी पुतलियां जैसे काजल की लकीरें खींची हों और उनमें खो गया तो दुनिया ही भूल गया। ऐसा लगा कि सब कुछ तो बस यही है अब। खुशबुए इश्क बिखेरती हैं वो हर दम, तो आसपास चीजें महक उठती हैं। खूबसूरत आंखें हैं तुम्हारी, इनकी महफिल में आया तो लौटना ही भूल गया। दिल कहता है बस इन्हीं में बस जाऊं, बाहर ना निकलूं। तुम्हारी ये आंखें हमेशा यूं ही चमकती रहे और मुसाफिर यहां पर हमेशा अपने रास्ते यूं ही भूलते रहे।

जमी से आसमानों तक धनक के रंग बिखरे हैं, झलकते सुरमई मंजर मेरी आंखों में उतरे हैं। यही जो रंग दिखता है कई रंगों का महवर है, मोहब्बत नीलगुं चादर, मोहब्बत हुस्न का सागर, मोहब्बत एक सफीहा है, मोहब्बत एक सलीका है, मोहब्बत साज है दिल का, मोहब्बत राग साहिल का, मोहब्बत रंग मंजिल का, मोहब्बत जोड़ती है दिल, मोहब्बत तोड़ती है दिल, मोहब्बत दिल नशी नगमे सुनाती है, मोहब्बत में हमेशा दर्द हारा है, मगर कभी कभी मोहब्बत दर्द दर्द दर्द और दर्द के नगमे सुनाती है। तो मोहब्बत और अकेलापन दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं कभी कभी, क्योंकि उस अकेलेपन में जब मोहब्बत की याद सताती है तो जितना सताती है उतना ही तन्हाई और जाग जाती है। 8:20 हो चुके हैं। मैं आज आबशार में आपका दोस्त अनवारुल हसन आपके साथ 100.7 FM रेनबो सुन रहे हैं आप।

और अगर तुम सामने ना हो और ये एहसास हो कि अब तुम नहीं हो, तो ये एक बहुत नाजुक और गहरी बात है जो अक्सर किसी के जाने या बिछड़ने के बाद महसूस होती है। खालीपन एक उदासी जो दिल को तकलीफ भी पहुंचाती है। इसमें एक दर्द भी छुपा है, एक याद है और शायद एक अधूरी दास्तान भी। अब तुम नहीं हो, फिर भी हर जगह तुम्हारी कमी है। हर लम्हा हर बात बस तुम्हारी यादों की नमी है। और ये सवाल अक्सर दिल से निकलता है कि जब कोई नहीं है तो कैसे रहें तुम्हारे बिना। कोई बहुत अपना, बहुत करीब हमारी जिंदगी से दूर चला जाता है और ऐसे में भारी हो जाता है दिल और हर चीज अधूरी सी लगती है। तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूं, हर सांस में तुम्हारा नाम है, तुम्हारी यादों का सहारा था, वरना इस दिल को संभालूं कैसे। तेरे बिना सूनी है राहें, तेरे बिना अधूरी है बाहें, तेरी हंसी से थी रोशनी और अब सिर्फ अंधेरे हैं जो छा रहे हैं जहन पर।

उम्मीद भी करेंगे और दुआएं भी करेंगे कि किसी भी तरह की गम की कोई भी घटाएं आपकी जिंदगी में न छाने पाए। किसी का इश्क किसी का ख्याल थे हम भी, गए दिनों में बहुत बाकमाल थे हम भी, हमारी खोज में रहती थी तितलियां अक्सर कि अपने शहर का हुस्नो जमाल थे हम भी। जमी की गोद में सर रख के सो गए आखिर, तुम्हारे इश्क में कितने निढाल थे हम भी। लेकिन ये जिंदगी यूं ही कायम रहती है, चलना पड़ता है मोहब्बत के साथ। अगर इसे गुजार लिया जाए तो जिंदगी आसान हो जाती है। इजाजत लेने का वक्त आ रहा है, थोड़ी देर में हम आपको समाचार संध्या के लिए दिल्ली ले चलेंगे और फिर 9 बजे लौटेंगे रेनबो कैफे के साथ, और 10 से 12 भी आपके साथ इस सफर को हम अंजाम देने वाले हैं जब बिखरेगी रजनीगंधा की खुशबू। फिलहाल इजाजत दीजिए अनवारुल हसन को, मिलते हैं थोड़ी देर में। शब्बा खैर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक संबंध में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। जांचकर्ता अब संदिग्ध नेटवर्क के विस्तार और परीक्षा से पहले प्रश्न पत्रों के प्रसार से जुड़े धन के लेन देन की जांच कर रहे हैं। दल ने कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। सूत्रों के अनुसार इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। अगले दिन 4 नीट परीक्षार्थियों को भी गिरफ्तार किया गया। उधर नासिक पुलिस ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर 2 गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानीसामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न देने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। सरकार को अम्मा मक्कल मुनित्र कड़गम के एकमात्र विधायक एस कामराज का भी समर्थन प्राप्त है, जिन्हें आज ही उनकी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय कल से ही विश्वास मत से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं से बैठकें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंत नियोग

असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा सहित चारों मंत्रियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने कुशल प्रशासक के रूप में पहचान बनाई है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। इस बीच पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। न्यायालय ने आरोपियों को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दो कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसको कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं।
2: ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक सटीक, लक्षित और नपातुला जवाब था। इसका उद्देश्य उन आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना था जो न केवल पाकिस्तानी राज्य द्वारा प्रायोजित है बल्कि पाकिस्तान से और उनके इशारों पर चलता है। अब यह उन राष्ट्रों को ही तय करना है, उन पर ही निर्भर करता है जो स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं कि वे इस बात पर आत्मचिंतन करें कि क्या आतंकवादी ढांचे को बचाने के प्रयासों का समर्थन करना उनकी प्रतिष्ठा और वैश्विक साख को प्रभावित करता है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। श्री शाह ने कहा कि इस कदम से अवैध खातों का तेजी से पता लगाया जा सकेगा और उन्हें समाप्त किया जा सकेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आर्थिक, तकनीकी अथवा भू राजनीतिक हर तरह की बाधाओं का सामना करने में सक्षम है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि खंडित भू राजनीतिक और व्यावसायिक परिस्थितियों के कारण दुनिया हर दिन संकटों का सामना कर रही है, लेकिन भारत ने लगातार प्रतिकूल परिस्थितियों को अवसरों में परिवर्तित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने की खरीद टालने और विदेश यात्रा से बचने की अपील एक सकारात्मक कदम और एहतियाती उपाय है। उन्होंने कहा कि देश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा

0: इस समय विपक्ष को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए।
1: विपक्ष को चाहिए कि वो पैनिक ना फैलाए, भ्रम की राजनीति ना करे और आपदा में अवसर की खोज और आविष्कार ना करे। और जिस तरह से कोविड की महामारी में भी विपक्ष ने ऐसी ही भूमिका निभाई थी, लेकिन भारत कोविड की महामारी से उभर पाया और मजबूत होकर निकल के आया, वैसे ही ये जो वैश्विक संकट है, चुनौतियां हैं इसमें, लेकिन भारत में वो मजबूती है कि इन चुनौतियों के सामने मजबूती से खड़ा भी रहेगा और मजबूत होकर उभर के आएगा।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
2: आईसीएसईआर समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये आईसीएसईआर के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स चिकित्सा नवाचार और स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्टता के क्षेत्र में देश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। आज नई दिल्ली में एम्स के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि एम्स ने किफायती दरों पर रोगी देखभाल और आधुनिक चिकित्सा के उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच बंबई शेयर बाजार में लगभग 2% की गिरावट आई है। अन्य आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
3: बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 1.9% के नुकसान से 1456 अंक लुढ़ककर 74,559 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.8% की गिरावट से 436 अंक गिरकर 23,380 के स्तर पर रहा। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 32 पैसे की गिरावट से 95.63 रुपए प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर दर्ज हुआ।
0: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2025-26 में 1,98,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है। ये लगातार चौथा वर्ष है जब बैंक मुनाफे में रहे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह प्रदर्शन तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। गुजरात में जनगणना का पहला चरण 1 जून से शुरू होगा। लोगों को पहली बार भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वगणना पोर्टल se.census.gov.in के माध्यम से जनगणना में शामिल होने का अवसर मिलेगा। 17 से 31 मई तक लोग पोर्टल पर स्वगणना पूरी कर सकेंगे। 1 से 30 जून तक नामित जनगणना अधिकारी घर घर जाकर जानकारी एकत्र करने के लिए परिवारों की सूची तैयार करेंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने आज रीभोई जिले के भोईरिम्बोग में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य राज्य के पारंपरिक रेशम उद्योग को मजबूत करना और बुनकरों के लिए बेहतर बाजार पहुंच बनाना है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन में पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया के पुत्र एरवियान सिहा और बगास मोलाना को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि हरिहरन, अमसा कारुनन और एमआर अर्जुन तथा महिला डबल्स में रितुपर्णा श्वेतापर्णा पांडा को हार का सामना करना पड़ा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में लक्ष्य फोगाट ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि 4 अन्य मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल मुकाबलों में कांस्य पदक हासिल किया। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटन्स ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण जल्द ही समाप्त होने वाले हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को 19 मई से पहले यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए mygov.gin पर लॉगिन कर सकते हैं। सीबीआई अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके पार्टी में फूट, 30 विधायकों का बड़ा गुट।

जे की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत दो दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

9 बज चुके हैं, 9 बजने के साथ साथ 47 सेकंड भी हो चुके हैं और मैं फिर से वापस लौट चुका हूँ, आ चुका हूँ आपके साथ, और इसलिए भी क्योंकि आपके खूबसूरत से जो मेल हम तक पहुँच रहे हैं उनको भी पढ़ूँ, कुछ प्यार मोहब्बत की बातें करें, यानी हंसी मजाक की बातें करें, है ना, गलत मत समझिएगा। नमस्कार, एक मिनट हो चुका है, मैं आपका दोस्त अनवारुल आपके साथ हूँ और बस यही कहेंगे कि आप भी थोड़ा सा और एक्टिव हो जाइए और इसीलिए इस प्रोग्राम को लेकर हम आते हैं रेनबो कैफे। आज मौका है तो बस बजाइए थोड़ा सा जोर जोर से।

हमारा होता है। वाह वाह क्या बात है। अनवारुल सर को मेरा आदाब सलाम। और सर आज वाली वो कहावत हो गई, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, अंजू को किसी ने याद किया था, मुलाकात आपसे हो गई, यानी मैं चूहा आ गया, इसका मतलब आप ये कहना चाहती हैं। साफ साफ कह दिए, बिल्कुल मैं बुरा नहीं मानता किसी बात का, अगर प्यार से आप कुछ भी कह दें। सारा पीहू रोशनी बबीता मनु वंदना को मेरा नमस्कार बोल देना। चलिए अच्छा, ये आपको कौन बता देता है कि कौन आने वाला कौन नहीं? हमने तो कल ही से अपडेट कर रखा था भाई सोशल मीडिया पे। हो सकता है कि जिसने जिसको भी सूचना मिली हो, सकता है कुछ और सूचना मिली हो, हम क्यों बताएं क्या हुआ पीछे, है ना। नीरज कुमार जी आपका भी, हेलो डियर आरजे जी, पिंकी रिंकी गांव जगदीशपुर शिवगढ़ दीवानों की शहर जिला रायबरेली से, गुड इवनिंग, शुभ संध्या सभी श्रोताओं को, हम भी कार्यक्रम सुन रहे हैं, शादी में अपनी मौसी की यहाँ आए। ओफो ये पीछे वाले बजा को ही दे रहे हैं, बजाओ भाई इसको बजा, ये हाँ ये बजा के रखो तो इससे ज़रा सा टेम्पो बना रहता है, हाई रहता है ज़रा सा, है ना, मॉरल डाउन नहीं होता है। और देखिए हाँ अगला मेल और पढ़ देते हैं, जैसे मैंने देखिए नाम लिया था इंद्रपाल जी, कहेंगे हमारा नाम ले लिया, अभी तक पढ़ नहीं रहे हैं, इंतजार करा रहे हैं, है ना। तो आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है, समस्त ग्रामीण श्रोताओं की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लिखने वाले हैं ग्राम अमृता अमृता सीतापुर से इंद्रपाल मिश्रा जी। चलिए शुक्रिया आपने मेल किया और आपने सबकी तरफ से कर दिया, ये और भी अच्छा है कि जो बाकी लोग सुन रहे हैं आपने उनका भी जिक्र कर दिया है। हाँ मैं स्टार करता चलूं ताकि पता रहे कि कौन कौन से मेल पढ़े जा चुके हैं। देखा आ गया वही वाला मेल, रेनबो कैफे फिश करने वालों को हमारा आदाब। आपका ये कार्यक्रम मैं रोज़ सुनता हूँ, हमें तो याद हो गया है, मुझे इस कार्यक्रम के गीत बहुत अच्छे लगते हैं। ग्राम वपोर हरहरपुर मटकली जिला बरेली से शाहरुख नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद रदीसी, मोहित अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजी प्रधान। सांस ले ली यहाँ पे हमने, थोड़ी देर में पानी पीना पड़ेगा। फिलहाल एक गाना बढ़िया सा ये बजा दें, अभी आ रहे हैं।

जी जोर से तो आप बजा ही रहे हैं और 9:04:23 भी हो चुके हैं और आपके बहुत सारे मेल भी हम तक पहुंच चुके हैं। जी इंद्रपाल मिश्रा जी, आपका मेल आ चुका है, लेकिन मैं शुरू करता हूं जिसने जी इस प्रोग्राम में जो सबसे पहला मेल हमें मिला। जी ये मेल हमें यहां से शुरू हुआ है। हाँ शैलेश कुमार जी, आपकी आईडी से मेल आया। स्नेहा सोनी नीलू शर्मा रूपू चंदेला से लिखा है, तू चांद मैं सितारा होता, आसमान में एक आशिया हमारा होता, लोग तुझे दूर से देखा करते और सिर्फ पास रहने का

ये बेबी बहुत धीरे धीरे गा रही थी, बहुत अंगड़ाई ले लेके, बहुत धीरे धीरे, थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए है ना, तो जरा सा मजा आता है। बजाओ देखो जैसे ये बजा रहे हैं, ये है ना भरा भरा सा लगता है। 9:10 और 24 सेकंड हो चुके हैं। और जी इससे पता ये चलता है जो आपको इंतज़ार किसी का रहता है, क्योंकि आप लोग जब प्रोग्राम सुनते हैं तो बहुत सारे लोग हमें से जब जाते हैं वाइंड अप करते हैं तो बता जाते हैं अक्सर कि हम आपको कम मिलेंगे, है ना। तो बस वैसे ही अंजू जी बता कर गई थी आपको, और आपने बहुत ध्यान से सुना था। ये भाई ये बहुत बड़ी बात है कि आपने इतनी ध्यान से सुना और आप उनका इंतज़ार कर रहे थे, है ना। तो बस इसीलिए मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें, और ये बात हम लोग को अंदाज़ा रहती है, वो तो हम लोग हंसी मजाक में कुछ भी कह दें। और कभी कभी तारीफ़ें अपने लोगों की तरफ से आती, पता है अभी अंजू प्रोग्राम सुन रही हैं, आ नहीं पाई किसी वजह से, कहीं बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, मगर कान में उनका लगा हुआ है रेनबो, लगातार वो सुन रही हैं। उन्होंने हमारी तारीफ़ कर दी है अभी अभी, उन्होंने कहा कि आपने आबशार बहुत अच्छा किया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके जो ढेर सारे मेल अब तक पहुंच रहे हैं, मैं अक्सर ये बात कहता हूं आपसे कि जैसे दिन भर आपका पूरा गुजरा, तो किस तरह से आपने पूरे दिन को गुजारा, कुछ खट्टी मीठी चीज़ें जो आपके साथ हुई, और ऐसी खट्टी मीठी बातें जो अगर आपके और दूसरे मित्रों को पता चले तो उनके भी थोड़ा सा बाँछें खिल जाएंगी। तो बस ऐसी कुछ बातें अगर आपको भी आपके साथ भी गुजरी हो तो आप बिल्कुल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, जैसे लगातार बहुत सारे लोग हमें मेल कर रहे हैं। ये मेल किसका है देखते हैं भाई। वाकया साफ़ सुथरी सी तस्वीर है वैभव प्रकाश सिंह जी की, लग रहा बिल्कुल नहा धो के खिंचवाई है आपने फ़ोटो, बड़ी अच्छी आई है भाई। हम भी कभी कभी नहा के फ़ोटो फ़ौरन खींच लेते हैं तो साफ साफ आ जाता है ना, साबुन वाबुन से धो के जब मुँह आप आते हैं तो बढ़िया अच्छे लगते हैं, थोड़ी सी खुशबू भी आ जाती है उसमें। FM रेनबो के सभी श्रोताओं में हमारे अजीज़ अनवारुल जी को वैभव प्रकाश सिंह का नागपुर महाराष्ट्र से सब प्रेम राम राम, आपको भी राम राम। प्रोग्राम में मेरा मेल शामिल किया जाता है जिससे हम दूर दराज बैठे लोग जो हैं और हमारे जो दोस्त हैं उनसे भी हमें मिलने का मौका मिल जाता है। भाई वाह क्या बात आपने कही, ये जो मोहब्बत है और ये जो रिश्ते कायम होते हैं दूर से भी, और जिनको आप बार बार कई बार सुनते हैं उनके नाम, जैसे हम लोगों के साथ है कि जो हमारे श्रोता हैं कुछ से तो मुलाकात हो जाती है कभी कभी, कोई कभी मिलने आया, लेकिन ज़्यादातर लोगों से मुलाकात नहीं हो पाती, लेकिन हम लोगों को कभी ऐसा एहसास नहीं होता कि हम आपको नहीं जानते, बिल्कुल लगता है कि हमारी और आपकी मुलाकात बड़ी पुरानी और हम लोग आपसे मिलते रहते हैं। चलिए इस अपनेपन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सुल्तान रजा साहब आपका भी मेल आया है, और आपने अच्छा कुछ लिख के भेज दिया है, लिखा है ना दिन का पता ना रात का, एक जवाब दे खुदा मेरी बात का, कितने दिन हो गए उस यार से बिछड़े हुए, जरा ये तो बता कौन सा दिन रखा है हमारी मुलाकात का। अब ये बात हम कैसे बताएं, हमको बड़ा धर्म संकट में डाल दिया आपने, है ना, तो उनसे पूछिए ना। सीधे भेज दीजिए उनको, उनका व्हाट्सएप नंबर होगा आपके पास। और सुल्तान रजा साहब ने भेजा है, अस्सलाम वालेकुम अनवारुल सर, कैसे हैं आप, उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से सुल्तान रजा, इकबाल रजा, सादिक रजा, मोनिश रजा, जीशान रजा, अफजाल रजा, मम्मी पापा और छोटा सा अमान, आय हाय क्या बात है। चलिए बहुत ये छोटे से प्यारे प्यारे अमान को हमारा भी प्यार। और अगला मेल पढ़ते हैं, जावेद अख्तर साहब आपका मेल है, 7 घंटे पहले आपने ये मेल, आपके सारे मेल एक साथ बताने क्यों दिखाई पढ़ रहे हैं जी, ये वाला पढ़ रहा है हमको, नीचे वाला सबसे ये वाला। अस्सलाम वालेकुम अनवारुल हसन भाई, आबशार कार्यक्रम में आपका अंदाजे बयां बहुत ही खूब था, सभी गजलें बहुत पसंद आई, पॉप टाइमिंग कार्यक्रम की शानदार शुरुआत और आपका हंसमुख अंदाज कार्यक्रम में एक नई जान डाल देता है। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से आपने ये मेल हमें किया है, शमशुल कमर राही, बेगम रुखसार और रकीबा शाहीन, आपने इनके भी नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, चलिए शुक्रिया। और लगातार आप जुड़े रहते हैं, सुनते हैं, ये बड़ी खुशी की हम लोगों के लिए बात होती है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगला मेल पढ़ते हैं, विजय पाल जी आपका मेल है, विजय पाल यादव जी, बबलू यादव, कौशल सिंह, रामवा पोस्ट, ललहुआ, जिला खीरी से हमें मेल करते हैं, और आदरणीय भैया जी को मेरा सादर नमस्ते। आपको

नमस्कार। उम्र के साथ जिंदगी में न जाने कितने बदलाव आते हैं, जिम्मेदारियों के बोझ तले कुछ ख्वाब दबे रह जाते हैं, बदलते मौसम की तरह कुछ चेहरे भी बदल जाते हैं, जो कल तक अपने थे वो भी अजनबी नजर आते हैं। आप शेयर करके आपको बहुत अच्छा लगा, चलिए आपका दिल खुश हो गया। ऐसे ही हमेशा खुश रहिए, अपने आप को खुश रखिए। पॉप टाइम भी आपको अच्छा लग रहा है, आपने धीमे से नीचे ये भी लिख दिया है। चलिए कोशिश करेंगे कि बढ़िया बढ़िया गाने आप तक पहुंचते रहें और आपको पसंद आते रहें। मैं गाना निकाल के रखा था, हम जब होते हैं ना यहाँ तो अक्सर हम बुंदेली को भी जगह देते हैं, कुछ ख़ास मोहब्बत है हमें बुंदेलखंड से भी। इसकी भी एक वजह है, किसी दिन बताएंगे आपको, है ना, जिस दिन आप सुनेंगे नहीं उस दिन बता देंगे। सुनिए प्यारा सा गाना है, हाय हाय क्या बात है, भौजी की बहन को क्या क्या बता रहे हैं, बढ़िया बढ़िया सी बातें ये देखिए, लेकिन क्या बढ़िया अंदाज है।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

मन्नत अनंत मांग के वो निकल गई हैं और हम बिल्कुल मुस्तैद थे यहाँ पर, पानी वानी पी के हम आ गए हैं। 9:23 भी हो चुके हैं, 19 सेकेंड भी, और आपके बहुत सारे और भी मेल हैं जो हम तक पहुँच चुके हैं। ये सन्नाटा फिर हो, अरे हम बजाओ इसे, बजाओ भाई ये। तो जब तक ये साथ में ना हो तब तक मज़ा नहीं आता है, और थोड़ा सा एक माहौल बना के रखते हैं इससे। शुरू करते हैं, आपके इतने देर में आपके इतने सारे मेल और हम तक पहुंच चुके हैं। वकील अहमद साहब, आपका मेल आ चुका है, लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, चलिए बहुत अच्छी बात है। रेडियो कैफ़े नहीं, रेनबो कैफ़े इस प्रोग्राम का नाम है, तो और ये रेडियो पे बज रहा है ना, तो गाने अच्छे बज रहे हैं और आपकी हंसी अच्छी लग रही है। वकील अहमद मंसूरी, कटका हथूरी, ज़िला सीतापुर, आया क्या बात है, क्या देखिए तुकबंदी है। वकील अहमद मंसूरी, कटका हथूरी, यानी देखिए ये जो रारा लगा हुआ है, साथ में अंसारी भी लगा हुआ है, तो बड़ी अच्छी शायरी हो सकती है आप सबके नाम को मिला के। सीतापुर से आपने ये हमें लिखा है, साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, गुलफशां सिद्दीकी, अहमद, यानी सबको आपने लपेट दिया है इसमें, सबके नाम लिख दिए हैं, और जब उनका मेल आएगा तो वो आपको, भाई वाह वाह क्या तरीका है प्रचार का, बहुत अच्छी बात है। कितनी चीज़ें सीखने को मिलती हैं देखिए, जब हम लोग आपके पास आते हैं यहाँ पे और यहीं से चीज़ें सीख ले जाते हैं, कहीं और बता देते हैं, कहीं और से सीख कर आते हैं, यहाँ पर बता जाते हैं। जैसे कि मैंने एक बार बताया था, रास्ते में मैं चला रहा था कोई, और सिर्फ ध्यान से सुनिए कभी कभी आपने जो इर्द गिर्द जो बातें होती रहती हैं, मेरा मतलब ये नहीं है कि चुगली करने लगे कि यहाँ कान लगा के वो दीवारों के, लेकिन दीवारों के कान होते हैं तो दीवारें अपने आप सुन लेती हैं, हालांकि है ना, मतलब किसी ख़राब उससे नहीं, सीखने के लिए सुनना कभी कभी अच्छा लगता है।

कि एक साहब चले जा रहे हैं रास्ते में बात करते हुए मोबाइल से कि अरे भाई तुम्हारा फ़ोन आया था तब हमारे उसमें पैसे ज़्यादा थे नहीं तो हम तुम्हें कॉल नहीं कर पाए, अभी अभी हमने जो है रिचार्ज करा लिया, अब जा रहे हैं घर और जब घर पहुँचेंगे तो हपक के बातें करेंगे। तो ऐसे ही हम भी हपक के आपके मेल पढ़ेंगे, आप हमको भेजते रहिए, हम पढ़ते रहेंगे। अरे वाह वाह वाह बहन दीपन जी आपका भी मेल आ चुका है। सर जी मेल थोड़ा बड़ा हो गया आपके हिसाब से, पढ़ लीजिएगा, आपके हिसाब से नहीं अपने हिसाब से कहिए। आज 100.7 रेनबो पर आपका प्रोग्राम रेनबो कैफे सुन रहा हूँ, सच कहूँ तो मन खुश हो गया है। आज के संगीत के चयन और आपके पेश करने के अंदाज ने वाकई धमाल मचा रखा है। आज सुबह सर जी जैसे ही आपकी अच्छा अच्छा आपने पोस्ट देख ली थी तो पूरा दिन आप इंतजार कर रहे थे और साथ में देखिए अब गाने तो अच्छे अच्छे ऑलरेडी बने हुए हैं, इसमें मेरा कोई उसमें योगदान नहीं है कि आप कहें बड़े अच्छे गाने बजा रहे हैं, हम थोड़े बना रहे हैं। अरे इतने अच्छे अच्छे बने बजाओ भैया, पीछे पीछे बजाए रहो, ये बंद हो जाता है इनका, जाने खाना वाना खा के नहीं आए क्या, 9:26 हो गए हैं, खा के तो हम भी नहीं आए हैं। खैर आगे आपने लिखा है कि आपकी आवाज़ में वो जादू है जो हर दिल को छू जाता है, रेनबो कैफे का हर नगमा समा खुशियों का बनाता है, और आपकी सादगी आया सादगी कहाँ से देख लिया आपने, सफ़ेद शर्ट में देख लिया था क्या हमें कहीं पर। आपकी सादगी और अंदाजे बयां है सबसे जुदा, तभी तो आपकी बातों से रेडियो का हर लम्हा मुस्कुराता है। भाई कोशिश तो हम लोग यही करते हैं कि आपके साथ आप सबके साथ एक खूबसूरत रिश्ता यूं ही कायम रहे, क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ हमारा व्यक्तिगत नहीं है, ये रिश्ता हमारे रेनबो का है, ये रिश्ता हमारी आकाशवाणी का है ना, और ये हमेशा यूं ही कायम रहे। ऐसे शानदार प्रोग्राम कम सुनने को मिलते हैं जो श्रोताओं को शुरू से अंत तक बांधे रहे, इस बेहतरीन मनोरंजन के लिए आपका और एफएम रेनबो लखनऊ का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी दो सिस्टर बबीता जी राव और रोशनी रावा जी का नाम ले लीजिएगा। अरे तो हमने तो पहले ही ले लिया, यानी हमने पढ़ा तो ऑटोमेटिक हो गया, भाई वाह क्या बात है। देखिए ऐसा भी होता है, हम चाहते कि ना लें तो भी लेना पड़ता अगर हम इसको एज इट इज़ पढ़ देते, पढ़ दिया है और आपने फिर एक खूबसूरत सा एक पोस्टर बना के यहाँ पर भेज दिया है, तो ये पोस्टर अब आज कुछ नहीं कहेंगे। देखिए अब आप समझ लीजिए, इसको कहते हैं डैश डैश डैश डैश डैश, है ना, इसका मतलब आप समझ गए और कुछ और लोग समझ गए जो समझदार हैं, है ना, कहते हैं कि समझने वाले समझ गए हैं, आगे कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि अनाड़ी तो हम खुद हैं। रोशनी रावा जी आपका मेल आ चुका है, नमस्ते अनवारू सर जी आप कैसे हैं, अरे हम तो बहुत बढ़िया हैं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, पॉप टाइम नहीं चल रहा है आज, चल रहा है रेनबो कैफे। अच्छा कन्फ्यूज़ हो गए होंगे थोड़ा सा, हम लोग खुद कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, हम आपको क्या कहें, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, हम लोगों का मतलब हम भी कभी कभी अपने अंदर बहुत सारे लोगों को रखते हैं, तो बस इसीलिए मैंने हम लोग कह दिया। मेरा नाम रोशनी रावत है, ग्राम व पोत बहमना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव से चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रही हूँ। नीलू शर्मा दीदी बबीता राव को राधे राधे बोल दीजिएगा। चलिए भाई राधे राधे, जो जिनका भी आपने नाम लिखा है उन सबको भी, और प्रतिभा शर्मा जी आपका भी मेल पढ़ दें, और ये जो पीछे बजा रहे हैं इनसे कहें जरा जरा तेज बजाओ यार बजाओ। ये मैं प्रतिभा शर्मा जिला सीतापुर से ईमेल कर रही हूँ चुलबुल सर जी को, हमारा ये नया नाम रख दिया हमारा आपने, अभी किसी ने रखा था हसमुख सर जी, अब आपने चुलबुल सर जी, चुलबुल सर जी, हाँ चुलबुलाते तो हम बिल्कुल रहते हैं, कुछ नहीं समझ में आता तो ऐसे ऐसे खुजाते रहते हैं अपने हाथ को, इससे भी चुलबुलापन बढ़ता रहता है। चुलबुल सर जी को मेरा चुलबुला सा नमस्ते, सर जी प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और आपको मेरा पूरा परिवार सुन रहा है, वही वाह क्या बात है, रेनबो की खासियत ही यही है कि पूरा परिवार इसे सुन सकता है और सुनता है, ये आकाशवाणी की मर्यादा है और आकाशवाणी की खासियत भी यही है। और अब बड़ा खूबसूरत सा एक मेल जिसमें कुछ चीज़ें बोल्ड कर दी गई हैं, कुछ चीज़ें सिंपल सी लिखी हुई हैं, कुछ सितारे भी हैं बिल्कुल। डियर आर जी अनवारुल हसन सर जी नमस्कार, अरे बड़ा आपके कितना बड़ा नमस्कार के साथ आपने मेरा नाम आर जे भी अनवारुल हसन जी भी सर जी भी, सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरे नमस्कार। जब भी आप इस प्रोग्राम को होस्ट करते हैं तो गाने तो ज़बरदस्त बजते ही हैं, साथ ही शेर व शायरी का जो तड़का बीच बीच पेश करते हैं लाजवाब लगता है, ऐसे ही स्वस्थ बेहतरीन मनोरंजन करते रहिए और हम सभी श्रोताओं का भरपूर प्यार और स्नेह आपको सदैव मिलता रहेगा। हाँ भाई इसकी तो बहुत ज़रूरत है, ये स्नेह ये प्यार यूं ही बनाए रखिए। धन्यवाद प्रिय आर जी आपका, कृष्णकांत सिंह जी ने कैसरगंज बहराई से, वहीं जहाँ पर बड़ी अच्छी एक मिठाई मिलती है और ये खुद ही नहीं जानते, हमसे एक दिन पूछ रहे थे कौन सी मिठाई मिलती है तो हम ले आएंगे, हम इनको क्यों बताएं कि जब बस निकलती है वहां से तो एक जगह पर मिलती है मिठाई, भाई जाने ये जान कैसे नहीं पा रहे हैं, कैसरगंज में तो मिलती है। हाँ राम राज जी आपका मेल भी आ गया, इससे ज़्यादा बताएंगे नहीं, मिठाई लेकर मत आइए।

गा मिठाई मेरी तरफ से खा लीजिए, अगर आपको वो वाली मिठाई मिल जाए हम तो फिर जब निकलेंगे तो फिर ले लेंगे, या कोई आएगा तो ले आएगा। हमारी एक बड़ों को बहुत ख़ास रहती हैं वहाँ, तो वो जब आती हैं तो ले आती है मिठाई। मुझे बताइएगा ना सबको, बदनामी ना हो जाए कहीं हमारी। हाँ, रामराज जी ने क्या लिखा है, श्री गणेशाय नमो, पॉप टाइम रेनबो कैफे, ज़िला रायबरेली गाँव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू, भानु, पप्पू पासी, मनीष, नीरज मिर्ज़ा, नीरज मिर्ज़ा, इमरान बेग, रिजवान भाई, हमारी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार और धन्यवाद कि आपने हमारा मेल शामिल कर लिया। अरे भाई आपने लिखा, ये बड़ी बात है, आप ना लिखते तो हम क्या पढ़ते, है ना। मेरे प्यारे अनवारुल भाई को सादर प्रणाम। अनवारुल भाई मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैंने आपको दिल से याद किया और आप आ गया है, क्या बात है, ये दिल से दिल मिल जाता है ऐसे ही, और आप आ ही गए। आते ही मेरा मनपसंद गज़ल जो आपने पहले नंबर पर पेश किया, अच्छा जवाब कोई पसंद है, चलिए बहुत अच्छी बात है। और आप लिखते हैं कि पूरी रजनीगंधा तक आपका साथ निभाऊंगा। छत्तीसगढ़ से आपने ये मेल हमें किया है, ज़िला बलौदा बाजार, ग्राम तारा शिव से। चलिए मनोज विश्वकर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ रहने वाले हैं, तो हमें डर नहीं लगेगा, जैसे ही डर लगेगा तो हम एकदम से याद करेंगे कि मनोज जी बैठे हैं, मनोज जी से कह देंगे तो बस डर भाग जाएगा। भैया जी नमस्ते, कैसन हैं आप, उम्मीद आए हैं, बहुत नीक लिखना चाहिए, आपने लिख दिया बहुत ना खोएंगे, इतना हमें भी आता है, ऐसा नहीं कि सब अब क्या कहें। वैसे इस समय शादी पार्टी में और नाश्ता कर रहे हैं, दोस्त की बारात में आए हैं। ये मोनू सेठ जी इतनी शादियां अटेंड करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, बहुत ज़्यादा बुलाए जाते हैं भाई, ये बड़ी अच्छे इन्होंने अपने लोगों से बना के रखी है, हमें तो ज़माना हो गया कहीं शादी वादी मिक्का खाना वाना खाए हुए। चलिए गाना बजा देते हैं, ये वाला, ये बुखार वाला गाना आ गया। 9:32 हो चुके हैं और ये खूबसूरत सा प्रोग्राम रेनबो कैफे है जो 100.7 FM रेनबो पर अनवारुल के साथ सुन रहे हैं आप।

0: माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्तानें।
1: वो भूली दास्तां जो फिर याद आ गई।
0: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत अफसाने।

0: महकते हुए दिलकश तराने।
1: खोया खोया चांद, खुला आसमान।
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

जी 9:36 हो चुके हैं। मैं सोच रहा था गाना प्ले कर दूं बिना कुछ बोले, लेकिन जब इस तरफ देखा अपने बाएं तरफ तो देखा कि यहाँ पे कंप्यूटर में इतने मेल आ गए कि मुझे लगता है कि ठीक से आपकी जो भागीदारी है वो सुनिश्चित मुझे भी करनी होगी कि आपने हमें मेल किए हैं तो हम उसको ज़रूर पढ़ें। कौन सा मेल पढ़ना है? ये आयुषी मौर्य जी आपका मेल है। गुड इवनिंग सर जी। सर आप ये अच्छा आप आए पॉप टाइम प्रोग्राम में, चार चांद लग गए और आपकी आवाज़ आपको अच्छी लगती है। आपकी आवाज़ मतलब हमारी आवाज़ इनको अच्छी लगती है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और आपका ये मेल करने का जो सिलसिला है ये हमें बहुत अच्छा लगता है। और ये विलेज मैनीपोस औरा ज़िला उन्नाव से आपने लिखा है और न्यू अशोक नगर से सुन रही हूँ, यहीं रहकर पढ़ाई करती हूँ। तो चलिए अच्छी बात है कि पढ़ाई के साथ साथ आप सुनती भी रहती हैं, और जहां आपको लगे कि पढ़ाई में दिक्कत आ रही तो बिल्कुल मत सुनिएगा, पढ़ाई इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है आपकी। लेकिन बस जब वक्त मिले तो आप थोड़ा सा वक्त रेनबो को भी दीजिए, तो फिर इससे भी थोड़ा सा आपका मन हल्का रहेगा और थोड़ा सा आपका मनोरंजन हो जाएगा। अनुज जी का ये मेल आया है हमारे पास श्रीनगर लखीमपुर खीरे से। गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और एफएम रेनबो पे हमारे दो आरजे नहीं आ रहे हैं। अब दो आरजे के नाम आपने यहाँ पर लिख के भेज दिए, भाई कहीं व्यस्त होंगे, हमें अगर मिल गए तो हम ज़रूर बता देंगे। इसमें से एक तो एक दिन हमको एक प्रोग्राम में मिले थे जो पहले वाले हैं जो आपने नाम लिखा है। बाकी ये थोड़ा सा व्यक्तिगत हो जाती हैं चीज़ें, तो फिर हम लोगों ने चलिए पढ़ लिया है। और मैंने पहले भी आपसे कहा कि अगर इस तरह की कोई भी बात आप जो प्रोग्राम से संबंधित करना चाहते हैं तो बुधवार को आपको 11 बजे सुनते ही है एक ख़ास प्रोग्राम जो हमारे यहाँ से आता है, संदेश आपके गीत हमारे, और उसमें आप अपनी बात कह सकते हैं। अरविंद कुमार दुबे जी का ये मेल है रेनबो कैफे, मैसेज फ्रॉम अरविंद कुमार दुबे, ग्राम धर्मदेवा पोस्ट छठहा ज़िला मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से आपने लिखा है। लिखते हैं कि आपका फनी अंदाज कार्यक्रम प्रस्तुत करने का नया तरीका है, आप किस तरीके को अन्य एंकर अपना सकते हैं? भाई अब किसी पर कुछ थोपिए मत, सबका अपना अपना अंदाज है और मेरा ये तरीका नया नहीं है, वैसे बड़ा पुराना है। भोजपुरी तड़का वाले गाने सुनने में अच्छे लगते हैं, वैसे तो ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, फिर भी आया है, क्या बात है, आपने अपने आप ही वो बात कह दी जो मैं कह देता हूँ यहाँ से, लेकिन फिर भी अपने गाना लिख दिया है कि ये वाला चाहे तो सुना दें, प्ले कर दीजिए। तो देखिए अगर उंगलियां हमारी भी मचल गईं, जैसे किसी ने अभी लिखा था कुछ खास मुझे, तो ऐसे अगर मचली तो हम क्या पता कौन सा बटन दब जाए, गाना बज जाए आपका। अरविंद गोविंद प्रतिमा प्रतिष्ठा तन्वी दीपा श्याम कुमारी आपने भी लिखा है कि ये सारे लोग भी मिर्ज़ापुर में प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। विवेक गौतम जी आपने लिखा कि बस करिए सर सॉन्ग प्ले कर दीजिए। अच्छा

चलिए अब कर देते हैं, लेकिन कौन सा सॉन्ग सुनेंगे आप? ये आपने लिखा नहीं है, और लिखते भी तो फिर हम यही कहते कि भाई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है ये, और बस हम क्यों करें, बस हम करें तो फिर आपका भी मेल क्यों पढ़ें? ये तो आपने, बाकी जो श्रोता हैं, जो लिसनर हैं हमारे जिन्होंने मेल किया है, अगर मैं बंद कर दूंगा तो उन्हें पढ़ नहीं पाऊंगा, तो सबकी मेहनत बेकार जाएगी। तो आपका तो मैंने मेल पढ़ दिया, और बाकी लोगों का ना पढ़ें तो ये अन्याय होगा ना। थोड़ा सा ख्याल रखिए दूसरे लोगों का भी। और इसलिए गुड इवनिंग डियर सर जी, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है, काश खुदा ने हमें SMS बनाया होता, मोबाइल के जरिए तुम्हारे पास आया होता, भले ही तुम पढ़कर डिलीट कर देते मगर कुछ पल तुम्हारे साथ तो बिताया होता। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। ग्राम चक उमरी झरेखापुर जिला सीतापुर, बहुत अच्छा ये मैसेज है। अब और जब हमारी शादी वादी कब बात चल रही थी तो उस वक्त जो है SMS ही चला करते थे, तब ये मैसेज मिला नहीं तो हम भी समझ जाइए आप। आलोक कुमार खरे जी, आपका भी मेल पढ़ देता हूँ। अनवारुल सर नमस्ते, मंसूर नगर शाहबाद पिहानी हरदोई से आपने लिखा है, प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं। चलिए ऐसे ही सुनते रहिए, अब हम गाना बजा दे रहे हैं गुरु रंधावा वाला, ये लीजिए।

जी अचानक से सन्नाटा हो गया क्योंकि वो जो गाना वाना बजा रहे थे एकदम से कुछ चाय पानी करने चले गए। भाई बजाओ भाई कुछ ना कुछ, ये जो पीछे बजता है ये बहुत ज़रूरी है। जी आलोक कुमार खरे जी, आप ने लिखा है मंसूर नगर शाहबाद पिहानी हरदोई से हमें प्रोग्राम सुन रहे हैं और आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, चलिए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया भी। और एक और मेल लिखा है, अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा भाई जाके ढूंढ लीजिए सोशल मीडिया पे, आप नाम ढूंढिए तो आपको हमारे बहुत सारे आरजे मिल जाएंगे। आप कह रहे हैं कि बहुत सारे आरजे को आप देखना चाहते हैं, दीदार करना चाहते हैं, तो जाके वहाँ पे बस नाम लिखना पड़ेगा। नाम तो आपको पता ही है, मेरा नाम तो आपको जानते ही है ना। नाज़िम उस्मानी साहब ने लिखा है हमें महमूदाबाद सीतापुर से, और लिख रहे हैं अनवारुल भाई अस्सलाम वालेकुम, गर्दा उड़ रहा है, ये गर्दा वर्दा देखिए फिर उड़ने लगा, ये हमारी आँख में चला गया तो बस रजनीगंधा रह जाएगी, हम आँख मलते रहेंगे बैठे। चलिए नाज़िम भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बाबू अंसारी साहब आपका मेल भी हमें अभी अभी प्रकट हुआ है यहाँ पर, अस्सलाम वालेकुम अनवारुल सर, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा नाम शामिल कर लीजिए और साथ में फैज़ अंसारी, बाबू अंसारी और गौस मोहम्मद अंसारी, आपने ये तीन नाम लिखे भेजे। और क्या बढ़िया सा आपने एक पॉप गाता हुआ एक बढ़िया सा वो अपने आईडी में खूबसूरत सा एक लगा रखा है फ़ोटो। ब्रजेश सिंह दीपू इटहुआ कैसरगंज बहराइच से, नमस्ते मेरे हसमुख अनवार सर जी, 5 तारीख के बाद से आज जुड़ पाया हूँ अपने FM रेनबो से, कुछ दिक्कत चल रही थी लाइफ में। चलिए भाई हम रेनबो की तरफ से सारे लोग दुआ करेंगे कि कैसे भी दिक्कत कोई भी हो, चाहे वो आपको हो या किसी को भी, किसी को ना हो, सारी समस्याएं हल हो सबकी और खुशी खुशी सारे लोग अपनी ज़िंदगी बिताएं। हमारे साथ आपको शिवम भाई भी सुन रहे हैं, मोनू भैया ने एक फ़ोटो भेज दी है शिवम भैया की, और देखिए फ़ोटो थोड़ी सी तिरछी है, लग रहा है कि सर के बल लेटे हुए हैं, तो ऐसे इसको ठीक कर लीजिएगा, हाँ वरना सर में दर्द हो जाएगा उनके। सर राम राम, मैं पवन पाल फ्रॉम बाज़ार शुक्ल अमेठी से, चलिए आपको भी राम राम और आप हमें सुन रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने और कुछ नहीं लिखा है। विवेक कश्यप जी आपका मेल भी आया है, गुड इवनिंग सर, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, और विवेक कश्यप फ्रॉम सिसैया दरियाना पोस्ट कठौरा ज़िला सीतापुर से, चलिए बस इतना ही लिखा आपने। और जय ने हमें मेल किया है, होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, प्रोग्राम जो है आप कह रहे हैं कि सभी सॉन्ग बहुत अच्छे लग रहे हैं, बस इसीलिए आपने हमें ये मेल कर दिया, चलिए अच्छी बात है, छोटे छोटे से मेल भी अच्छे लगते हैं। और एक और मेल आ चुका है।

नीलू शर्मा जी का मेल है अनवारुल सर, अब हम क्या कहें। जी जी आपने किसी को याद किया है मेरे साथ, तो कि उनके साथ भी आने की कृपा करें जीएमएल में। तो भाई अब जैसा कहा जाएगा हम आ जाएंगे, हमने तो पहले भी कहा था हम बिल्कुल तैयारी के साथ थे, अपनी चादर लेके आते हैं, यहीं बिछा लेंगे, यहीं लेट जाएंगे और सुबह बस उठेंगे, यहाँ की कुंडी कर देंगे बंद, किसी को अंदर आने नहीं देंगे, बस जीएमएल शुरू कर देंगे। चलिए आप अपने प्रयास कीजिए और हम लोगों को जो आदेश मिलता है हम बिल्कुल उसका मन से पालन करते हैं। एम के राज जी आपका मेल कर देते हैं। मुनेश कुमार राज गांव भानपुर हसरवा जिला लखीमपुर खीरी से, सर सर जी को नमस्कार, कार्यक्रम प्रस्तुति हर घंटे लाजवाब है, हर घंटे हम लाइव सुनते हैं। कार्यक्रम में सॉन्ग आपको कुछ अच्छे लग रहे हैं, कुछ आपको नहीं अच्छे लग रहे हैं, बल्कि ना चाहे आप लिख रहे हैं कि कार्यक्रम में सॉन्ग बहुत बढ़िया नहीं है बल्कि बहुत बढ़िया से महा बढ़िया है, पांव धड़कने पर मजबूर कर रहे हैं, क्या करूं रुक ही नहीं रहे। चलिए अच्छी बात है, पांव जो आपके थरथराते रहेंगे ना तो मच्छर नहीं काटेंगे आपको, आप रात भर ऐसे ही सोइए पांव थोड़ा सा थरथराते हुए तो बचे रहेंगे आप, और हम भी कोशिश करेंगे घर जाके, कल मच्छर बहुत लग रहे थे, हवा चल रही थी, मच्छर घुस आए थे कमरे के अंदर, अब हम क्या बताएं। पॉप एमन नवाब संदीला से लिख रही, हेलो अनवारुल सर कैसे हैं, आज आपसे पूछूं या ना पूछूं, चलो नहीं पूछूंगी, आप शर्मा जाएंगे, कहीं मेज के नीचे चले गए थे प्रोग्राम कौन करेगा। हाँ अच्छा पकड़ लिया आपने, ये बिल्कुल सही बात है, हम चले जाते हैं भैया नीचे। लकीरों को कभी मामूली ना समझें, ये माथे पर चिंता, हथेली पर तकदीर, जमीन पर बंटवारा और रिश्तों में दरार बन जाती है। इतनी खूबसूरत सी बात, मतलब हंसी मजाक के बाद आपने बहुत चिंताजनक बात कह दी और बहुत जाहिर है, बहुत ध्यान रखने वाली बात भी है कि ये लकीरें वाकई कहीं ना पड़ें। उनकी तमन्ना में शामिल नहीं हम, सच तो ये है उनके काबिल नहीं हम, एहसान होगा भूल कर भी याद करें वो, जिनको एक पल के लिए भी भूले नहीं हम। आप हमारा एड्रेस बताओ प्लीज़, आप हमारा एड्रेस बताओ प्लीज़। रमाकांत सिंह जी ने ये मेल किया है हमको। अब देखिए एड्रेस हम इस समय भूल गए, हमने किसी और का बता दिया तो जो लोग सुन रहे हैं पता नहीं किसके घर चले जाएं, है ना, आपने हो सकता खाना वाना तैयार करके रखा हो कि हमारे यहाँ आना, यहाँ खाना, वो कहीं और चले जाएं। तो चलिए कुछ नहीं, हम एक गाना बजा देंगे ऐसे। अब गाने को कहो तो ये अपना जो पिन पिन पिन बजाए रहते हैं गाना ही नहीं बजाते, बजा दो भाई।

हाँ भैया जी, बिगड़ने करने वाली बात में हम साथ नहीं हैं। हाँ, ये इसमें हम कोई साथ नहीं देंगे। 9:55 हो चुके हैं और आपके जो मेल बचे हैं वो पढ़ देंगे हम, है ना। अतुल कुमार यादव जी ने लिखा है कि हेलो सर, मैं हमेशा की तरह फिर से लेट हो गया हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मैंने खीरे की दावत के लिए बोला था तो सर ने मेरा पता पूछा था। मेरा पता है, अच्छा अभी आप पूछ रहे थे हमारा पता, बताइए क्या मेरा पता। अच्छा ये दूसरा है, दूसरा मेल है। मेरा पता है ग्राम खुरेहटा पोस्ट धरेचा बाज़ार खैराबाद सीतापुर, जो टोल प्लाजा, मुझे मालूम है यहाँ से जाने में वो सेकंड वाला जो टोल प्लाजा पड़ता है उसके बाद थोड़ा सा रास्ता बस आगे चलेंगे, राइट साइड जो कटा हुआ वो खैराबाद की तरफ चला जाता है। रास्ते बहुत पता है हमको, ये मत समझिए हम रात में जब सो जाते हैं ना तो सपनों में जाने कहाँ कहाँ हो आते हैं, इसलिए पता है। रजनीश पासवान जी ने लिखा है कि रेनबो सुनने वाले सभी लिसनर्स को नमस्ते। श्री अनवारुल हसन सर जी आपको, अरे भाई चरण स्पर्श नहीं, खुश रहिए। आपकी मखमली आवाज़ जो जादू रजनीगंधा में सुनने को मजबूर कर देता, चलिए भैया ऐसे हमारे साथ रहिएगा। एक विनती आपसे कि आपने किसी और के बारे में कुछ भाई लिख दिया है तो भाई चलिए ये बात मैंने पढ़ लिया है, उनके लिए हम उनको भी बिल्कुल जो है बता। अच्छा जमशेद जी की आपने तारीफ़ की है, उनको बधाई मैं बिल्कुल मैं पहुंचा दूंगा। आप द्वारा 8 मई को प्रोग्राम लल्लन टॉप अच्छा प्रेजेंट किया गया था और रजनीगंधा में आपके साथ रहूँगा दर्द से लेकर खुशी तक। भाई क्या बात है, बुद्ध के शहर सिद्धार्थ नगर से आपने हमको ये मेल किया है। और जल्दी से शमशुल कमर साहब आपका भी मेल पढ़ देते हैं। आपने गंज ढुंडवारा से शमशुल कमर राही शाहीन फातिमा अदनान खान अंजू खान और बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मेल का सिलसिला यहीं पर रोक दीजिए क्योंकि अब हम बस एक गाना बजा रहे हैं और उसके बाद समाचारों के बाद फिर रजनीकंधा की खुशबू महकाने आ रहे हैं। तो इजाज़त दीजिए अनवारुल हसन को, अभी रहेंगे काफ़ी देर आपके साथ। नमस्कार।

नमस्कार, रात के 10 बजे हम सुनिए मुख्य समाचार। प्रदेश को देश की स्किल कैपिटल बनाने की दिशा में सरकार कौशल विकास को आधुनिक तकनीक उद्योगों की जरूरतों और डिजिटल नवाचार से जोड़ते हुए लगातार नए कदम उठा रही है। इसी क्रम में गोरखपुर में आज संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश कौशल विकास की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सरकार, उद्योग जगत, निजी ITI संचालकों और प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने युवाओं को रोजगारोन्मुखी एवं भविष्य आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने को लेकर व्यापक मंथन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश सरकार के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव की अग्रवाल ने की। इस दौरान विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर हरि ओम, मिशन निदेशक पुलकित खरे एवं संयुक्त निदेशक मयंक गंगवार सहित गोरखपुर, बस्ती एवं अयोध्या मंडल के निजी ITI संचालक, प्रशिक्षण प्रदाता मौजूद रहे। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 6 जनपदों में वृहद परियोजनाएं प्रस्ताव

आर कपिल देव की अग्रवाल ने की। इस दौरान विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर हरि ओम, मिशन निदेशक पुलकित खरे एवं संयुक्त निदेशक मयंक गंगवार सहित गोरखपुर बस्ती एवं अयोध्या मंडल के निजी आईटीआई संचालक प्रशिक्षण प्रदाता मौजूद रहे। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 6 जनपदों में वृहद परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इसके अंतर्गत सार्वजनिक रामलीला मैदानों, स्थलों का विकास और विस्तार, जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण कार्य आदि कराया जाएगा। ये जानकारी आज यहां प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज कृषि भवन में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत रबी फसलों की उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्पेशल ओलंपिक्स भारत की अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने किया। राष्ट्रीय कोचिंग कैंप में 15 से अधिक राज्यों से आए 70 से अधिक खिलाड़ी, प्रशिक्षक, कोच एवं अधिकारी भाग ले रहे हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।

कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बन के पिघल जाता है आंखों से कभी। कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की खबर।

गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन

मंजर तो दिल फरेब है आजाद होके देख, दुनिया को देखना हो तो बर्बाद होके देख। कुछ खास अंदाज रेनबो का आप तक पहुंचने वाला है। पलकों की मुंडेरों पर चुपचाप कुछ परिंदे उतर आए हैं। कहते हैं कि पलकों की मुंडेरों पे उतर आते हैं चुपचाप गम ऐसे परिंदे हैं जो पाले नहीं जाते। जब था तो बहुत पुख्ता था एक शख्स से रिश्ता, टूटा है तो अब टुकड़े संभाले नहीं जाते। लेकिन इन टूटे हुए टुकड़ों की जो किरचे हैं, इन्हें भी हम सहजने का बटोरने का काम करेंगे 11 बजे के आसपास अगर आप रहेंगे हमारे साथ। फिलहाल तो मोहब्बत की वो जवां होती कहानियां जो हर खूबसूरत रात के साथ उतर आती हैं धरती पर, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज भी ये खूबसूरत सी रात उतरी है और मोहब्बत में प्यारा सा वक्त गुजारने रजनीगंधा के जरिए मैं आपका दोस्त अनवारुल हसन आपके पास आ गया हूं। स्वागत है सफर में। नमस्कार।

और सिर्फ गुजर नहीं जाता, कभी कभी वक्त रुक भी जाता है, क्योंकि दिल की धड़कनें रुक सी जाती हैं। और ऐसा तब होता है जब नजरें मिल जाती हैं तुम्हारी नजर से। छिपे हैं कितने खूबसूरत राज तुम्हारी इन आंखों में। ये जो नीली नीली सी आंखें हैं तुम्हारी, जैसे समंदर की गहराइयां हैं इसमें। हर लहर में छुपा हो जैसे कोई किस्सा, एक इश्क का सफर। कभी से शर्माती सी झुक जाती है तो कभी दिल में तूफान सा उठ जाता है। कभी चमक उड़ती है जैसे तारों भरी रात का चांद हो। तुम्हारी आंखें बोलती हैं बिना बोले। दर्द की कहानियां भी हैं इनमें, खुशी की चमक भी है, और वो अनकही दास्तान भी जो मोहब्बत में अक्सर कही जाती है और कभी कभी नहीं भी कही जाती, और कभी कभी तो कुछ ना कह के ये जो नजरों से तीर चलते हैं ना, ये जो नजरों से तुम चलाते हो तीर, वो आर पार रहता है वही तीर कुछ ऐसे।

वक्त हो रहा है रात के 10:20 और 8 सेकेंड। जहन में उगे हुए हैं बहुत से ख्वाब और आंखों में टिमटिमाते हुए जुगनुओं की तरह जगमगाहट बिखेर रहे हैं, जिससे रोशन हो रही है एक और रात। रजनीगंधा में आज एक बार फिर अनवारुल हसन का साथ।

जज्बात तो यही कहते हैं कि बस साथ साथ दूर तक चलते रहे आपके साथ। रजनीकांता जिंदगी की लंबी है राहें, कभी काले बादल हैं, कभी घटाएं हैं, कभी कुछ पहाड़ों की तरह आ जाती हैं ऐसी मुश्किलें जो लगता है बेताब होकर हमारी राह रोक रहे हैं, लेकिन दूर तक घटाओं के उस पार कुछ ऐसा भी है जहां आजादी है, खुशहाली है, खूबसूरती है। शायद कभी कभी हम ऐसा ही मानते हैं जब हमें वो नहीं मिलता जो हम पाना चाहते हैं, तो भी मैं कहता हूं कि इन ऊंची चोटियों के उस तरफ जहां सूरज की पहली किरणें चमक रही हैं, क्यों ना हम वहां आपके साथ चले। वो काली रातें, वो तूफानी हवाएं, इन सबको पीछे छोड़कर कदम मिलाकर, कदमों से कदम मिलाते हुए, आगे बढ़ते हुए, हाथ थाम कर, दिल से दिल को जोड़कर उस पार चले। उस पार पहुंचकर जब बादल छट जाएंगे तो क्या मिलेगा? खुशियां, अनगिनत ख्वाब, वो मुस्कान जो भूल गए थे हम, वो उमंगे जो सो गई थी कहीं। तो इसलिए रुकना नहीं है, थमना नहीं है, बढ़ते रहना है आगे, आगे, बहुत आगे, अपनी मंजिल तक पहुंच के आए। चलिए हमारे साथ।

और चलते चलते जब आप इस सफर में जा रहे थे और अचानक से वो आपके सामने आ गई थी तो कैसा लगा था जब पहली मुलाकात हुई थी उनसे? आसमानों में चांदनी सी चमकती वो आंखें, दिल की धड़कनें जो रुक सी गई थी और पहले से ऐसा लगा था जैसे जब वो मिलेंगे तो शायद जिंदगी बदल जाएगी, ऐसा दिल कह रहा था। पर हकीकत में जब वो नजर मिलती है, सांसें थम सी जाती हैं, वक्त रुक सा जाता है और उनकी मुस्कान में खो सा गया था मैं। जैसे बहारों का पहला फूल खिल उठा हो दिल ही दिल में, और ऐसे ही ये पहली मुलाकात यादगार बन जाती है। दिल ने पुकारा ये इश्क की शुरुआत है, अब हर लम्हा उसकी तस्वीर जो बस गई थी पहली बार आंखों में वही नजर आती है, क्योंकि ये मुलाकात पहली मुलाकात थी जो भूले नहीं भूलती। याद कीजिए ना आप कैसे हुई थी उनसे मुलाकात पहली।

0: सुबह मुस्कुराती हुई गुनगुनाती हुई
1: हौले से जिंदगी को छूती हुई जगाती हुई जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर सदाबहार गीत
0: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

ए मेरे शब्द मेरे भेद महाधन मेरे, रात में खुशबू तेरी, नींद में बोसा तेरा, ठंड में आग तेरी तापूं, खिलूं, जी उठूं, अपने आंसू तेरे हाथों के कटोरे में रखूं, देर तक तुझसे लिपट कर यूं ही रोती जाऊं। ए मेरे शब्द तेरे मानी की रात रंग गिरह कभी सुलझाऊं, कभी उंगली में उलझा बैठूं, गुम रहूं तुझ में कहीं खो जाऊं। ए मेरे शब्द मेरे इश्क मेरे अफसाने, शाम गुल रंग करे ख्वाब को दो चंद करे, तेरी बारिश में निखरता हुआ सब्जा मेरा, मांग आशाओं की भरती हुई इस दुनिया में और कोई भी नहीं, कोई नहीं, तू मेरा, बस तू मेरा।

0: तेरा कुछ जाहिर कुछ नेहा।
1: हाजरीन महफिल, मेरा साथ दीजिए। अंतरों से घूम के जब मैं मुखड़े पे आऊं तो मेरे साथ गाइए।
2: पहले आपके नाम आपकी सेहत पर एक जाम हो जाए।
1: जी मैं शराब नहीं छूता।
2: कौन काफिर छूने को कहता है, बगैर हाथ लगाए चढ़ा जाओ एक ही सांस में।
3: तो लाइए देव साहब, हम ही आपके होंठों पे लगाए देते हैं।
4: पी भी लीजिए देव साहब, बड़ी देर से छलक रहा है, वरना दुख होगा इसे।
5: जिंदगी बहुत अजीब है, बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। खुशियों के नाम पर भी कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है जो शायद नुकसान उठाना पड़ता है, जिसके बाद हमें ये जो पीने पिलाने वाला दौर है, कभी भी आकाशवाणी इसका समर्थन नहीं करता और हम हमेशा आपके सामने वही बात रखते हैं कि गम है तो थोड़े से अपने आंसू पी लीजिए, लेकिन इस तरह की चीज़ों से जो भी डायलॉग के रूप में आप तक पहुँचे, हम दूर रहें तो बेहतर है। जहन में बहुत सारे ख्वाब उगाते हैं कभी कभी, कभी कभी कुछ रास्ते अपने आप ही उन मंजिलों से दूर हो जाते हैं जिस रास्ते पे हम शायद चले थे किसी के साथ और हमारे हाथ में थे किसी के हाथ। और इसीलिए कहते हैं कि हम अपने दुख को गाने लग गए हैं, मगर इसमें जमाने लग गए हैं, जिन्हें हम मंजिलों तक लेके आए वही रास्ता बताने लग गए हैं। होता है कभी कभी ऐसा, जो भरोसा एक कायम होता है कुछ रिश्तों में, और हर रिश्ता एक भरोसे की बुनियाद पर ही चलता है, आगे बढ़ता है, लेकिन फिर भी दुनिया ऐसे ही चलती है, कभी कभी टूट जाते हैं कुछ अल्फाज, कुछ रिश्ते, कुछ दिल भी, और फिर क्या होता है। जी हाँ, समाचारों के बाद लौटेंगे तो बताएंगे आपको। रात के 10:56:19 हो चुके हैं। अगर आपको नींद आ रही हो तो आप सो जाइए। रजनीगंधा का यह सफर जारी रहेगा आपके दोस्त अनवारुल हसन के साथ।

नमस्कार, रात के 11 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को व्यवहारिक रूप से लागू करने की अपील की है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। मुख्य सचिव, डीजीपी और विभिन्न विभागों के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों और प्रधान सचिवों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्रियों अन्य लोगों के वाहन बेड़ों को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं, सार्वजनिक परिवहन और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में तकनीकी शिक्षा संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तकनीकी संस्थानों को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करते हुए छात्रों को व्यवहारिक एवं रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए ताकि युवा सीधे उद्योगों से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सके। मंत्री आशीष पटेल आज विधानसभा स्थित कार्यालय में डिलाइट के प्रतिनिधियों एवं विभागीय अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक कर रहे थे। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के निर्देशन में सर्वोच्च न्यायालय में लंबित वादों के सुलह एवं

आपसी सहमति से निस्तारण के उद्देश्य से समाधान समारोह 2026 के अंतर्गत 21 अगस्त 22 अगस्त एवं 23 अगस्त 2026 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन न्याय को सरल एवं सुलभ तरीके से आम जन तक पहुंचाने

आपसी सहमति से निस्तारण के उद्देश्य से समाधान समारोह 2026 के अंतर्गत 21 अगस्त 22 अगस्त एवं 23 अगस्त 2026 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन न्याय को सरल एवं सुलभ तरीके से आम जन तक पहुंचाने तथा आपसी सहभागिता के माध्यम से विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की भावना को साकार करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। समाधान समारोह 2026 का शुभारंभ 21 अप्रैल 2026 से किया जा चुका है। मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन को लेकर जौनपुर पुलिस की सशक्त पहल। प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आज जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर जागरूकता एवं सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात 12 बजे प्रसारित किया जाएगा।

ख्वाब की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, ऐसी तन्हाई के मर जाने को जी चाहता है। घर की वहशत से लरसता हूं मगर जाने क्यों, शाम होती है तो घर जाने को जी चाहता है। और इसीलिए कभी ये ख्याल मेरे मन में आया था कि घर उठाकर अपने कांधों पे चलो चल दें कहीं, ये जगह अच्छी नहीं है दिल लगाने के लिए, वक्त का बाजार ए अनवार जालिम है बहुत, करवटें बदलेगा ये तुमको लुभाने के लिए। और यही जो लुभावनापन है, कभी कभी फरेब की तरह मोहब्बत में शामिल हो जाता है, या यहां भी लगता है कि शायद ये मोहब्बत का ही हिस्सा है। लेकिन दरअसल ये जो फरेब है, ये जो कहीं ना कहीं जो साजिशें बीच बीच में साथ में रहती हैं, ये मोहब्बत को बदनाम भी करती हैं, रिश्तों को भी बदनाम करती हैं, तकलीफ भी होती है इनसे। और फिर मन में जो भी आपके जज्बात उभरते हैं, जाहिर है वो अच्छे नहीं होते, अच्छे नहीं लगते या तकलीफ देह होते हैं। कुछ लोगों को पसंद होते हैं, कुछ को नहीं पसंद होते, लेकिन जिंदगी की सच्चाई है और उससे हम मुंह नहीं मोल सकते। 11:04 हो चुके हैं, रजनीगंधा का यह हिस्सा आप तक। जी हाँ, आपको मालूम है मैं आपके साथ हूँ, आपका दर्दमंद दोस्त जिया अनवारुल हसन। और कौन,

याद नहीं क्या क्या देखा था, याद नहीं क्या क्या देखा था, सारे मंजर भूल गए, उसकी गलियों से जब लौटे अपना भी घर भूल गए, खूब गए परदेश के अपने दीवारों दर भूल गए, शीश महल ने ऐसा घेरा मिट्टी के घर भूल गए, तुझको भी जब अपनी कस्में अपने वादे याद नहीं, हम भी अपने ख्वाब तेरी आंखों में रखकर भूल गए।

बहुत सारे सवाल हैं जिंदगी में, जवाब कभी कभी लगभग एक से मिलते हैं। यही तो अजीब सी पहेली है जिंदगी की। कभी ये खुशियों की चादर उड़ा लेती है तो कभी गमों की बारात ले आती है। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है और हर शाम कुछ तजुर्बे छोड़ जाती है। इंसान अपनी तकदीर के नक्शे में रास्ते तलाशता रहता है मगर मंजिल अक्सर धुंधली सी नजर आती है। हम सब अपने जज्बात, अपने ख्वाब और अपनी आरजुओं के साथ इस सफर में हम सफर बनते हैं। कभी मोहब्बत मिलती है तो कभी जुदाई का एहसास, किस्मत के इस खेल में कभी फतेह तो कभी शिकस्त मिलती है। मगर यही तो जिंदगी की हकीकत है, हर मोड़ पर एक नया इम्तिहान, हर लम्हा एक नया सवाल। तो बस जूझना तो होगा इन सवालों से भी जब ये सामने आकर खड़े हो जाएंगे। 11:20:09 रजनीगंधा के इस आंगन में ऐसे ही सवालों से दो चार, आपका दर्दमंद दोस्त जी हां अनवारुल हसन।

0: शायद कभी कभी।
1: और दिलबरों की इनायत भी हमेशा साथ नहीं रहती। कुछ लोग साथ रहते हैं या रहते हुए से दिखाई पड़ते हैं। लोगों को दिखाने के लिए आपके साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कभी कभी उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ दिखाई पड़ते हैं, होते नहीं हैं आपके साथ। और उन मौकों की तलाश में रहते हैं कि कब आपको कमजोर कर दें और कमजोर कर दें, क्योंकि उनका मकसद होता है धीरे धीरे आपको अपने रास्ते से हटा देना। कैसे लोगों को पहचानते हैं आप? और कभी कभी पहचान जाने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते आप। वो ऐसी पोजीशन पे होते हैं कि आप सिर्फ खामोशी अख्तियार करने के अलावा और कुछ कर नहीं सकते। वक्त के तल्ख अल्फाज जब किसी दिल पर सैलाब की बौछार बनकर टूट पड़ते हैं, तो शायस्ता दिल भी पांव के नीचे कुचले हुए नाजुक फूल की तरह कुमला जाता है, खामोश हो जाता है। वैसे तो बहुत मुस्कुराता है, बहुत खिलखिलाता है, बहुत हंसता है। कभी कभी आप उसका नाम हसमुख भी रख देते हैं। रखा है क्या किसी का नाम आपने? मेरा नाम तो नहीं रख दिया कहीं? जाने दीजिए, सब्र करना बेहतर होता है और कुछ चीजों को छुपा के रखना भी। और आज के दौर में मुस्कुराना खिलखिलाना कोई पत्थर दिल ही कर सकता है। तो बस कुछ बातें ना कही जाए, उनको जुबान तक आने से रोक लिया जाए, वही बेहतर है। 11:30:35 रजनीकांता, जी हाँ, सही पहचाना आपने।

0: कई बार पानी मांग चुका हूँ, आप पानी क्यों नहीं देते?
1: पानी आएगा तो मिल जाए।
0: मुझे अंधेरे में क्यों रखा हुआ है, रोशनी क्यों नहीं?
1: जब तक लालटेन नहीं आती तो मैं अंधेरे में ही रहना होगा।

बुरे दिन हों तो अपनों से भी रिश्ता टूट जाता है। बुरे दिन हों तो अपनों से भी रिश्ता टूट जाता है कि जैसे शाख से पतझड़ में पत्ता टूट जाता है। जब आंसू देखता है मां की आंखों में कोई बच्चा तो उसके हाथ से गिरकर खिलौना टूट जाता है।

बहुत सारी बातें हैं जो हमेशा हमेशा याद रह जाती हैं, और इसीलिए जो व्यवहार करते हैं हम एक दूसरे के साथ बहुत मायने रखता है, वो भी खासकर रिश्तों में। कभी कभी गैरों से बेहतर पेश आती हो तुम, अपने दुख में मैं चुप्पी सांस लेता हूं, बेगानों की तरह मुस्कुरा उठता हूं। कभी सोचा है वो जो रातों को जगाते हैं वो अफसाने कौन से होते हैं, क्यों बनते हैं, क्यों शुरू होते हैं कहीं से? क्योंकि अपनों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तुम, गैरों की महफिल में खो जाते हो, अपनों को भूल जाते हो, इश्क राहों में भटकते हो, पर घर की चौखट पर धूल जमा हो जाती है, क्योंकि गैरों से बेहतर पेश आती हो तुम। काश अपनों को भी वही चाहत मिले जो बेगानों को मिलती है, शायद तो शायद बहुत सारी चीजें सुलझ जाए। लेकिन तुम जितनी भी

वफाएं, ये दुआएं और चराग की तरह ये जो रोशनी है, ये लोगों को राह जरूर दिखाएगी। 11:56 हो चुके हैं और अब इजाजत देने का वक्त आ रहा है, तो बस अनुमति दीजिए अनवारुल हसन को, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

नमस्कार, रात के 12 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को व्यवहारिक रूप से लागू करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आधिकारिक बैठकें, सेमिनार, सम्मेलन और कार्यशालाएं यथासंभव ऑनलाइन आयोजित की जानी चाहिए। मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस भी आयोजित किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अधिक कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों में सप्ताह में दो दिन घर से काम करने की सिफारिश की जाए। राज्य सचिवालय और निदेशालयों की 50% आंतरिक बैठकें भी ऑनलाइन आयोजित की जानी चाहिए। फर्रुखाबाद जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर एवं पुलिस अधीक्षक आरती सिंह की अध्यक्षता में मार्ग दुर्घटनाओं को रोकने हेतु जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग के ब्लैक स्पॉट, राष्ट्रीय राजमार्गों पर बंद स्ट्रीट लाइटों को सही कराने, स्पीड ब्रेकर निर्माण एवं ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही सभी लिंक रोड जंक्शनों पर सुरक्षा संबंधी कार्य समय से पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। गाजीपुर में महिला आरक्षण बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी के मोहम्मदाबाद स्थित आवास पर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह ने किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाते हुए नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण बिल को पारित न

होने देने में विपक्ष ने नकारात्मक भूमिका निभाई है। प्रदर्शन के दौरान सांसद अफजाल अंसारी ने धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनी और माइक लेकर अपना जवाब भी दिया। अब सुनिए मौसम का हाल। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा। कल सूर्योदय 5:20 पर और सूर्यास्त 6:44 पर होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार। 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी FM रेनबो प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। इस समय रात के 12